नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुप्रभात, 5:08 हो चला है। सुबह का वक्त हो, हल्की सी ठंडी हवा हो और आज का दिन हो जन्माष्टमी का, तो फिर सुबह और भी खास हो जाती है ना। आज का दिन है हमारे नटखट नंदलाल कान्हा जी श्री कृष्णा के जन्मदिन का। वो कृष्णा जी जो अपनी बांसुरी से सबका दिल जीत लेते हैं, अपनी शरारतों से यशोदा मैया को परेशान करते हैं और अपनी बातों से हमें जिंदगी जीने का सबसे बड़ा लेसन भी दे जाते हैं। तो आज की सुबह शुरू करते हैं खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ। मैं हूं नलमणि और आप सुन रहे हैं अभी राइज एंड शाइन।
0: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: यस, 5:20 हो चुके हैं। अगर आप इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं तो एक बात तो कहनी पड़ेगी आपसे, आप नॉर्मल नहीं है बॉस, आप तो अर्ली मॉर्निंग के चैंपियंस हो। कोई मॉर्निंग वॉक पर होगा, कोई ड्यूटी पर जा रहा होगा, कोई अपनी शॉप या बिजनेस खोलने की प्रिपरेशंस में होगा, और कोई तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस में बिजी होंगे। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आज का दिन कान्हा जी की तरह थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ जीना है। एंड वैसे ही नमनी यही पर है 8 बजे तक विद यू इन योर राइज एंड शाइन। तो RM2 रेडियो मस्ती पर ही जुड़े रहना है। आपके अगर कोई मैसेजेस है, डेडिकेशन है, 5499-1294 पर डू नॉट हेजिटेट।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर हमें मैसेज करना, मतलब आप लोग भी फुल ऑन मॉर्निंग स्क्वाड का हिस्सा हो। तो हमारे साथ कनेक्टेड है जयशन जी, विशिंग एवरीबॉडी अ वंडरफुल डे एंड कृष्ण जन्माष्टमी के विशेज। थैंक यू जी आपको भी। सरोज जी कैथोबोन से जुड़े हैं, विशेज भेज रहे हैं जन्माष्टमी के, एंड ऑल्सो गाना मांग रहे हैं सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वश, जय श्री कृष्ण। और आप सभी को बोल रहे हैं टू स्टे सेफ। एंड नेक्स्ट मैसेज आया है सर जूलिया विलाज सविता जी की तरफ से, आप विश कर रहे हैं अपनी लवली बहन संगीता कालुआ को, जो कि लेस अभिषेक के रहने वाले हैं, उन्हें लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स मम्मी भगवंती, संजीव, किरण, अनिता, सरिता एंड सविता की तरफ से। थैंक यू सो मच आपके प्यार प्यारे मैसेजेस के लिए। एंड इतनी सुबह उठकर हमें मैसेज कर रहे हैं, अपनी विशेज भेज रहे हैं, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि आपके मैसेजेस ही हमारे मॉर्निंग शो की जान है। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपनी फेवरेट सॉन्ग्स की फरमाइश भी भेजते रहिए। और हाँ, अगर अभी तक मैसेज नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, एक मैसेज तो बनता है। राधे राधे। और चलिए अब म्यूजिक का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं आपके ये राइज एंड शाइन में।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: And ये सभी के लिए है आपका राशिफल. तो चलिए जानते हैं आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं. एंड आज का लकी नंबर और कल क्या होगा. शुरुआत करते हैं वेदर.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज आपके लिए एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों ही हाई रहेंगे. जो काम कुछ समय से कुछ टाइम से पेंडिंग था उसे आज शुरू करने का परफेक्ट दिन है. कान्हा जी पर भरोसा रखिए. लकी कलर आपका है पिकॉक ब्लू और लकी नंबर है 8.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा और घर का माहौल भी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा. किसी पुराने दोस्त या लव्ड वंस से अच्छी खबर मिल सकती है. लकी कलर आपका है येलो और नंबर है

0: 13 Gemini मिथुन राशि आज कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ रहेगी जो बात दिल में है उसे शांत काल में एक्सप्रेस कीजिए एक अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन भी आपका मूड बना सकता है इंस्टेंटली लकी कल आपका है ग्रीन और नंबर है 6
1: कैंसर कर्क राशि
0: थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हो लेकिन आज पॉजिटिव

0: और नंबर है 5। वर्गो कन्या राशि, आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से आपका दिन स्मूथली रहेगा। किसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत कीजिए, उसमें फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है। लकी का लव का है स्काई ब्लू और नंबर है 2।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: आज रिलेशनशिप्स में मिठास स्वीटनेस बढ़ने वाली है। किसी अपने के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात करके सॉल्व करने का अच्छा वक्त भी। लकी का लव का है पिंक और नंबर है 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। हर चीज का इंस्टेंट आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कभी कभी वक्त को भी अपना काम करना देना चाहिए। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 7।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज एडवेंचर और नई एक्सपीरियंसेस का मूड रहेगा। अगर कोई नया प्लान है दिमाग में है तो उसकी तरफ एक छोटा सा स्टेप जरूर लीजिएगा। लकी कलर आज आपका है रॉयल ब्लू और नंबर है 4।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मेहनत का रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा जरूर। आज पेशेंस रखिए और अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। लकी कलर का है पर्पल और नंबर है 1।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। अपने विचारों को थॉट्स को इग्नोर मत कीजिए, हो सकता है कि आपका एक आइडिया फ्यूचर में काफी यूजफुल हो। लकी कलर का है टर्कवाज और नंबर है 10।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस की तरफ नेचुरली अट्रैक्शन रहेगी। थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए और अननेसेसरी स्ट्रेस को लेट गो कीजिए। लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 12।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: सुप्रभात, सुबह के 6 बजे हैं। चलिए सुनते हैं आज की पहली फ्लैश करुणा जी से। नमस्कार।
5: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख करना। मैकमॉरिशस ने बोमस्टैट्स लॉन्च किया, एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डाटा की उपलब्धि हो सकेगा ज़्यादा आसान और पारदर्शी। अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की नीति पर जोर दिया। और विदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पाद से USLV-F17 EOS मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अब मौसम की रिपोर्ट।

0: हमारे इलाके पर बादलों का असर है। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दोपहर को भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक उठ सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:16 पर, सूर्यास्त होगा 6:02 पर। तो पूरा बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
0: गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों, 6:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका अपना राइज एंड शाइन विद नर्मनी। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग अप विद अस एंड चूजिंग टू स्पेंड योर मॉर्निंग विद आरएमटू रेडियो मस्ती। एंड आज के स्पेशल डे पर एक स्पेशल बोको आज उन सभी को जो सुबह से जन्माष्टमी के प्रेपरेशन में बिजी है, घर की सफाई, पूजा की तैयारी, प्रसाद, डेकोरेशन, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आप, आपकी मेहनत को सल्यूट। और जो लोग इस वक्त काम पर जा रहे हैं, आप सभी को बोको आज, चाहे ड्यूटी हो, बिजनेस हो या मॉर्निंग शिफ्ट, कान्हा जी आपका दिन खुशियों और पॉजिटिविटी से भरते। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस एक स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। नर्मनी तो यही पर है राइज एंड शाइन में। और हम जो वीडियो

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: जारी है, तृष्णा हो तो कृष्णा का नाम लेते ही लुप्त हो जाते हैं। ये सब के प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से, तो चलिए पढ़ती हैं वन बाय वन। राधे राधे ऑल RM2 टीम, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। अभी प्रिया जी आप कह रही है व्हाट अ लवली मॉर्निंग। नेक्स्ट गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने हस्बैंड के नाम। नेक्स्ट मैसेजेस आप विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू योर लवली मम्मी चंदा जो कि हरिजोंग के रहने वाले हैं। बीते यश आश्ली दाशनी बहन नंदा अफजल गणेश अशीफा। अरे रुको जरा, लिस्ट तो लंबी है, किसका नाम मैंने मिस किया, चेक कर रही हूँ। वेल वेल, अब है भाई वरुण, याशनी, तेशना, आयुष एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मामा निर्मला सीतल कोइचे से। एंड साथ में वी ऑल्सो हैव किशन रघुनाथ जी सो के नाम से नेक्स्ट ट्रैक मांग रहे हैं अपनी पत्नी माला के लिए, दो बेटियाँ जिया और रिया के लिए। ललिता जी का मैसेज अभी अभी आया है, गुड मॉर्निंग आप हैं अंश पोमोजे से, और आप सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती, कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम। नेक्स्ट गाना आपके लिए जरूर चलाएंगे, आप साथ देते रहिए, आपके लिए सुनते सुनते गाने लाते रहेंगे। Stay tuned, RM2 Radio Masti पर ही।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Masti, all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

6 बजे हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का किया ऐलान, जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख। बैका मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया, एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डाटा की उपलब्धि हो सकेगा ज्यादा आसान और पारदर्शी। विदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F17 EOS मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में खास पूजा अर्चना, भजन कीर्तन व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्र

पदमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में मथुरा के कारागार में हुआ था। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम, धर्म और सत्य की जीत का संदेश देने वाला पर्व भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से कर्म, कर्तव्य और मानवता का मार्ग दिखाया। इस पर्व पर एक विशेष रिपोर्ट रजनी बिकर और याचना मिश्रा के साथ।

0: कथा के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से अधिक बढ़ा, भगवान ने धरती पर अवतार लिया। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए।
1: मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा, मुझे दान में दे वृंदा वृंदा वृंदा।
0: कंस अहंकार एवं अन्याय रूपी थे और उनके विनाश के लिए ही श्री कृष्ण अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं।
1: मुरबंसी बजैया नंदलाल कन्हैया।
0: इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान के रूप में जन्मी कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार

कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह हर साल मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धा अनुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल की जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं, फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है, कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध दही मक्खन विशेष पसंद है, इसीलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रेम सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं।

तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं। खबरों में आगे, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया है जो देश की हवाई नीति की देखरेख करेगी। उन्होंने ट्रेजरी बिल्डिंग में कल एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये घोषणा की। इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना रहा कि हवाई क्षेत्र का खोला जाना सबसे पहले देश के लिए फायदेमंद होना चाहिए। मिगान पोनापनायकन की ये रिपोर्ट पेश है। एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, एयर मॉरिशस के अधिकारियों और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चली इस कार्य बैठक में

0: में हवाई संपर्क का काम मुद्दा केंद्र में रहा। प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रणाली पर फिर से गौर करने पर जोर दिया।
1: Du air access policy. Naturellement, air access policy, nous avons dit, il y a besoin d'un avantage Boris, il y a besoin d'un avantage Mauritius. Donc, dans ce contexte, ça qui nous veut dire, hein? Mais nous voulons ouvrir un peu plus. Et c'est pourquoi nous faisons ça réunion aujourd'hui. Là, nous discutons assez longtemps, l'option qui est non. Là, nous décidons que nous avons besoin, pas cap air access policy, chaque fois, nous avons une route venir. Les langues étaient mauvaises, les langues discutées. Ça veut dire qu'on peut discuter d'un narrow base, besoin d'un système. C'est pourquoi nous pouvons faire un National Aviation Council qui peut être 10 Air Access Policy. Et là, nous pouvons relevable envers le Premier ministre. Là, nous ne mettons pas 10 bandimounes mauvaises, prenons aussi des professionnels qui connaissent.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल एविएशन काउंसिल के गठन के साथ एतिहाद एयरवेज के साथ भी चर्चा की जाएगी, जिसने मॉरिशस के लिए उड़ान भरने की रुचि दिखाई है।
1: Depuis longtemps, j'intéresse Vin Maurice, Etihad. Donc, mais pas juste Etihad. Voulez faire un projet complet. Ça veut dire pas juste avion, mais les autres bénéfices que Maurice a gagné en jeu. Donc là, nous créons sa National Aviation Council là, immédiatement. Et nous pouvons vite, parce que les gens, pour faire la demande. Je vais faire la demande depuis bien longtemps, je vais faire la demande. Hein. Donc là, nous pouvons commencer la discussion ensuite pour que Etihad soit capable de Maurice. Mais nous devons discuter pour éviter que nous puissions faire.
0: National Aviation Council mais Vimanan Kshetra ke jane mane anubhavi peshwar shamil honge. देश के हवाई क्षेत्र को अधिक खुला बनाने का उद्देश्य मॉरिशस को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ना है। बैंक मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया, एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसकी औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डेटा की उपलब्धि को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के वास्ते स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर करने की अपनी सरकार की नीति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मानदंड को बढ़ाने की भी घोषणा की। उनको सुनते हैं, विवरण रजनी बिकर का।
2: गुड इकोनॉमिक पॉलिसी बिगिंस विद गुड स्टैटिस्टिक्स।
3: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, अच्छी आर्थिक नीति की शुरुआत अच्छे स्टैटिस्टिक्स के साथ होती है। इसकी बदौलत हम तय आर्थिक वास्तविकताओं को माप सकते हैं। जब डाटा जमा किए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार इससे सार्वजनिक संस्थाएं स्पष्ट रूप से बात कर सकती हैं, मंडियां विश्वास के साथ उम्मीदें जाहिर कर सकती हैं और नागरिक भी प्रगति का जायजा ले सकते हैं, टैक्स के आधार पर न कि धारणाओं के आधार पर। मजबूत डाटा सिस्टम और आंकलन क्षमता पर निवेश करना हमारे प्रयासों के लिए अहम है। मजबूती लाना है, निवेश को निर्धारित करना है और कारगर एवं निश्चित नीतियां विकसित करना है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस बहुत जल्द नेशनल अकाउंट सिस्टम पर गौर करने और इसे अपडेट करने का कार्य करने वाला है। इस साल के सितंबर महीने से वो हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क अपनाने वाला है। नेशनल अकाउंट्स की यूनाइटेड नेशन सिस्टम 3 वर्ष की अवधि की है। एक बार फिर से मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप में पहला देश होगा जो NSA 2025 को अपनाएगा। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को लेकर हर 5 वर्षों में एक सेंसस चलाया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस नेशनल अकाउंट्स यूजिंग डाटा को लेकर सेंसस से काफी लाभ होगा।
2: Every 5 years, Statistics Mauritius will be rebasing the national accounts using data from the census.
0: कोई भी प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकता, नेपाल इसका हालिया उदाहरण रहा है। 26 अगस्त के बाढ़ के बाद कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और लापता भी हुए। हालांकि खतरों को कम करना और लोगों की बेहतर सुरक्षा करना मुमकिन है, मॉरिशस में नेओक एक सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे इमरजेंसी में सीधे मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे जा सकेंगे। ऑनलाइन घूम रहे टूरिस्ट को भी संदेश मिल सकेगा सुनामी आने पर।

मॉरिशस को रीजनल सेंटर्स खासकर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी जानकारी मिलती है। अवकफ मॉरिशस फाउंडेशन की पहल पर पहली बार मॉरिशस में 3 से 5 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय वकफ सम्मेलन लगाया जा रहा है। इसका आयोजन पोर्टविस के लाबूडने होटल में लगाया जा रहा है। इसके उद्घाटन के समय

0: 100 से ज्यादा साल पहले किया गया था। डॉक्टर सलमा सेराली बताती हैं, वक्फ सदकाई जारिया है। मिसाल के तौर पर जायदाद का दान किया जाता है, जिससे मिलने वाली आमदनी का इस्तेमाल समाजी प्रोग्रामों के लिए किया जाता है। मुर्शिद में 1941 का वक्फ एक्ट दुनिया के सबसे पुराने वक्फ कानूनों में शामिल हैं। बुनियादी उसूलों की हिफाजत करते हुए नए बदलाव लाए जा रहे हैं। डॉक्टर नजमल हुसैन रसूल बताते हैं, सरकार जो सुधार लाई है वो इस्लामी कानून पर पूरी तरह उतरते हैं। मुर्शिद में वक्फ के अच्छे संचालन के लिए ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब, सिंगापुर, यूके और दूसरे मुल्कों में वक्फ का अच्छा क्याम है। मुर्शिद में 500 से ज़ायद वक्फ के बेहतर संचालन के लिए ये देश मुर्शिद के साथ अपनी महारत बांटने के लिए तैयार हैं।
1: I think we can learn a lot from the experience of Mauritius.
0: दक्षिण अफ्रीका से ज़ैनुल आबिदीन काजी बताते हैं, मुझे लगता है कि हम मुर्शिद के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखेंगे। मुर्शिद कानूनी तौर पर वक्फ को अपनाने वाले पहले मुल्कों में शुमार है। अब मुर्शिद वक्फ की तरक्की में संलग्न हो रहा है, इस सफर से सीखेंगे।
1: In a new modern direction.
2: Inshallah, we had a very positive discussion.
0: सऊदी अरब से यहया अलीम उर रहमान बताते हैं, हमारी अच्छी बातचीत हुई। हमारी संस्था का मकसद इस्लामिक फाइनेंस उद्योग को विकसित करना है। हम बहुत खुश हैं कि हम वक्फ कानून में सुधार लाने के सिलसिले में मॉरिशस सरकार की मदद करेंगे। मॉरिशस में वक्फ के कानूनी ढांचे के तहत देश को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की हैसियत देने की भी कोशिश है।
3: Le gros travail, c'est précisément pour ramener la loi de Wakaf de 1941 dans l'ère moderne.
0: मंत्री शकील मोहम्मद बताते हैं, सबसे बड़ा काम 1941 के वक्फ एक्ट को नए जमाने में ढालना है। वित्तीय सेवा केंद्र के तौर पर मुर्शिद की महारत से हम वक्फ का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कायम कर सकते हैं।
3: Pour précisément la gestion des Wakaf internationalement.
0: मंत्री रिजाउद्दीन कहते हैं, जिस तरह ग्लोबल बिजनेस जैसा ढांचा है, उसी तरह ग्लोबल वक्फ होना चाहिए। इस तरह हम वैश्विक सतह पर फंड जमा करके मॉरिशस और दूसरे मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पहल मॉरिशस में इस सामाजिक प्रोग्राम के फरोग के मकसद से भी ली गई है।
4: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा आयोजित रामायण प्रतियोगिता में अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अपनी प्रस्तुति, संगीत और अभिनय के माध्यम से रखा। इस प्रतियोगिता में जहां युवाओं ने रामायण को अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश की, वहीं जूरी ने इसके साहित्यिक, आध्यात्मिक और संगीतात्मक पक्षों पर भी प्रकाश डाला। प्रतियोगिता का विजेता बना शिवा बापू। हमारी खास रिपोर्ट अशिता रघु के साथ, रामायण कथा से संस्कार तक।
5: भक्ति के इसी भाव से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जहां कॉलेज के युवा विद्यार्थियों ने रामायण को केवल मंच पर प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसके अर्थ और जीवन मूल्यों को समझने की कोशिश भी की। पंद्रह कॉलेजों से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में तीन सर्वश्रेष्ठ टीमें फाइनल तक पहुंची।

0: संत कवि तुलसीदास की रामायण, जिसे महाकाव्य कहा जाता है, भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों की कथा है। 7 कांडों में विभाजित ये महाकाव्य जीवन के अलग अलग पहलुओं को सामने रखता है। बाल कांड जन्म संस्कार से लेकर उत्तर कांड के राजधर्म और जीवन के उत्तरदायित्व की अद्भुत गाथा। हर कांड एक कथा, साथ ही जीवन की एक सीख। किसी ने चौपाइयों में चारों राजकुमारों का जनकपुर प्रस्थान दर्शाया, जहां विवाह का मंगल अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर तीसरी टीम की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया।
1: जब श्री राम सीता माँ को लेने के लिए गए थे, उस कांड में सबसे ज़्यादा रुचि है। हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें सभी चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए।

0: ये बताना चाहते हैं कि श्री राम को पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। सीता माता जी भले ही उनका अपहरण हो गया था, विश्वास था उन्हें श्री राम पे कि वो आएंगे और आएंगे ही। सो हमें वहाँ से भी पता चलता है कि श्री राम की भक्ति क्या मान्य रखती थी उनके लिए।
1: अलग अलग कॉलेज, अलग अलग प्रस्तुतियाँ, लेकिन संदेश की जड़ एक ही, रामायण को जानना, समझना और आज के जीवन से जोड़ना।
2: रामचरितमानस एक ग्रंथ के रूप में, एक मूल याधार के रूप में, एक सेट ऑफ वैल्यूज के रूप में मॉरिशसीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप, एक छात्र ने, एक टोली ने बालकांड का एक पाठ उठाया, तो वो उस पद को गाने के साथ साथ माँ, पिता, समाज और उस पूरे समुदाय के रिश्ते को समझ रहा है। रामचरितमानस का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, रामचरितमानस संबंधों का ग्रंथ है। इसको बहुत बार हम लोग अन्य चीज़ों में छुपा देते हैं, रामचरितमानस संबंधों का ग्रंथ है। और आज जितना हमारा समाज संबंधों से दूर जा रहा है, उसको उभारता है यह ग्रंथ।
3: एक नॉर्मल गाने में और रामायण गान करने में बहुत फर्क होता है। दोहा, चौपाई, छंद, सोरथा, श्लोक सभी अलग अलग छंदों में हैं और मात्राओं की गिनती अलग है, तो इनको गाते हुए काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मात्राओं के हिसाब से ताल का चयन, किस ताल पे गाते हैं लोग।
1: लेकिन इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल मंच पर एक प्रस्तुति तैयार करना नहीं था, इसके पीछे थी एक बड़ी सोच, युवा पीढ़ी को रामायण के उन मूल्यों से जोड़ना जो समय के साथ भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं।
4: ये बच्चे लोग हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति ये सीखे और कल के जो हमारे नए पीढ़ी आ रहे हैं उनको भी सिखाए। जैसे कि राम ने क्या किया था, जो वचन उसने राजा दशरथ को दिया था वो वचन उसने खुद निभाया, ये सब हमें बहुत सीख मिलता है।
1: मंच पर रामायण के अलग अलग कांड जीवंत हुए। लेकिन इन सभी कथाओं के केंद्र में एक ही संदेश रहा, सत्य, कर्तव्य, मर्यादा, प्रेम और मानवता। क्योंकि रामायण सिर्फ अतीत की कथा नहीं, हर पीढ़ी

विदेशी स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F15 EOS-O5 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये GSLV द्वारा जीतीओ या सब जीतीओ कक्षा में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। GSLV ने सफलतापूर्वक अपना 19वां मिशन पूरा कर लिया है और इस मिशन में EOS-O5 उपग्रह को ले जाया गया, जो एक विशिष्ट संरचना वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और लगभग वास्तविक समय में इमेजिंग करने में सक्षम है। यूपी में बाढ़ का कहर, 8 लोगों की मौत हो गई है, कई नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट, इटावा, बांदा, सीतापुर समेत कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव दल तैनात किए हैं। चित्रकूट जिले में अब तक 565 मकान गिर चुके हैं। मंदाकिनी में बाढ़ से रामघाट समेत 11 गांव जलमग्न हैं। और नेपाल सरकार का अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश की लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। ये देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन का 10वां हिस्सा है। ये उस देश पर एक नया बोझ है जिसने पनविद्युत संयंत्रों पर भारी निवेश किया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं।

मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर बादलों का असर है। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दोपहर में भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर जहां तहां बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। लेकिन रात के दौरान मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:16 पर, सूर्यास्त होगा 6:02 पर।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का किया ऐलान, जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख। मैकोमॉरिशस ने बर्मिस्टैट्स लॉन्च किया एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डेटा की उपलब्धि हो सकेगा ज्यादा आसान और पारदर्शी। विदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरे लॉन्चपैड से GSLV-F17 US मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। 6:55 हो चुका है, ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: पिलखा रोड सेबास्तोपोल में 70 साल की 70-year-old श्रीमती भानुमती बजन पैदाइश नाम पराग जरम्भा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके बेटे श्री मुनेश बजन के मकान पिलखा रोड सेबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सेबास्तोपोल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। आलिब्रियो कास्टेल में 77 साल की 77-year-old श्रीमती जानकी बलजोरसाई पैदाइशी नाम रामबरन जो इंदिरा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे त्रिलोक सिंह बलजोरसाई के मकान आलिब्रियो कास्टेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिब्रियो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रुथ अबाटुआ वाकुआ में 72 साल के 72-year-old जनाब सईद मस्तन जो सईद मौशां भियानी से जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 12:30 इनके मकान, बल्कि इनकी विधवा रुकाया डीलू के मकान रुथ अबाटुआ वाकुआ से निकाल कर पहले लाकावेन वाकवा की अंजुमन पाउरे मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे एट 12:30। शिमे पारिजो में नील फिनिक्स में 56 साल की 56-year-old बीबी वाहिदा लक्ष्मण पैदाइशी नाम माघो इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10:30 इनकी बेटी नूरीना लक्ष्मण के मकान पारिजो गली मेनिल फिनिक्स से निकाल कर दफनाने के लिए कौजाब की का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 10 AM। जानकी गली लेस्पेरांस पीतो में 71 साल के 71-year-old श्री गोपाल

एन वीरासामी श्री गोपाल एन वीरासामी जो इंदिरन से जाने जाते थे और पहले जो हैं हेडमास्टर थे स्कूल के, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं इनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी, इनके घर जानकी रोड लिस्पे हॉस्पिटल से समय बाद में सूचित किया जाएगा। सुल्फिनो नंबर 5 वाकवा में 85 साल के 85 ईयर ओल्ड श्री नारायण डुंटुला रंगानायकालू, श्री नारायण डुंटुला रंगानायकालू जो दास से जाने जाते थे और पहले असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान सुल्फिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर दास संस्कार के लिए ट्वामा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 292 होटवायल सैंपल फिनिक्स में रेस्टोरेंट चॉइस पैलेस के पास 78 साल के 78 ईयर ओल्ड श्री गंगा प्रसाद लाल बंधु, श्री गंगा प्रसाद लाल बंधु जो बाल्मीक से जाने जाते थे और पहले चीफ पुलिस इंस्पेक्टर रह चुके हैं, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 292 होटवायाल सैंपल फिनिक्स से उठाकर दास संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शिवाला गली सावन रोड नोवेल फ्रांस में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड श्री सुभाष बकारिया, श्री सुभाष बकारिया जो राज से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 इनके मकान शिवाला गली सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर दास संस्कार के लिए रसबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। क्लोजेल रोड फिनिक्स में 62 साल की 62 ईयर ओल्ड श्रीमती शांति साहिब दी पैदाइशी नाम लीला जो सुबीता से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके पति रतन साहिब दी के मकान क्लोजल रोड फिनिक्स से उठाकर दास संस्कार के लिए आले ब्रियों का सेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे अति 10 AM। होट रॉयल क्लेमेंसिया में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड श्री धर्म क्रिसुन द्वारका, श्री धर्म क्रिसुन द्वारका जो जीवन से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 इनकी पत्नी श्रीमती माधवी द्वारका के मकान होटवायाल क्लेमेंसिया से उठाकर दास संस्कार के लिए क्लेमेंसिया के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। होटवायाल अवंचुया में 81 साल की 81 ईयर ओल्ड श्रीमती दमयंती बडोरिया पैदाशिना मांगा जो बोंजे से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री शैलेश कुमार सिंह बडोरिया के मकान होटवाया लावांचुया से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचुया के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:00। एवेन्यू डी बेल सोस पॉम्पलेमूस में 83 साल की 83 ईयर ओल्ड श्रीमती रजुम्बा चंगाडू पैदाशी नाम वेंगारू जो इंद्रानी से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 इनके बेटे राजन चंगाडू के मकान एवेन्यू डी बेल सोस पॉम्पलेमूस से उठाकर दाह संस्कार के लिए दागोची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। मोसेलमो प्रीडम रिवियर डी जांगी में 80 साल के 80 ईयर ओल्ड श्री शामुगम ब्रिजित जो नादेन से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 10 बजे इनके बेटे साबजें ब्रिजित के मकान, बल्कि साबजीवन ब्रिजित के मकान मोसेलमो प्रीडम रिवियर डी जांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौजाब की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे आते 10 AM। बिस्वालीन प्लान मानियों में 45 साल के 45 ईयर ओल्ड श्री राजेंद्र बल

0: बलिया श्री राजेंद्र बलिया जो विनोद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान बिस्वालेन प्लानमानियों से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लानमानियों के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टुडे एट 11 AM। और रोट रॉयल विचियम मिल खियोले में 70 साल के 70-year-old श्री महेंद्र भैरू जो माहन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान रोट रॉयल विचियम मिल खियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए त्यामिनिस खियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिएशन टुडे एट नोन। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो।

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: साथ बजकर 10 मिनट हो गए वापस आ गए हैं इस बार आपके मॉर्निंग बीच में। एंड लेट मी टेल यू, इस आओ में गानों के साथ साथ आपके लिए होंगे गेम्स, बर्थडे डेडिकेशंस एंड स्पोर्ट्स न्यूज। तो यू नो व्हाट टू डू, 5491294 पर बस एक मैसेज कर देना एंड बेस्ट विशेस कृष्ण जन्माष्टमी के आपको।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fun Meal.
3: Ah ben, faudra être sage alors.
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec App Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
4: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
6: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह सुबह आपके मूड को और बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं एक गेम। अभी आप जीत सकते हो एक नहीं बल्कि दो टिकट्स फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे एक टिकट का प्राइस है 700 रुपये और आपको मिल रहे हैं दो, तो अगर आपने गेम जीत लिया तो किसका लेकर जाओगे? अरे क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि सिया कज़ावाता कहाँ पर सिचुएटेड है। इजी सवाल है ना, तो जल्दी से लग जाओ काम पर। टेल अस द लोकेशन ऑफ ज़ावाता सिया 5499194 पर। गुड लक टू यू।
0: मॉर्निंग बीट। ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स। अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musty.
1: ऐसे गेम ऑन गोइंग है मस्ती मोड की सायरन। हम मजावाटा के विनर को ढूंढ रहे थे। आपको बताना था लोकेशन ऑफ द जावाटा सियाकिन। सही जवाब इंडीड है बागेटल का पार्किंग।
2: मॉर्निंग बीट।
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: एंड यस, मॉर्निंग बीट में हमारे विनर बन चुके हैं। गुना हमारे बन चुके हैं धर्मवीर फुलचंद जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मिल रहे हैं एक नहीं बल्कि दो टिकट्स टू द जावाटा सियाक, जहां पर आप ढेर सारी मस्ती कर पाएंगे और देख भी पाएंगे कि वहां पर क्या क्या होता है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, फिल्ड विद मैजिक, थ्रिल्स एंड लाफ्टर। एंड लेट मी टेल यू कि आज का ये एक ही गेम नहीं है, और भी गेम्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप यही पर आरम जो वीडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट गेम जल्द ही आने वाला है। इट्स लोडिंग।
2: मॉर्निंग
3: बीट। ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
4: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: RM2 Radio Musti आपके दिल में ही रहते हैं, इसलिए आपको पैम्पर करना चाहिए। तो अनदर गेम लेकर आई है आपके लिए नमनी। इस बार पिक एंड बाय का आपको मिल सकता है वाचर। कितना का? कितने का? 500 रुपए का ऑफर चाहिए बाय विनर्स। एंड वैसे सवाल पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस सॉन्ग जो हमने चलाया अभी। क्या आप अटेंटिव थे? तो आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है सिंगर का नाम। जो गाना अभी अभी हमने चलाया है हम आपके दिल में रहते हैं, उस सिंगर का नाम आपको हमें बताना है 5491294 पर। एंड क्या पता आप जीत जाओ इस बार।
0: Morning beat. Oh God. One more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Moments that matter with Seekum.
3: लुतु चलावे बेरा तोहर खातिर का जरूरी है जोन मंजिल पर जाए के बा हुआ शांति आ सुरक्षा से पहुँचे के पर कोई नहीं सकी बोले कि कब सीमा पर कोनो प्रॉब्लम मैकेनिक या दुर्घटना हो जाए। ऐसन बखत में ये जाने की जरूरी है कि तू अकेले नहीं हवा। सिकम ड्राइव स्मार्ट एगो ऐसन लासियोंस है जो मुश्किल घड़ी में तोहर साथी बन के रही। कोनो दुर्घटना होइला पर आश्वासन रखिया कि तोहरा और तोहर यात्री के सबसे नीमन दाम देवब जा और तोहर दिन के खराब नहीं होई देवब जा। टोइंग कागज के काम खातिर लासिस्टेंस जब तोहर लुतु बनता तब ले एगो लुतु और प्लास्मा मिली तोहरा एकदम बेहतर सेवा देवब जा। आर दूसर समस्या जैसे तूफान बार आग लगला आर चाबी पेरदे कर दिला कोई तोहर लोतो जबरन तोड़ के चोरी करलक या चूहा काट के नुकसान करलक। सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर सब सुविधा के सोच ली बाटे। सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर बारे में सोच ली बाटे। गाड़ी की सुरक्षा करल अच्छा है पर जीवन में बिना चिंता के आगे बढ़ते रहे के ई सबसे जरूरी है। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: It was moments that matter with Seekum.
4: La foire Bilbil Kaji retourne cut winners.
5: Bilbil Kaji de retour cut winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. La savonnette luxe de 100 grammes à 25,50 roupies et du jeudi 3 septembre au samedi 5 septembre, les lingettes bébé câlin de 80 unités à 59,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
4: Nous la
0: On est tous winners!
1: RM2 Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, a second game ongoing है ना. आपको बताना था कि हम आपके दिल में रहते हैं का गाना जो हमने चलाया था उसे किस सिंगर ने गाया था. सिंपल सवाल था यार और एक ही सिंगर था गाने में. जवाब है the one and only अनुराधा पौडवाल. और हमें जवाब मिला किससे? Let's see. इन्हीं से सही जवाब हमें मिला फ्रॉम मेलविन जो कि सैन जूलियन दूतमो के रहने वाले हैं. कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपको मिला है ₹500 का वाउचर पिक एंड बाय का ऑफर टू यू बाय विनर्स. आपको वाउचर पोस्ट से भेजा जाएगा. इन जिन लोगों की जीत नहीं हो पाई है नो वरीज जी, आपके लिए दिन भर लॉट्स ऑफ गेम्स ऑन गोइंग रहेंगे. आप बस कनेक्टेड रहना RM2 रेडियो मस्ती के साथ. एंड अभी के लिए ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड विल मीट यू विद द स्पोर्ट्स न्यूज इन अ व्हाइल.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
4: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का हो सकी. एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी. ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे. सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिहोंस तोहर ख्याल रखेला. टोइंग की सुविधा, एगो लुतो ऑप्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा. और दूसर नुकसान जैसे तूफान

0: आश्रत भी लागूबा सिकुम एफएससी के लाइसेंस के तहत काम करेला
1: सिकुम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
2: A September to remember chez Your Dream Motors. Nous revenons avec nos quatrième édition. Oui, vous avez bien attendu. Nous plus grand promotion pour l'année 2026 commencez jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour un gros discount, le tout nous bat le tout. Que Your Dream Motors nous croit qu'il chaque dimanche mérite rouler sur le tout de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou perro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous en avons tout. Des 9h jusqu'à 5h tantôt, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 à ban prix imbattable. Côté Audrey Motos nous fait ouvrir une réalité. Royal Road Moka 55 32 86 12 55 05 86 12 et 433 80 26. Pas oublier, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
3: Ça monte encore. Et cette fois, les jackpots passent un nouveau cap. Le loto plus atteint environ 15 millions de roupies et le loto grimpe à approximativement 55 millions. 55 millions au loto plus 15 millions au loto plus égale à 70 millions de roupies. 70 millions au total à remporter. Et cette fois, les tirages du loto et du loto plus quittent les studios pour venir à votre rencontre. Rendez-vous ce samedi à la City Trianon pour les vivre en live.
4: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
5: RM2 Radio Musty
6: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
5: Sports News
7: Radio Musty in the mix.
8: And yes, sir, quickly, let's welcome Arvind G for the Sports News. Good morning.
9: Good morning, Aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. जिजित्सु का वर्ल्ड चैंपियन हमारा अपना मॉरिशस का अजमल बुजल टोक्यो में लग रहे SJJIF वर्ल्ड ब्राजीलियन जिजित्सु चैंपियनशिप में कल ब्राउन बेल्ट कैटेगरी में अजमल बुजल चैंपियन बना बधाई हो स्विमिंग तैराकी में भी एक और गोल्ड मेडल मॉरिशस के नाम बोत्सवाना में लग रहे जोन 4 अफ्रीकी चैंपियनशिप में इस बार ब्लाइजिया जुएल गोल्ड मेडल जीत पाई 50 मीटर बटरफ्लाई में जूडो में भी गोल्ड मेडल की बौछार रेनियन तापू में ओपन दे मास्कारें में 11 गोल्ड मेडल मॉरिशस के लिए मिनुष्का लुई लोएल लेस्ट लुकास कोले एडन खेमना जेरेमी पेरिन इलियाना थोमा मालकोम आजी किम्बर्ले जॉन पियर चैंपियन बने वेटेरन कैटेगोरी में भी 3 गोल्ड मेडल मॉरिशस के नाम फुटबॉल अफ्रीकन कॉन्फेडरेशंस कप में आज ISPL देमिल का सामना बोत्सवाना की युआनेंग गैलेक्सी से होगा आज 7 बजे कुद्दू में ये मैच खेला जाएगा नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स अवार्ड का पहला एडिशन कल लगा रेजवी के ओक्टाविया ऑडिटोरियम में हमारे बेहतरीन स्कूली एथलीटों और खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए लोरेटो कैट्रोबोन और सेंट मेरीज कॉलेज बेस्ट स्कूल अवार्ड जीत पाए बेस्ट मेल एथलीट सैमुअल फ्लेयर को दिया गया डॉक्टर रेजिस शापिरों SSS का बेस्ट फीमेल एथलीट क्लोए अलेक्जेंड्रिन फिर वो लोरेटो कैट्रोबोन की है बैडमिंटन में अविविया मदाली जो जुक्स ब्रिज सेकेंडरी स्कूल जाती है साथ में स्विमिंग में क्लोए अचिप लेबोकाज इंटरनेशनल स्कूल और मैथ्यू टिन वन युएन क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज टेबल टेनिस में निशान देस्कां लेबोकाज इंटरनेशनल स्कूल और कैवालिया राधाकिशुन जो जुक्स ब्रिज सेकेंडरी स्कूल की है बास्केटबॉल में मैथ्यू एस्टेयर और एलिजे मारिये फुटबॉल में जारेल आश्टन पियर वॉलीबॉल में डायना बेर्टेलो एंजो लुकास अन 25,000 इंडिविजुअल प्राइज और 50,000 चैंपियन कॉलेज के नाम बधाई हो हमारे इन स्कूली एथलीटों और खिलाड़ियों को घुड़दौड़ द फेनिक्स मेडन कप 2026 में फुल 11 घोड़े भाग लेंगे ग्रुप वन रेस 2400 मीटर में स्टेक्स मनी 1.5 मिलियन जीतने वाले को 1 मिलियन प्राइज मनी फ्यूचर स्विंग उस सुबिराज गजारा स्टेबल का उस पर होगा दोनोवान मानसू फिर गुड काउंसिल अरविंद नागाडू स्टेबल का श्वाच उस पर होगा रापिदाश सुबिराज गजारा स्टेबल का उस पर होगा ओफा सेलुक्वे पोल फुक्यून उस पर होगा रामसामी बाकस अरविंद नागाडू स्टेबल का ब्रेंडन लुइस पर सवार होगा सुपीरियर फोर्स पोल फुक्यून का उस

0: पर होगा मैनुअल न्यूनेस, फिर बाउंस बक आउट ऑफ स्टेबल वन निकर्क, प्राइम एग्जांपल मुचिया स्टेबल का उस पर होगा हाई जुगावन, कोटली गजादर स्टेबल का उस पर होगा डैनियलसन, व्यू ऑफ द वर्ल्ड गजादर स्टेबल का घोरा उस पर होगा सुफुल, और पालियामो पोल फुक्यून स्टेबल उस पर होगा जगलाल, क्वालिफायर इमरजेंसी एक्सेप्टर होगा। प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का तीसरा सप्ताह थर्ड वीक आज से शुरू। लिवरपूल जाएगा इप्सविच टाउन के खिलाफ खेलने पोर्टमन टाउन में। लिवरपूल पर अर्ली सीजन प्रेशर, शुरुआती दबाव, क्योंकि अभी तक जीत के पीछे भाग रहे हैं, दो मैच दोनों ड्रॉ। उधर इप्सविच टाउन की जीत हुई थी पहले मैच में संडरलैंड के खिलाफ 2-1 के स्कोर पर, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 5-2 की हार। लिवरपूल के लिए आज ब्रैडली बाकोला अपना पहला मैच खेल पाएगा। लिवरपूल को सावधान रहना होगा, इप्सविच टाउन अपने पोर्टमन रोड में आसानी से नहीं हारता। पिछले 20 मैचों में कोई भी यहां नहीं जीत पाया, 16 विंस 4 ड्रॉ। पहली जीत या पहली हार लिवरपूल के लिए आज रात 11 बजे किक ऑफ। इस प्रीमियर लीग सीजन का तीसरा सप्ताह आज शुरू। कल सैटरडे न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, ये अर्ली किक ऑफ होगा। फिर ब्रेंटफोर्ड सन्डरलैंड, ब्राइटन लीड्स, फुलहाम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी कोवेंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर, हल सिटी एस्टन विला, ये लेट मैच होगा। संडे मैच एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 बजे, और इस तीसरे सप्ताह का धमाका आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, जो इस प्रीमियर लीग के दो फेवरेट बताए जा रहे हैं, ये दोनों आमने सामने होंगे 7:30 बजे 7:30 की किकऑफ पर। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल हार्ट्स ने हिबेनियन को 3-1 से हराया। स्पेन के ला लीगा में रियल सोसिएदाद 0 सेल्टा वीगो 0, कोपा इटालिया में पालियामो 5 मांतोवा 2 कागलियारी 1 वेरोना 2, फ्रांस के लीग 1 में टूलूज 0 लिल 1। आज स्पेन में बेटिस वर्सेस रियल मैड्रिड, जर्मनी में स्टुटगार्ट वर्सेस एफसी कोल्न, इटली में जेनोआ कोमो, फ्रांस के लीग 1 में 2 मैच लियों ओसियर, पेरिस सेंट जर्मेन मोनाको। टेनिस में यूएस ओपन में थर्ड सीड ओगा अलियासी में हार गया, कारेन कचानोव ने उसे एलिमिनेट किया। कल ओसाका फ्रिट्स सबालेंका अल्काराज, श्वातिक अनिसिमोवा, पोल कोबोली वितोलिना सेरुंडोलो ब्लॉक्स, इस्तारो दुप्सेवा आदि जीत पाए। आज अल्काराज वर्सेस वू पेगुला फर्नांडेज, कोको गोफ आज सुबह जीत पाई बादोजा को के खिलाफ, चैन भी जीत पाया मोफिस के खिलाफ। और क्रिकेट, विमेंस एशिया कप के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने हांगकांग को 127 रनों से हराया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 193 रन का टारगेट रखा। हांगकांग केवल 56 रन पर ऑल आउट हुई। स्मृति मंदाना 124 रन बना पाई। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। भारी भरकम वीकेंड है, बहुत मैच हैं आज से ही शुरू हुए, इप्सविच वर्सेस लिवरपूल। हमारा साथ देते रहिए एंड हैव ए वंडरफुल वीकेंड विद प्लेंटी ऑफ गुड न्यूज कमिंग अप। एक बार फिर कंग्रेचुलेशंस हमारी जुजुत्सु टीम को, और तैराकी स्विमिंग में भी जो चैंपियन बने, कहेंगे आले मोरिस गोल्ड मेडल जीतते रहो। शुभ दिन, हैव ए नाइस वीकेंड अहेड, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo lot plein de produits, marbre à partir de 25 roupies, granit à partir de 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: RM2
5: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Musty morning continues. And अभी के लिए अगर आज है आपका बर्थडे तो डबल सेलिब्रेशन है जी. सबसे पहले विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू. मे योर डे बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, लव, गुड वाइब्स एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस. एंड आज का बर्थडे पर्सन सिर्फ विशेस लेकर नहीं जाएगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है. आपको मिल सकता है एक वाउचर लुलू हाइपर मार्केट का. तो जल्दी से अपनी डिटेल्स सेंड कीजिए अगर है आपका बर्थडे. अगर आपका बर्थडे नहीं है बल्कि किसी और दोस्त का, पार्टनर का, सेंड अस देयर डिटेल्स आईडी कार्ड के साथ. एंड वेट करते हैं, देखते हैं कि आज का बर्थडे विनर कौन बनता है.
0: मॉर्निंग बीट. ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स. अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

सबको के नमस्ते। भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक आस्था के पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरा श्रद्धा और उत्साह संगे मनावल जात बा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव खातिर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन करल जाता। भगवान विष्णु के आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के आधा रात बजे मथुरा के कारागार में हो रहा। जन्माष्टमी खाली गो धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम धर्म और सत्य के जीत के संदेश दे होला परब भी है। भगवान कृष्ण अपन जीवन और उपदेश के माध्यम से कर्म कर्तव्य और मानवता के मार्ग दिखैले होवन। सबको के कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना बा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम एगो नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना के ऐलान कर ले हुवन, जिनकी देश की हवाई नीति की देख रेख करी। उकाल ट्रेजरी बिल्डिंग में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारी संगे मुलाकात के बाद ये घोषणा कर लन। वो ये भी बोलन कि हवाई क्षेत्र के खुला से सबसे अक्ति देश के फायदा हो के चाहें। मैको मॉरिशस बम स्टार्ट लॉन्च कर ले बाती एगो नवा स्टैटिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, जेकरा औपचारिक आर्थिक और वित्तीय डाटा के उपलब्धि के जस्ती आसान और पारदर्शी बनाए खातिर करल गलबा डिजाइन करल गलबा। अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि के मजबूत करे खातिर स्टैटिस्टिक्स के गुणवत्ता के बेहतर बनाए के अपन सरकार के नीति पर जोर दिलन। प्रधानमंत्री स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मानदंड के बढ़ाए के भी घोषणा करलन। अवकफ मॉरिशस फाउंडेशन के पहल पर पहला हला मॉरिशस में 3-5 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय वकफ सम्मेलन गावल जाबा। एक आयोजन पोर्टवी के लाबोडो ने होटल में करल जाता। एक उद्घाटन में जी वक्ता लोग एक अलग अलग पहलू की जिक्र कर जा। यह आयोजन इस्लामी फाइनेंस सेक्टर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लोग के जुटेलक। कोई भी प्राकृतिक आपदा के रोकल नहीं जा सके। नेपाल एक उदाहरण है, जिनकी 26 अगस्त के बाढ़ के बाद कुछ ही मिनट में जहां सैकड़ों लोग मर गएलन जा, कई जना लापता हो गएलन जा। हालांकि खतरा के कमती करे खातिर और लोगन के बेहतर सुरक्षा करे खातिर ये मुमकिन है। मॉरिशस में नियोक एगो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम करता, जेकर से इमरजेंसी में

0: सीधा मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजल जा सके। सुनामी आला पर मॉरिशस के रीजनल सेंटर्स, खासकर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी जानकारी मिलेला। विदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 4 सितंबर 2026 के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दुसरका लॉन्च पैड से GSLV-F15EOS-05 मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च कर लग। EGSLV दुसरका जीतीओ या सब जीतीओ कक्षा में लॉन्च करल गल अब तक के सबसे भारी उपग्रह। GSLV सफलतापूर्वक अपन 19वां मिशन पूरा कर देलक और ई मिशन में EOS-05 उपग्रह के ले जावल गल, जिनके एगो विशिष्ट संरचना होला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और लगभग वास्तविक समय में इमेजिंग करे में सक्षम है। उल्लेखनीय बात है कि प्रक्षेपण में खाली कुछ मिनट लगेला, बखिर वो कुछ मिनट के पीछे कई महीना और बरिस के अथक परिश्रम होवेला। मिशन में EOS-5 नामक उपग्रह शामिल बा, जिकरा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई से भारत के देश के निरंतर विहंगम दृश्य प्रदान करे खातिर डिजाइन करल गल बा। नेपाल में सरकार के अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश के लगभग $5 बिलियन के नुकसान हो बाते। ई देश के वार्षिक उत्पादन आर्थिक उत्पादन के 10वां हिस्सा है। ई उद्देश्य पर एगो नवा बोझ है, जिनकी पन विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर संयंत्र पर भारी निवेश कर ले रहा, जिनकी अब नष्ट हो गल बा। और भी भारत में यूपी में बाढ़ के कहर जारी बाते। चित्रकूट, इटावा, बांडा, सीतापुर समेत कई जिला में बारिश और बाढ़ के हादसा में 8 जना की मौत हो गल बा, कई जना घायल होल हवन से। प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव दल तैनात कर ले बाते। चित्रकूट जिला में अब तक 565 को मकान गिर गलवाते। मंदाकिनी में बाढ़ से रामघाट समेत 16 गो गांव जलमग्न हो गलवाते। इकरे संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 8:06 हुए हैं।
6: Morning beat.
7: Oh God, one more remix.
6: A good beat for your morning show.
4: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: आज हो चुका 8 मिनट हो चला है। मेक अ विश यस मॉर्निंग बीट में पैम्परिंग को ऑनगोइंग रखते हैं। हमारी बर्थ विनर को अनाउंस करने के टाइम हो गया है एंड वो लकी पर्सन है रंजना जमन जी। हैप्पी बर्थडे टू यू गॉर्जियस लेडी। अनफॉर्चुनेटली वो काम पर है, बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैसेज उन तक जरूर पहुंचा। बेस्ट विशेज आपकी बहन हर्षिता की तरफ से। आपको मिलता है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे। यही एंड ऑल्सो टू ऑल दोस जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द RM2 टीम।

0: गुलाबी साड़ी गाना आपको मॉर्निंग मूड में डालने के लिए। वैसे हमारी गोपियां सज गए होंगे ना, प्रेपरेशंस में व्यस्त भी होंगे। आपको मुकराज एंड कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही आपको मिलने वाला है दिव्या का साथ मॉर्निंग बीच पर ही। अभी के लिए चलिए जानते हैं मौसम का हाल करुणा जी से।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: हमारे इलाके पर बादलों का असर है। अनुमान है कि सुबह के वक्त और दोपहर को भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3 मीटर तक उठ सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:16 पर, सूर्यास्त होगा 6:02।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: La foire Belbel Kadi retourne Côte Winners.
5: Belbel Kadi de retour Côte Winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. Le fromage en tranche Arla sandwich cheddar de 200 grammes à 69,95 rupees. Et du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre, la savonnette palme olive de 90 grammes à 23,50 rupees. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
6: On est tous winners.
7: Morning beat.
8: Oh God, one more remix.
7: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए अभी के लिए क्विक ट्रैफिक अपडेट ले लेते हैं, स्पेशली उन सभी के लिए जो इस वक्त सैंपिया की तरफ निकल रहे हैं। अगर आपका रूट सैंपिया ट्रैफिक सेंटर या सैंपिया बाईपास की तरफ है तो थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना जर्नी टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा कंसिडर कीजिए। लिंक की वजह से मॉर्निंग रश में जंक्शंस और राउंडअबाउट्स पर स्लो ट्रैफिक मिल सकता है, तो जो लोग वर्क के लिए, काम के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या जन्माष्टमी प्रेपरेशंस के लिए निकल चुके हैं वो को आज ड्राइव सेफली, डिस्टेंस को मेंटेन करते रहिए और प्लीज़ फ़ोन हाथ में लेकर ड्राइव मत कीजिए। आपकी डेस्टिनेशन ज़रूरी है लेकिन उससे सेफली पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी। स्टे ट्यून्ड ऐसे ही विद योर RM2 रेडियो मस्ती, आपके लिए अमेजिंग गानों का सिलेक्शन है, लाते रहेंगे आपके लिए नाइस सॉन्ग्स। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।
0: मॉर्निंग बीट।
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: ए 32 ऑलरेडी दिव्या का साथ न्यू मॉर्निंग बीट. कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा. इसलिए आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में इतना भी नहीं सोचना है. जो है बस आज है और अपने आज को आप इस तरीके से जिए लाइक देयर इज नो टुमारो. और यकीन मानिए जिंदगी का सीक्रेट यही है कि आप हमेशा हंसते रहे मुस्कुराते रहे हर एक सिचुएशन में. तभी आप देखेंगे कि आपका जो वो गम है वो कहीं दूर शर्मा के भाग ही जाएगा.
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
5: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
5: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
5: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
6: Morning beat.
7: Oh God, one more remix.
6: A good beat for your morning show.
8: RM2, Radio.

0: लिए एक बीट को हम पकड़ के रखेंगे एंड ताल से ताल मिलाकर ऐसे ही आवाज से आवाज मिलाकर हर एक गीत को एंजॉय करते रहेंगे टिल 10 AM. तो चलिए अभी के लिए अरविंद से मुलाकात हो चुकी थी at 7:30. एक बार फिर से चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं बिकॉज आई गेस कुछ और स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ वो हाजिर हो चुके हैं. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद.
1: गुड मॉर्निंग अगेन. गुड मॉर्निंग आर एम टू लिसनर्स. जुजुत्सु का वर्ल्ड चैंपियन हमारा अपना मॉरिशस का अजमल बुजल टोक्यो में लग रहे SJJIF वर्ल्ड ब्राजीलियन जुजुत्सु चैंपियनशिप में कल ब्राउन बेल्ट कैटेगरी में अजमल बोजल वर्ल्ड चैंपियन बना. स्विमिंग तैराकी में भी एक और गोल्ड मेडल मॉरिशस के नाम. बोत्सवाना में लग रहे जोन 4 अफ्रीकी चैंपियनशिप में इस बार ब्लाइजिया ज्वेल गोल्ड मेडल जीत पाई 50 मीटर बटरफ्लाई में. जूडो में भी गोल्ड मेडल की बारिश. रेनियन तापू के ओपन दे मस्कारे में 11 गोल्ड मेडल मॉरिशस के नाम. फुटबॉल में अफ्रीकन कॉन्फेडरेशन कप में आज ISPL देमिल का सामना बोत्सवाना की युआनेंग गैलेक्सी टीम से होगा. आज 7 बजे कोदो में ये मैच खेला जाएगा. नेशनल स्पोर्ट्स स्कूल स्पोर्ट्स अवार्ड का पहला एडिशन कल लगा. रेजुई के ओक्टावियो ऑडिटोरियम में हमारे बेहतरीन स्कूल के एथलीटों और खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए. लोरेटो कैट्रोबोन और सेंट मेरीज कॉलेज बेस्ट स्कूल अवार्ड जीत गए. स्विमिंग में शोए आचिप ले बोकाश इंटरनेशनल स्कूल की और माथियो तीन वन यून क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज में चैंपियन बने. टेबल टेनिस में निशान डेस्कॉ और फिर काइवालिया रदाकिसुन जोक्सब्रिज कॉलेज से ये कुछ चैंपियन रहे जिनको ₹25,000 दिए गए और ₹50,000 चैंपियन कॉलेज को. घुड़दौर द फेनिक्स मेडन कप 2026 में फुल 11 घोड़े भाग लेंगे. ग्रुप वन रेस 2400 मीटर में स्टेक्स मनी 1.5 मिलियन जीतने वाले घोड़े को 1 मिलियन प्राइज मनी. इनमें है फ्यूचर स्विंग गुड काउंसिल रैपिडाश सिलिक्वे बैकर्स सुपीरियर फोर्स बाउंस बैक प्राइम एग्जाम्पल कोटली व्यू ऑफ द वर्ल्ड पालेर्मो और इमरजेंसी एक्सेप्टर हैं क्वांटिफायर. प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 का तीसरा सप्ताह थर्ड वीक आज से शुरू. लिवरपूल जाएगा इप्सविच टाउन के मैदान में इप्सविच टाउन के पोर्टमन टाउन में. लिवरपूल पर अर्ली सीजन प्रेशर है शुरुआत में ही दबाव क्योंकि अभी तक लिवरपूल की जीत नहीं हुई है. दो मैच दोनों 2-2 के ड्रॉ. जागना होगा 2-2 नहीं. उधर इप्सविच टाउन की जीत हुई थी पहले मैच में संडरलैंड के खिलाफ 2-1 के स्कोर पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 5-2 की हार. लिवरपूल के लिए आज ब्रैडली बाकुला अपना पहला मैच खेल पाएगा. लिवरपूल को सावधान चेतावनी. इप्सविच टाउन अपने पोर्टमन रोड में आसानी से नहीं हारता. पिछले 20 मैचों में कोई भी हार नहीं. 16 विंस 4 ड्रॉ. पहली जीत या पहली हार लिवरपूल के लिए आज रात 11 बजे किक ऑफ. बाकी मैच जो खेले जाएंगे इस वीकेंड सैटरडे अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ. फिर 6 बजे से ब्रेडफोर्ड संडरलैंड ब्राइटन लीड्स यूनाइटेड फुलहम क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर सिटी कोवेंट्री सिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर और 8:30 बजे लेट मैच हल सिटी एस्टन विला. सुपर संडे है एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्वागत करेगा 5 बजे और दी धमाका आर्सेनल वर्सेस चेल्सी 7:30 बजे. ये प्रीमियर लीग फिक्स्चर्स हैं इस सप्ताह के. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल हार्ट्स ने हिबेनियन को 3-1 से हराया. स्पेन के ला लीगा में ड्रॉ मैच रियल सोसिएदाद और सेल्टा विगो के बीच 0-0. कोपा इटालिया में पालेर्मो 5 मांतोवा 2 कागलियारी 1 वेरोना 2. फ्रांस के लीग अ में लील टुलूज को हरा पाया 1-0 से. आज के फिक्स्चर्स स्पेन में बेटिस वर्सेस रियल मैड्रिड. जर्मनी में स्टुटगार्ट वर्सेस एफसी कोल्न. इटली में जेनोआ कोमो और फ्रांस के लीग अ में 2 मैच लियों ओसेर पारी सेंट जर्मेन मोनाको. टेनिस US ओपन में थर्ड सीड ओगर अलियासी में हार गया. कारेन कचानोव ने उसे एलिमिनेट किया. कल ओसाका फ्रिट्स सबालेंका अल्काराज श्वातेक अनिसिमोवा पोल कोबोली वितोलिना सेरुंडोलो ब्लॉक्स फिर इस्तारोदुप्सेवा आदि जीत पाए. आज अल्काराज का मुकाबला रूसे पेगुला फेर्नांडेज. कोको गोव आज सुबह जीत पाई बागडोजा को हराकर. चैन की भी जीत हुई मोफिस के खिलाफ. क्रिकेट विमेंस एशिया कप में अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने हांगकांग को 127 रनों से हराया. पहले बैटिंग

0: करती हुई भारतीय टीम ने 193 रनों का टारगेट रखा। हांगकांग केवल 56 रन पर ऑल आउट। स्मृति मंदाना 124 रन बनाकर रिकॉर्ड बना पाई। वो ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर बन चुकी हैं महिला क्रिकेट में। और मॉरिशस में भी क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 दो सेमीफाइनल इस संडे को 9 बजे कॉन्टिनेंटल चीटास का मुकाबला वन हेल्थ जागुआर से, और दूसरा सेमीफाइनल 1 बजे कैंपस अब्रॉड लायंस और टोमास कुक टाइगर्स। फाइनल अगले हफ्ते इंतजार करेंगे। फिर अवे नाइस वीकेंड, प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू कम स्पोर्ट्स की दुनिया में, आपको सब कुछ बताते रहेंगे ऑन द वेव्स ऑफ RM2. Take care. Bye bye. Have a nice weekend ahead. Bye.
1: Thank you so much, Arvind.
2: RM2.
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, 7:50 होने को है। जो है अलबेला मद नैनो वाला वो किसना है, और आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन, एंड सुबह से ही भक्त लोग बहुत ही प्यार से अभी इसका आयोजन कर रहे हैं, और रात्रि को बहुत सारे लोग निकल पड़ेंगे जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो आई जस्ट होप कि ये दिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही स्पेशल रहे, और जिस तरीके से श्री कृष्ण गोपियों के घरों में माखन चुराते थे, आई जस्ट होप कि इसी तरीके से वो आपका दिल चुरा ले। एंड हमेशा कहते हैं ना कि जब भी आप किसी से बात करो, अच्छे से बात करो, जब भी किसी से मिलो, प्रेम से मिलो, एंड हर किसी के मन में भगवान बसता है। और बस ये जन्माष्टमी आपके हर घर में बहुत बहुत ही लाइट एंड पीस लेकर आए, यही हमारी आशा है और यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है न्यू मॉर्निंग बीट। एंड चलिए ट्रैफिक वाइज बात करें तो काम पे आ रही थी तो इट वाज अ ह्यूज ट्रैफिक एट सैप, मतलब स्लो ट्रैफिक इतना था कि रुक रुक कर गाड़ियाँ चल रही थी। सो प्लीज़ अगर आप उस साइड से निकल कर इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। एंड हमें पता है कि ट्रैफिक जाम में फंसे रहना इट्स नॉट ईजी एट ऑल, लेकिन अगर आप गुड म्यूज़िक के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रैफिक कब खत्म हो चुका और आप आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स RM2 के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड साथ में योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट यहां पर आपको तो रोज रोज मिलता ही रहता है। तो चलिए दिव्या का साथ है टिल 10 AM, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा इन योर मॉर्निंग बीट।
0: मॉर्निंग बीट,
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

Well, this one's taken from the movie Ready, Rahul Fateh Khan and Tulsi Kumar की आवाजों में. मेरी अदा भी क्या काम कर गई है, और हर किसी की अदा पे अगर आप मर बिट रहे हैं तो ऑफकोर्स क्यों ना हो. स्पेशली इन गानों की अदाओं पर क्या कहना. ऐसे ऐसे गाने चला रही हैं टू कीप यू इन द गुड मूड. वैसे फ्राइडे है और हम चाहते हैं कि इस फ्राइडे को आप थोड़ा सा मुस्कुराएं, एंड राहत की सांस तो सब लोग लेने ही वाले हैं, नोइंग दैट इट्स फ्राइडे. और खुशी के दो पल दस्तक दे रहे हैं जिसका नाम है सैटरडे संडे. ये तो चलिए मुस्कुरा कर काम की ओर बढ़िए, एंड एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपना काम निपटाइए और वापस घर जाइए शाम को. चलिए इस गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर. एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात उस पार, एक बार फिर से मुलाकात करेंगे इन योर मॉर्निंग बीट टिल 10 AM.

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है करुणा लालू जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते करुणा जी।
1: नमस्ते रत्ना, सभी को नमस्कार। भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम, धर्म और सत्य की जीत का संदेश देने वाला पर्व भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से कर्म, कर्तव्य और मानवता का मार्ग दिखाया है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया है जो देश की हवाई नीति की देखरेख करेगी। उन्होंने ट्रेजरी बिल्डिंग में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये घोषणा की। इस बीच प्रधानमंत्री का ये भी कहना रहा कि हवाई क्षेत्र का खोला जाना सबसे पहले देश के लिए फायदेमंद होना चाहिए। बेकम मॉरिशस ने बोमिस्टाट्स लॉन्च किया। ये एक नया स्टैटिस्टिक्स मंच है जिसे औपचारिक आर्थिक और वित्तीय डेटा की उपलब्धि को ज़्यादा आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के वास्ते स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की नीति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के मानदंड को बढ़ाने की भी घोषणा की। विदेश में यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। 8 लोगों की मौत हुई है, कई नदियां उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं नेपाल सरकार का अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश को लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। ये देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन का 10वां हिस्सा है। ये उसे देश पर एक नया बोझ और झटका भी है जिसने पन विद्युत संयंत्रों पर भारी निवेश किया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Morning beat.
3: Oh God! One more remix.
2: A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: भाई सोचने वाली बात ये है कि अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए अच्छा म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पर हमने कहा ना कि आपको मिलता रहता है योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट 9:07. अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार ये दिव्या टाइम क्यों बताती रहती है, सो लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टाइम के बारे में रिमाइंड करते रहना, क्योंकि रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है ये वक्त. इसीलिए हर एक वक्त को यादगार और खुशगवार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका हर एक पल एक्स्ट्रा स्पेशल तो हो ही जाएगा. और आपके इस फ्राइडे को और भी फन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक गाने ऑफ कोर्स, एंड साथ में आपके मैसेजेस. एक सेगमेंट हम स्पेशली आप लोगों के लिए रखते हैं जहां पर आपको पैम्पर करने का टाइम मिलता है. दैट इज कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294, क्योंकि हम आपके मैसेजेस को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं. अर्ली मॉर्निंग आपको मिलता है योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, और आपकी तरफ से हमें मिलता है डेली डोज ऑफ लव, बहुत बहुत सारा प्यार, बेशुमार प्यार जो आप अपने मैसेजेस के जरिए हमें भेजते रहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आपके मैसेजेस जब भी आते हैं ना तो हम अकेले रहने के बावजूद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. एंड वी फील एक्स्ट्रा स्पेशल कि आप इस रश वाले टाइम में भी हमें याद कर रहे हैं. और वैसे कहा जाता है ना कि जिंदगी में अगर आप किसी को अपनी कीमती चीज देना चाहते हैं तो वो है आपका वक्त. यही बहुत ही मुश्किल होता है, और आज इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी को अपना कीमती वक्त देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बट आप लोग उतने ही प्यार से एंड उतने ही ईज के साथ हमें याद करते हैं. सो थैंक यू, दिल से लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन. और कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी को रुलाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम होता है. और इस मुश्किल काम को हम बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं हमारे हर एक गीत के जरिए. सो थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग, एंड वी जस्ट वॉन्ट टू कीप दैट प्रेटी स्माइल अपन योर फेस.

0: एक वाइड एंड ब्रॉड स्माइल आपके चेहरे पर आ ही गया है, नोइंग दैट कल वीकेंड है. तो चलिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्राइंग टू कीप द गुड वाइब. एंड फ्राइडे वाइब को तो आप महसूस कर ही रहे होंगे हमारे गीत के जरिए. तो चलिए ऐसे ही विल कीप गोइंग ऑन टिल 10 AM.
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty in the mix.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर, जानेंगे कि दिन के दौरान सितारों की हालचाल कैसे रहने वाली है। शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, रुकी हुई आमदनी दोबारा शुरू हो सकती है। कार्यक्षेत्र में व्यवस्था प्रभावपूर्ण रहेगी। और वी हैव टोरस, वृषभ राशि, पैतृक संपत्ति या वसीयत से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। धन लाभ के पूर्ण योग है। जेमिनी मिथुन राशि, योजनाओं पर ध्यान दें। को वर्कर्स

0: कि सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए कामों में गति आएगी। कैंसर कर्क राशि, अटका हुआ काम पूरा होगा। पारिवारिक जीवन व प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लियो सिंह राशि, दूर संसार से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। व्यापार में अधिक निवेश करने से बचे एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आपका गट फीलिंग आपको कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सो डू ट्रस्ट इट एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड लिसन टू योर माइंड। वर्गो कन्या राशि, दस्तावेजों और कागजी कार्यों में अत्यधिक सावधानी बरतें। जो भी आपको कहा जाता है, आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास ना करें। थोड़ी बहुत अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। लिब्रा तुला राशि, करियर और धन के मामलों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अपने बजट पर विशेष ध्यान रखें। कहते हैं ना कि बस चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितना कि पैर जाता है, तो आप भी वही करिए एंड ट्राई टू लिमिट योर बजट। और बजट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अचानक बड़ा फायदा मिल सकता है, सो जस्ट वेट फॉर द गुड न्यूज़। आपका दिन एक्स्ट्रा स्पेशल जाने वाला है। धनुराशि, सजिटेरियस, नौकरी में नई संभावनाओं और नए अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। कैप्रिकॉन मकर राशि, आज नया कार्य शुरू करने से बचें, आधुनिक कार्यों और विचारों को आगे बढ़ाएं। अक्वेरियस कुंभ राशि, टीमवर्क और सामाजिक मेलजोल से कार्यों में सफलता मिलेगी। आखिर में वी हैव पाइसेस, मीन राशि, व्यापार का विस्तार होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। सो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज दस्तक देने वाले हैं एंड इसको सीज करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
1: योर डेली होरोस्कोप, RM2 रेडियो मस्ती।
2: Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti in the mix.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट 9:35 होने को है, चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस की ओर। यहाँ पर हमारी प्यारी सी जीना जोयसुरी जी ऑल द वे फ्रॉम अब्रॉड कनेक्टेड है हमारे साथ, सात समुंदर पार। जब भी हमें कोई याद करता है तो उसमें आप की प्यार की खुशबू और महक आ ही जाती है। सो जीना जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने कहा कि कृष्णा डिडंट कम टू टेक अवे योर प्रॉब्लम्स, ही केम टू टीच अस हाउ टू फेस देम विद अ पीसफुल माइंड एंड अ प्योर हार्ट। व्हेन यू सरेंडर under your worries to Krishna, he turns your storms into strength and your darkness into light. Trust his timing, everything is happening for your good. Happy Janmashtami. Thank you so much Jina ji, aapko bhi happy happy Janmashtami. Aur ye aapne bilkul sahi kaha, we need to trust his timing kyunki unki timing sabse best hoti hai and he knows best for us. Yahan par kisi ka message aaya hai, naam to aapne nahi bataya, bas aapne kaha happy Krishna Janmashtami. Okay, this is पूजा बोगन। हे पूजा, हाउ आर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विश एंड आई जस्ट विश यू हैप्पी जन्माष्टमी एज वेल। Hi Divya, glad to hear you. If possible, please put a birthday jingle for my brother-in-law Yudhish. Celebrating his birthday today, best wishes from Kevina and Arav. मैं बस सोच ही रही हूँ जितने भी सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, कितना स्पेशल डे हैं आप लोगों के लिए। इट्स अ डबल सेलिब्रेशन, एक तरफ जन्माष्टमी और एक तरफ आपके बर्थडेज, क्या बात है। गुड मॉर्निंग दिव्या एंड रेडियो मस्ती टीम, नाइस सिलेक्शन, खासकर राधे राधा कृष्णा के गाने हमारे दिल को छू रहे हैं। फ्रॉम चांदनी, हेलो चांदनी, कैसी हो। एंड यहाँ पर किसी ने हमें कहा हेलो गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल दिव्या, ओए होए क्या बात है, सुबह से मेरे कॉम्प्लीमेंट के बौछार शुरू हो चुके। अरमान आप है पोर्ट लुइस से, जस्ट वॉन्ट टू से यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच अरमान एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, इसीलिए आपको हमारी आवाज़ स्वीट लग रही है। एंड आपका मैसेज मे बी इनकम्प्लीट आया है अरमान, इफ पॉसिबल डू सेंड योर मैसेज वंस अगेन ऑन 5499-1294, नंबर वही है, आप व्हाट्सएप पर हमें याद कर सकते हैं। एंड चलिए यहाँ पर विशिंग रामा रामस्वामी अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आपको बहुत बहुत सारा प्यार फॉर फ्रॉम ऑल योर फ्रेंड्स एंड हैप्पी बर्थडे टू ब्रदर अश्विन कतवाहू फ्रॉम बिल्वी मोगल फ्रॉम सिस्टर विमला एंड कतवाहू फैमिली की तरफ से। सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ, बस जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती में नॉनस्टॉप ऐसे ही गाने चलाते रहेंगे आप लोगों के लिए।
0: मॉर्निंग बीट,
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: मॉर्निंग बीट.
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

956 ऑलरेडी एंड जाते जाते ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर रागिनी. ये कहती है कि प्लीज चला दो ये गाना हमारे लिए, कृष्णा धरती पे आ जा तू, एंड ये गाना जरूर परी लेकर आएगी आप लोगों के लिए इन द नेक्स्ट आवर. फिलहाल हमारे जाने का टाइम आ चुका है, हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक आस्था का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में हुआ था। इसी स्मृति में आज रात लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया जाएगा और उन्हें भोग चढ़ाया जाएगा। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम, धर्म और सत्य की जीत का संदेश देने वाला पर्व भी है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से कर्म, कर्तव्य और मानवता का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया है जो देश की हवाई नीति की देखरेख करेगी। ट्रेजरी बिल्डिंग में उन्होंने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हवाई क्षेत्र का खोला जाना सबसे पहले देश के लिए फायदेमंद होना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकता, नेपाल इसका ताज़ा उदाहरण है। 26 अगस्त की बाढ़ के बाद कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए, कई लापता हो गए। हालांकि खतरों को कम करना और लोगों की बेहतर सुरक्षा करना मुमकिन है। मॉरिशस में नियुक्त एक सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे इमरजेंसी में सीधे मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट भेजे जा सकेंगे। ऑनलाइन भी घूम रहे टूरिस्ट को संदेश भेजा जा सकता है। नेपाल सरकार का अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश को लगभग $5 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन का 10वां हिस्सा है। ये उस देश पर एक नया बोझ है जिसने पन विद्युत संयंत्रों पर भारी निवेश किया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। जान के रोड लेस्पेरेंस पिटू में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड श्री गोपालन वीरासामी जो इंदिरेन से जाने जाते थे और पहले स्कूल के हेडमास्टर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान जान के रोड लेस्पेरेंस पिटू से उठाकर दाह संस्कार के लिए लेस्पेरेंस पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM मेजोनेट स्ट्रीट रिविया डिजांगी में 16 साल की 16 ईयर ओल्ड कुमारी अवंतिका डोडान जो मिलीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे के पिता आतिन डोडान के मकान मेजोनेट गली रिविया डिजांगी से उठाकर दाह संस्कार के लिए घोंबुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM और रोथ्रॉयल तायाक में 54 साल के 54 ईयर ओल्ड श्रीमती देवी पीले रंगासामी जो देवी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान रोथ्रॉयल तायाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए घोंबुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

कहते हैं ना कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सेलिब्रेटिंग कृष्ण जन्माष्टमी और इस पायस दिन की बहुत सारी गुड विशेस हमारे सभी लिसनर्स को। सुबह के 10:09, इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स। मैं हूँ परी आपके साथ, गुड विशेस आप तक पहुँचा रही हैं। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: promotion Rak Chabandan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Crobe Moyer Blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
1: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ल कि आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहिए। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासीहोंस तोहर ख्याल रखेला। टोइंग की सुविधा एगो लुतु ऑप्लास्मो जब लुतु बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा। आर दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतु के चाबी भी गवा दिला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ले बाटी। जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
4: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So well, celebrating Krishna Janmashtami aaj aur aapki special wishes yahan par pahunch gayi hai on 5499-1294. Hare Krishna, happy Janmashtami. Beta Shivam jo Canada mein hai, mom Mala Solferino se unke liye bhej rahi hai special wishes on this pious day. Aur wishing happy 5th birthday to lovely mama Chanda of Rivede Zongi. Ye hai wishes from beta Yash, Ashley Darshini hai, sister Nanda aur saath mein hai babe Afsal, Ganesh, Aki Ashifa, Aisha, Yashni, Yesha, Ayush, Arav. Blessings coming from Bhai Varun, Mama Nirmala, Sabhi Sital Parivar, Koiche se lekar aaye hain unke liye special wishes. Janmashtami ka din aur aaj mana rahi hain apna birthday, so it's double celebration. Good wishes hamari puri team ki or se. और चलिए यहाँ पर कहते हैं प्लीज एक ब्यूटीफुल गाना हो जाए फॉर लवली वाइफ कविता बाजी और आप है अप दागुचे से सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज उनके लिए स्पेशल विशेज आई विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस एंड हमेशा उन्हें लॉन्ग लाइफ मिले दैट्स स्पेशल विशेज कमिंग फ्रॉम हस्बैंड राज बेटा अनिकेत शुभम प्रशांत तीशान साथ में है डॉटर इन लॉ दिशा करिश्मा डॉटर्स शिका दर्शनी श्वेता सिस्टर इन लॉज रूपा बबिनी सावित्री है संता ब्रदर इन लॉज दीवान वेद सभी परिवार की ओर से दयानंद भी है एंड सभी हीरो परिवार ब्रजी वेजय से उनके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गुड विशेज परसराम परिवार ऑफ कटबोन उन्हें विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे सो गुड विशेस ऑन योर स्पेशल डे जैसे हमने कहा कि आज तो ऑलरेडी एक का खास दिन है और अगर इस दिन आप मना रहे हैं अपना जन्मदिन सो इससे बेटर सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है वेल यहां पर कहते हैं गुड मॉर्निंग प्यारी परी गुड मॉर्निंग आपको टीना हमारा साथ दे रही है विशिंग यू एंड ऑल लव्ड वंस अ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी इस वक्त आप साथ काम कर रहे हैं एंड एंजॉयिंग द शो सो यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की गुड विशेस टू लवली लेडीज टीना अरुणा रागिनी हमारी प्यारी सी दिव्या एंड ऑफकोर्स मेरे नाम भी दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू टीना थैंक यू सो मच सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना कमिंग अप आप सभी के नाम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी

जैसे कहते हैं कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं कि भगवान सोते नहीं, शायद हम जशोदा के जैसे सुलाते नहीं। चलिए सो यही एक खूबसूरत गाना इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Week-end méga folies, code KDR Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily du

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.
4: So well friends, it's 10:42 और लेकर आए हैं कुछ फैशन टिप्स आपके लिए. स्टाइल का मतलब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना नहीं, अपनी पर्सनालिटी को वेयर करना होता है. सो सिंपल आउटफिट ऐड कर सकते हैं आप एक वाव एलिमेंट, स्टेटमेंट ईयर रिंग्स, स्टाइलिश बैग या फिर एक स्टैंड आउट शू. हमेशा ही ये आपके लुक को थोड़ा सा एनहेंस ज़रूर करता है. लेस इज ऑफन मोर, जो हम हमेशा कहते हैं. टू मैनी एसेसरीज ये एलिगेंस को स्टील कर सकते हैं आपके लुक से. और अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े चूज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाएंगे और आपका फिट जो है वो आप पर फैबुलस भी लगेगा. सो ऑलवेज वेयर क्लोथ्स जो आपके बॉडी टाइप को सूट करे. कलर्स को कोऑर्डिनेट करना है, मैच नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आउटफिट को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना सक्ता है. क्लासिक पीसेस लाइक क्रिस्प वाइट शर्ट, वेल फिटेड ट्राउजर्स या फिर लिटिल ब्लैक ड्रेस कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता. और जैसे हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट एसेसरी. एंड जैसे हम कहते हैं कि आउटफिट बाद में आता है, एटीट्यूड पहले आता है. सो स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
1: Fashion tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.

And well, after fashion tips, यहाँ पर मूड को आपका थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं. The evergreen song from the film Aashiqui 2, अरिजीत सिंह, पलक मुचल की आवाजें. Enjoy this one.

और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर। समाचारों के बाद आपको लेकर चलेंगे स्टूडियो के बाहर, होने वाला है कुछ खास आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती, एंड वंस अगेन कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी गुड विशेस।

0: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। जो लोग इस वर्ष 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उन्हें दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलते रहेगी। इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए वे अपने इलाके के सामाजिक सुरक्षा दफ्तर में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय उन्हें आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे। याद दिला दें कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद एक जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर सुरंग से 2 लोगों को जीवित निकाला गया है। बताया जा रहा है कि उसी सुरंग में कम से कम 39 अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि इस बाढ़ में 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। अर्धरात्रि को विश्व के पालनहार को लड्डू गोपाल के रूप में पालने में झुलाया जाएगा और बहुत ही उत्साह एवं प्रेम पूर्वक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भारत में नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची इंडिगो की एक उड़ान आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम के पोल के संपर्क में आ गया और उससे टकरा गई। दुर्घटना में विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार घटना के बाद भी हवाई अड्डे का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। भारत में 44 साल के 44-year-old श्री शैलेश शर्मा चट्टू, जो श्री गुरुदत्त चट्टू के बेटे थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं शनिवार 5 सितंबर को दिन के 11:30 भारत के समयानुसार उनके महिपलपुर, उनके स्थान महिपलपुर से उठाकर दाह संस्कार के लिए नई दिल्ली ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 11:30 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
2: RM2
3: Radio Masti.
4: तो चलिए दोस्तों, दिन के 11:04 और सुबह से हम आपको कह रहे हैं कि 11 के बाद हम आपको लेकर जाने वाले हैं स्टूडियो के बाहर। सो कहां लेकर जा रहे हैं, क्या है अपडेट्स, सब बताने के लिए हमारी गिनीशा हमारे साथ है। हेलो,
5: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू परी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो परी, सब कुछ बढ़िया?
4: सब कुछ बढ़िया, थैंक यू सो मच।
5: अभी आप और खुश हो जाएंगे और बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं ना, और खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जब स्कूलिंग, जब उनकी कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं तो काफ़ी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये क्या करें लाइफ में, कहाँ जाएं, ऐसा क्या काम हम कर सकते हैं जो आगे जाके लाइफ में इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर देम। तो आपको याद दिला दें, वी आर लाइव फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मॉरिशस यानी कि UTM फ्रॉम पोइंटसब। यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं बिकॉज वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। एनरोलमेंट फॉर अक्टूबर जो इनटेक है ना, वो खुल चुकी है। तो सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, जितने भी हो सकता है जो यंगस्टर्स हैं, गाड़ी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, तो आप ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे एनरोल करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं हमारे दिमाग में। तो सवाल पूछे भी तो किससे पूछे और जवाब देंगे हमें कौन, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं द इंटायर टीम ऑफ रेडियो मस्ती, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे सके। सो UTM का जो एनरोलमेंट जो है वो खुल चुके हैं एंड यू

0: कैन कम हियर. ओपन डे है एंड आज है, कल है, 5 दिनों के लिए, एक नहीं, अच्छा 5 बजे तक, सॉरी है, तो 5 बजे तक, 5 बजे तक दे हैव द एंटायर स्टाफ, एवरीवन, जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके रेस्पॉन्सिबल, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एवरीवन इज़ हियर टू गाइड यू. जी हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि अगर अभी तक आपको एक सीट नहीं मिली है एट द यूनिवर्सिटी, सो UTM इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर आप आ सकते हैं फॉर इट्स अक्टूबर इनटेक. ओके, आप यहाँ पर आएंगे, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो ट्यूशन फीस है सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, ये तो सबसे बहुत ही अच्छी बात है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कुछ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, देन ओनली विल बी एबल टू गो सो दैट वी कैन पे आवर कोर्सेज, लेकिन यहाँ पे नहीं, द जो ट्यूशन फीस है इट्स गोइंग टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट, ओनली यू हैव टू पे द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टूडेंट यूनियन फीस. एंड बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, थोड़ी देर में बारी बारी से आएंगे बहुत सारे जो रेस्पॉन्सिबल जो हेड्स हैं यहाँ पे, आपको डिटेल्स में बताने के लिए. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती. वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम UTM, यानी कि फ्रॉम पॉइंट टू सब.
1: RM2 रेडियो मस्ती. Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
2: Week-end Megafolies Côte Cadet, Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doom, sont aussi 44 500 roupies, puis 24 500 roupies. Et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sont aussi 3 790 roupies, puis 10 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouina, des ous, oui, zis, des ous, pour profite sa bande méga folie deal dans des magasins KDR Electro. Électromeubles à Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
3: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez un gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin blier zut. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui zut piatane? Réserve zut place à ce la même, l'eau 50 50 94 13.
1: RM2
4: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Masti।
2: खूबसूरत खूबसूरत गानों का सिलसिला चल रहा है आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए चेक योर टाइम। हमारे घड़ी में 11:15 हो चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए हैं एट UTM एट पॉइंट हिसाब। यस, जस्ट लाइक हमने आपको बताया कि एनरोलमेंट फॉर अक्टूबर 2026 जो उनकी एकेडमिक ईयर है 2026-2027 खुल चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू गिव यू मोर डिटेल्स। यस, वी हैव समवन वेरी नाइस हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माई स्वीट हार्ट एंड वेल come on all right to radio asti that's banana right ganga bisin
3: good morning ganesha good morning and namaskar to all our listeners of RM2 mauritius welcome to university of mauritius aaj hamara jo open days hai 10 se lekar sham ke 5 baje tak khula rahega tomorrow also it is going to be open from 10 to 5 in the afternoon kyunki jitne bhi hamare dost ya parents ya fir jo kaam kar rahe hain they want to come for application we are doing on spot application here right now

0: बिफोर डूइंग द ऑन स्पॉट एप्लीकेशन हमारे लेक्चरर सीनियर लेक्चरर सब बैठ के बच्चों को वन टू वन काउंसलिंग दे रहे हैं ताकि दे डू द most important which is judicious work of choosing their career path correctly. एक बार आपने अपना career path choose कर लिया तो फिर it is going to be very easy for you to pursue it for the 3 years and then you enroll for your master and complete it with a PhD. The sky is your limit. लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही important होता है कि आप अपने career path को बहुत सोच समझ कर आप choose करें. Why? क्योंकि शुरू में आपने बताया कि गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग द ट्यूशन फी एंड एग्जाम फीस. थोड़ा सा प्रिसीजन दे देती हूँ कि इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द फुल टाइम स्टूडेंट्स. जो पार्ट टाइमर्स हैं अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन रिमूव ऑफ क्योंकि यू आर वर्किंग एंड यू विल बी कमिंग फॉर पार्ट टाइम स्टडीज. नेवरदलेस अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस में आप पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए भी आ रहे हैं वी आर वेरी अफोर्डेबल एंड द प्राइसेस आर paid in 2 or 3 times. You can do अपना जो आप
1: facility
0: payments दे सकते हैं. You just have to write to the director and then you will be given the payment dates.
1: मतलब you guys are here to help in each and every way.
0: क्योंकि हम समझते हैं कि you cannot pay once, you cannot pay twice. हम भी इंसान हैं, हम समझते हैं that and you know university are not there to make business. हम लोग यहाँ पे हैं to make career.
1: We're here
0: to shape your character, to shape your future. So we have not raised our tuition fee for the past 26 years. Hamara jo price hai, jab humne shuruaat ki thi, ab tak it's been unchanged, still the same. So make the most, क्योंकि हमारे यहाँ सब टॉप नॉच कोर्सेज हैं. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे कोर्सेज आर डिज़ाइन एज पर मार्केट डिमांड. माने कि हम लोग देखते हैं और हमारे जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ के प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमको गाइड करते हैं कि व्हाट आर द मॉड्यूल्स एंड व्हाट आर द फील्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक समबडी गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्किंग. कहते हैं ना मर्शिद खबाई, बहुत ही ईजीली आपको मिल सकता है. सो द कोर्सेज दे हैव ऑल द मॉड्यूल्स. अगर आप एक अच्छे पकवान बना रहे हैं यू नीड द बेस्ट इंग्रेडिएंट. सो वी हैव द बेस्ट मॉड्यूल्स हियर विद द इंटर्नशिप इंक्लूडेड.
1: ओके, इंटर्नशिप के बाद डू यू गाइस डू जॉब प्लेसमेंट्स?
0: एग्जैक्टली, दिस इज द सेम. एक तो होता है हमारे जो मैनेजमेंट कोर्सेज में, एक होता है आप एक एनजीओ को जाके सपोर्ट करते हो इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस एंड देन यू हैव योर प्लेसमेंट विच इज़ इंटर्नशिप. हम बच्चों को इन द सेकेंड ईयर वी सेंड देम टू गो एंड वर्क एंड गेट द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस. We have to be very clear कि इन सब में आप सारा काम नहीं सीख सकते हो. बट
2: रेडियो मस्ती
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एक जरूरत नहीं पड़ी. काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली. डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में. हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने. फोन नंबर 5799378 हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते.
2: RM2 रेडियो मस्ती
0: अगर आप अपने बच्चों की जो फ्यूचर है सुरक्षित रखना चाहते हैं एंड यू वांट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सेंड देम टू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस वेयर यू हैव द बेस्ट कोर्स, द बेस्ट मॉड्यूल्स, द बेस्ट टीचर्स.
1: एज लिमिट
0: देयर इज नो एज लिमिट.
1: स्टार्टिंग
0: इट स्टार्ट फ्रॉम द वुमेन इट फिनिशेस इन द टॉम जस्ट फॉर द टॉक. लेकिन वी डोंट गो ऑन एज लिमिट.
1: मतलब कि
0: कभी भी आप
1: हो सकते हैं आप नौकरी वाले बंदे हो फिर भी आप सोच रहे हो कि अगर आगे जाके आपको प्रमोशन चाहिए काम पे, सो यू नीड सम अदर क्वालिफिकेशन, सो व्हाई नॉट, यू कैन ऑलवेज कम. एंड बहुत सारे लेडीज जो घर पे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है एंड वो अभी बच्चा हो गया अब क्या करेंगे. नो,
0: इट्स अ ब्लेंडेड कोर्स जो है.

0: ब्लेंडेड मींस यू गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एंड फेस टू फेस. हमारे जो पार्ट टाइम कोर्सेज हैं दे आर मोस्टली ऑनलाइन एंड हम लोग जो कोर्सेज करते हैं लेट्स से फॉर द मास्टर प्रोग्राम सैटरडे को दानाप्रेमी जी, संडे मॉर्निंग वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, दैट इज आफ्टर वर्किंग आवर्स. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए?
1: So I guess you said it all. ये नहीं है कि अब बहाना आपको मिल गया कि ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ. करना है तो अगर आपने ठान लिया कि करना है, so when there's a will, there's always a way. And I guess you guys already showed the way. So yes, we are from UTM right now, the University of Technology of Mauritius. यानी कि at a point to sub, any phone number as well.
0: They can always call on 207-5250. You can come to the University of Technology of Mauritius Student Affairs Department Admission Office for admission, or you can contact the marketing department, which is mine. You can look for Vandana or Shweta, the public relation officer. We will help you, we will guide you. Hamare website pe, hamare Facebook page pe sari information uplabdh hai. You can just go consult. Agar aapke dimag mein ya fir dil mein koi bhi question hai, you can come right here right now at University of Technology Mauritius. We will guide you, we will counsel you, we'll make you understand everything, why it is important.
1: And it is very important for you to know कि आज और कल आप आ सकते हैं. 10 बजे खुल जाते हैं सुबह, 5 बजे शाम तक,
0: शाम के 5 बजे तक, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं 12 बजे, 1 बजे या फिर 4 बजे भी खत्म कर रहे हैं तो आ सकते हैं.
1: So I guess kids can bring their parents as well.
0: Exactly.
1: That's going to be much
0: it's
1: better.
0: It's important to bring the parents ताकि वे जान सके कि क्या हो रहा है और क्या कितना पेमेंट क्या कुछ है. It's very important क्योंकि पे करने वाले वही है.
1: Okay. So guys, not to forget, yes, you can come with your parents. Ya akele bhi aa sakte hain. So you can consult UTM at Apoor Sab. The enrollment for October 2026 jo hai academic year 2026-2027 khul chuke hai.
2: RM2
3: Radio Musti
2: Chan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
4: Weekend Mega Folie Scout KDR Electromeub Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit Sauti 14 900 roupies, Vin 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises Sauti 49 000 roupies, Vin seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recline avec massage s'il vous plaît. Sauti 24 900 roupies, Vin 14 500 roupies. Ouena Dizou, oui, Zis Dizou, pour profite Sabat Mega Folies Deal dans des magasins KDR Electromeubles. Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
2: RM2
3: Radio Must.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, आपको याद दिला दे कि आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, आर्ट पॉइंट साहब. और अगर आप या आपके बच्चे अपने फ्यूचर और कैरियर को लेकर सीरियस हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो अक्टूबर इनटेक 2026 के लिए एनरोलमेंट इज़ नाउ ओपन एट द UTM. यहाँ आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर कैरियर. यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड आपके जो सपने, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको यहाँ मौका मिलता है टू गिव इट अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन. जी हाँ, सो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म जो है, टूरिज्म एंड वी हैव हेल्थ साइंसेज. एंड यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के साथ साथ डॉक्टोरल स्कूल के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, UTM सिर्फ कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, इवन इन पेमेंट फैसिलिटी. और आपको याद दिला दे कि यहाँ पे इफ you are coming as a full-time student, your tuition fees will be subsidized by the government and you only have to pay the administrative and student union fee. Or जैसे अगर पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, स्कूल लीवर्स, ग्रेजुएट्स, सबके लिए डोर्स आर ओपन आज और कल. यानी कि सुबह खुल जाते हैं 10 बजे, शाम के 5 बजे तक. सो UTM कैंपस आप विजिट कर सकते हैं. और इंफॉर्मेशन के लिए, आपके फ्यूचर को नेक्स्ट स्टेप जो है डिसाइड करवाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं, सो वाई नॉट, वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हियर, दे आर गाइडिंग यू कि आप लाइफ में आगे जाके क्या कर सकते हैं. हो सकता है कि आपका कोई सपना था तो you really don't know which direction to go, so you just have to join the team here, University of Technology Mauritius, jahan pe your future starts with a right choice. So this is an occasion not to miss. You just come here, aapko yaad dila de enrollment for October 2026, yani ki jo year 2026-2027 academic year ke liye aap enroll karwana chahoge, so it's happening right now. Aur agar aap chahe so you can just check on their website. Wo bolte hai ki website pe, Facebook pe, social media pe, har unke jo page hai वहाँ पे यू कैन गेट सो मेनी उनके जो इन्फॉर्मेशन है, यू कैन ग्रैब इट देयर. और आप यहाँ पे आ सकते हैं एनरोलमेंट के लिए.
1: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. RM2
0: Radio Musty.
3: L'envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
4: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Masti. I really hope that you guys are really loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. आपको याद दिला दे 11:42 हो चुके हैं, time पीटा चला जा रहा है. लेकिन guys, you don't have to waste your time. जी हाँ दोस्तों, जितने भी मम्मी पापा हमें सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे अपने जो career है ना start करना चाहते हैं तो एक बार University of Technology Mauritius जरूर visit कीजिए. At Pointe aux Sables, October intake 2026 के लिए admissions are open. And technology हो, engineering हो, tourism के field में जाना चाहते हैं या health science, डिफरेंट फील्ड्स में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे. और फिलहाल के लिए वी डू हैव डॉक्टर तुषिमा चेरी मकुनलाल. शी इज द सीनियर लेक्चरर स्कूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म. शी इज हियर विद अस ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मस्ती. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू यू.
2: Good morning to you all.
1: What a lovely voice. So, Dr. Tushima, you can give us more details about your department so that kids should really know what are you guys exactly offering to them.
2: Okay, so good morning. And in our school, it's the School of Sustainable Development and Tourism. So we are talking about the Department of Environment and Social Sustainability. So what I can tell the parents and even bachon ke liye aap jaise kaha hai, donc if they can come to the University of Technology, come to understand the program. So the programs that we offer is in climate change, in social development, social sciences, and of course occupational safety and health. I think all of the topics that I have mentioned today, everybody knows about them.
1: Okay.
2: We need to understand about.
1: अगर ये लोग इस फील्ड में जाते हैं तो आगे जाके किस लाइन में, मतलब किस टाइप के नौकरी उनको मिलेगी? हो सकते हैं किसी कोई कोई बच्चे हो सकते हैं कि दे जस्ट नो अबाउट द जॉब टाइटल बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी.
2: ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सोशल वर्क बोलते हैं, सोशल वर्क एंड सोशल इनोवेशन, ये क्या है? हमारे बुर्जों के लिए बहुत अच्छा है. वी हैव एन एजिंग पॉपुलेशन इन मॉरिशस, सो ऑब्वियसली वी नीड पीपल हु नीड टू वर्क इन हेल्थ केयर, इन सोशल केयर, इन काउंसलिंग. सो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दीज स्टूडेंट्स. यू हैव टू थिंक, अभी के लिए हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम 3 साल के बाद नौकरी के मौके
1: ढूंढते हैं.
2: डोंक 3 years के बाद इस जॉब को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. डोंक हम हॉस्पिटल्स काम कर सकते हैं, होम्स में काम कर सकते हैं, या यू कैन वर्क ऑल्सो इन आस केयरर्स, लाइक इवन यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस. यू कैन ऑल्सो डू SMEs nowadays एंड क्रिएट योर ओन बिजनेस, क्रिएट योर पूल ऑफ सोशल वर्कर्स एंड ऑल्सो केयरर्स टू बी एबल टू केटर फॉर आवर एजिंग पॉपुलेशन.
1: ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, यू हैड सम स्टूडेंट्स अर्लियर डूइंग दीज प्रोग्राम्स, हु चोज दीज प्रोग्राम्स. अभी आप लोगों ने कुछ प्लेसमेंट किया है तो ये मतलब कहाँ पहुँच गई है लाइफ में?
2: ये प्रोग्राम बहुत नया है तो अभी है ये अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम करने के लिए. डोंक यू कैन स्टार्ट विथ सोशल वर्क एंड सोशल इनोवेशन एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स डू योर मास्टर्स इन काउंसलिंग, इन मेंटल हेल्थ. इतने सारे फील्ड हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, सो आप काम कर सकते.
1: सो द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज कितना टाइम है?
2: इफ इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम ऑन द डिग्री लेवल इज 3 years, एंड इफ इट्स अ मास्टर्स प्रोग्राम ऑन अ पार्ट टाइम मोड इट्स 2 years. एंड वी हैव टू मेंशन टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, आवर प्रोग्राम्स आर बोथ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस. सो इवन इफ यू वर्किंग, डू नॉट हेजिटेट. वी हैव द मास्टर्स, लाइक आई सेड, इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ and environment, and also in climate change.
1: Okay.
2: I think we've all the challenges that we're facing, and El Nino, as we are all hearing every morning on the radio and in the news, is really concerning for countries like Mauritius. And we ask our professionals who are already in the field working and probably not getting the right solutions and understanding climate

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Such beautiful and mesmerizing gaane, especially for you. I really hope that you guys are feeling good, energetic this beautiful morning. Jahan dosto, filhal ke liye we are at the UTM, yani ki University Technology Mauritius at Pointe aux Sables. So jitne bhi log hame sun rahe hain right now across the island. So listen up guys, October intake 2026 ke liye enrollment is officially open at the University of Technology Mauritius. So agar aapka interest hai technology mein, engineering mein, tourism mein ya health sciences mein, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज या डॉक्टोरल प्रोग्राम के बारे में सोच रही हैं तो यूटीएम हैज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. यस, करियर अगर बनाना है, स्किल्स डेवलप करनी है, फ्यूचर को एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको देनी है तो कम एंड डिस्कवर व्हाट यूटीएम हैज टू ऑफर यू. सो गाइडेंस है, फैसिलिटीज ऑफ पेमेंट है, ऑप्शंस के साथ यूटीएम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है थ्रू आउट देयर एकेडमिक जर्नी. सो गुड न्यूज ये है कि डोर्स आर ओपन टुडे एंड टुमारो. सुबह खुल जाती है 10 बजे का और शाम के 5 बजे तक. दे आर हियर टू वेलकम यू. और सो जितने भी स्टूडेंट्स हमें

0: रहे, हम तो आपको एडवाइस ये भी देंगे कि अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से परेशान हैं, नहीं पता कि आगे जाके लाइफ में इनके बच्चे को जॉब मिलेगी या नहीं, क्या करना है, कौन से पाथ में चलना है, कौन से करियर चूज करना है, सो ब्रिंग योर पेरेंट्स अलॉन्ग, ब्रिंग योर क्वेश्चन, ब्रिंग योर एंड जस्ट कम एंड डिस्कवर योर फ्यूचर एट UTM, और अपने जितने भी आपके क्वालिफिकेशन हैं, सर्टिफिकेट्स, आपके पेपर्स हैं, सब कुछ लेकर आना, क्योंकि जो उनका एनरोलमेंट है वो शुरू हो चुके हैं, जो एकेडमिक ईयर 2026-2027 के लिए है, इट्स ऑल ओपन फॉर यू, सो डू कम एंड मीट अस एट UTM, यानी कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मॉरिशस एट पॉइंट ऑफ सब।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check, exactly 12 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। जो लोग इस वर्ष 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन का लाभ उठाने के लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपने इलाके के सामाजिक सुरक्षा दफ्तर जाना होगा। गौरतलब है कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल की स्थापना का ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी देश की हवाई नीति की देखरेख करना। बेकमोरशिस ने बमस्टाट्स लॉन्च किया, एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए औपचारिक आर्थिक व वित्तीय डेटा की उपलब्धि हो सकेगा ज़्यादा आसान और पारदर्शी रूप से। अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की अपनी सरकार की

0: की नीति पर जोर दिया। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। अर्धरात्रि को विश्व के पालनहार को लड्डू गोपाल के रूप में पालने में झुलाया जाएगा और धरती पर धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही उत्साह एवं प्रेम पूर्वक मनाया जाएगा। विदेश में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद एक जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर सुरंग से 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उसी सुरंग में कम से कम 39 अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नेपाल में ही सरकार का अनुमान है कि हालिया बाढ़ से देश को लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। ये देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन का 10वां हिस्सा है। ये उस देश पर एक नया बोझ है जिसने जल विद्युत संयंत्रों पर भारी निवेश किया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। और भारत में नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची इंडिगो की एक उड़ान आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम के पोल से टकरा गई। घटना में विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मेजोनेट गली रिविया डिजांगी में 16 साल की 16-year-old कुमारी अवंतिका डोडान जो मिलिना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके पिता आतिन डोडान के मकान मेजोनेट गली रिविया डिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 4 PM। भारत में 44 साल की 44-year-old श्री शैलेश शर्मा चत्तू जो श्री गुरुदत्त चत्तू के बेटे थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है शनिवार 5 सितंबर को दिन के 11:30 भारत के समयानुसार महिपालपुर से उठाकर दाह संस्कार के लिए नई दिल्ली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 11:30 AM। रोट रॉयल पाल्मा का ट्रिब्यून में 70 साल की 70-year-old श्रीमती मालाबाई लक्ष्मण पैदाइश नाम हरी जो मालाबाई से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 इनके पति श्री मारुत लक्ष्मण के मकान गोटवायाल पाल्मा का ट्रिब्यून से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 AM till 2 PM. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
2: Week-end méga folie, scout KDE, Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sont aussi 44 500 roupies, puis 24 500 roupies. Et en cadeau, un dressing table pour madame. Airfryer Techwood, 5.3 litres, sont aussi 3 790 roupies, puis 2 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, des ous, oui, zis, des ous, pour profite sa ma méga folie deal dans des magasins KDR Electro. Électromeubles à Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
3: RM2 Radio Musty.
4: Yeah. Slow

0: 10 मिनट हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. स्वागत है आप सभी का राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. जहां दोस्तों टाइम के मुताबिक देखा जाए तो यू माइट बी हैविंग योर लंच राइट नाउ. सो बोन अपेटाइट टू यू. और आपके एपेटाइट को और बढ़ाने के लिए आई हैव गॉट अ मच बेटर न्यूज फॉर यू माई डियर एंड लवली पीपल आउट देयर. वैसे पूरे मॉरिशस में जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप अक्टूबर 2024 में अपने फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो सिर्फ सोचे मत, एक्शन लीजिए. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस में अक्टूबर इनटेक 2026 यानी कि जो साल 2026 और 2027 के लिए ये एनरोलमेंट खुल चुकी हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, और आज और कल आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है पर्सनली आकर प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए. टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, टूरिज्म हो, हेल्थ साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और डॉक्टोरल स्कूल, सो मेनी पॉसिबिलिटीज एक ही जगह पर. सो इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं. आप एक ही जगह पे आएंगे. वी हैव सो मेनी पीपल, क्वालिफाइड पीपल सिटिंग हियर टू गाइड यू, टू एडवाइस यू कि आप आगे जाके लाइफ में क्या कर सकते हैं. और अगर आपने यहाँ पे अपने आप को एनरोल किया 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, PhD भी कर ली, सो प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट के लिए भी दे हैव द अपॉर्चुनिटी हियर. सो अभी के लिए आई डू हैव डॉक्टर कवि नौबत सिंह जी हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. ही इज द हेड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट and finance SBMF. So aapka swagat hai on Radio Masti.
1: Thank you, Ginisha.
0: So tell us more about what programs you guys are offering to the students.
1: Right, so for this intake, which is the October intake, we have the School of Business Management and Finance presenting the postgraduate programs, which are the MBAs mainly. We have mostly the MBA General Project Management, Finance Investment, and also LLM in corporate and insolvency law. That's for our master's postgraduate program. And secondly, for the undergraduate programs, we have others like BSc Honours Logistics and Transport Management. And this is a top-up. Mm-hmm. So it's a top-up for people who have diplomas. They can join in and 1.5 year.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti.
0: RM2.
2: और चलिए दोस्तों बैक टू यूटीएम थोड़ी ही देर में, लेकिन अभी के लिए लेकर आए हैं एक गेम जहां पर आप हमारे साथ खेलें और आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. सो लेट मी टेल यू दैट आप क्या जीत सकते हैं. सो खेलें आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, जीत सकते हैं 2 tickets टू सर्कस वाटा, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंस. ये होगा पूरे परिवार के लिए. सो यहां पर आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन और आपको देना है मुझे सही जवाब ऑन 54991294. आपके लिए सवाल है, व्हाट डू वी कॉल अ बाइसिकल दैट हैज ओनली वन व्हील. एक बाइसिकल जिसकी बस एक व्हील होती है उसे हम क्या कहते हैं. आपके सही जवाब 54991294 पर, 54991294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: फील द मस्ती.

0: तो चलिए यहाँ पर हमने आपसे पूछा था एक सवाल, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ बाइसिकल दैट हैज ओनली वन व्हील एंड द राइट आंसर इज यूनिसाइकिल, दैट्स द राइट आंसर। एंड यहाँ हमें मिले बहुत सारे सही जवाब। लकी ड्रॉ के बाद बेगम मोहरन आप है कौन दिमास पावे से बन गई है लकी लकी विनर। So well, congratulations, you have just won tickets to Circus Zavata and get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances for the whole family. Catch kar sakte hain aap Circus Zavata at Bagatelle with the shows every Thursday and Friday, shaam ko 6 baje and every Saturday and Sunday, 2:30 PM and 5:30 PM. Booking ke liye and zyada information ke liye aap call kar sakte hain 5250-9413 5250-9413। Circus Zavata, don't miss the magical big show। So अभी के लिए आप जीत गए हैं दो tickets, so आपको कहेंगे congratulations। Stay connected ऐसे ही RM2 Radio मस्ती के साथ, जीतने के मौके और भी मिलेंगे। अभी के लिए back to university, आपके लिए कुछ और details लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में। Stay well connected।
1: You're listening to RM2 Radio मस्ती।

एंड वेल हमारी विनर आपको बता दें टिकट कलेक्ट करने के लिए आपको आना होगा एमबीसी मंडे टू फ्राइडे आप यहां पर आ सकते हैं सुबह 9 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक सो डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग बेगम मोहरन जो बन गई हैं हमारी लकी विनर कांग्रेचुलेशंस

0: 102
1: Radio Masti.
2: बिल्कुल जी, वी आर राइट नाउ एट यूटीएम ऑफ पॉइंट सब. जी हाँ, वैसे दोस्तों हमेशा याद रखना कि सपने देखना बहुत इजी होता है, लेकिन अपने सपने को कैरियर में कन्वर्ट करना वो एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी होता है, एंड इट्स नॉट दैट इजी. सो टुडे वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका हम लेकर आए हैं कि आप अपने सपने को

0: later on. And so you see it's a sector that, you know, these are programs that are opening doors for our young people.
1: Tabhi to bolte hain ki education ke field mein ye padhna seekhna kabhi khatam nahi hota hai. Even if you're a working person aur aap chahte ho ki jaise abhi bola hai that if you want a promotion you need some more qualifications, some more certificates. Bolte hain ki certificates collection ke liye nahi hota, it always help you ahead to find something in your life. To yahan pe at UTM agar aap kuch jo aapke future dreams hain unko haqeeqat mein बदलना चाहोगे, सो दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू डू इट. और साथ में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आप एनरोलमेंट करना चाहोगे लेकिन कैसे पे करेंगे एक बारी में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि दे गिव यू फैसिलिटी ऑफ पेमेंट. और अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट्स के तौर पर यहाँ पे आते हो तो ट्यूशन फीस जो है सब्सिडाइज होता है बाय द गवर्नमेंट, ओनली यू हैव टू पे द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस एंड इवन स्टूडेंट यूनियन फी. तो मैं तो बोलती हूँ कि देरी किस बात की, आप यहाँ पर आएगा ज़रूर एट यू टी एम यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस विच इज एट पॉइंट टू सब.
2: RM2 Radio Musti.
3: RM2
2: Radio Musti.
4: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudis et vendredis, 18h, achetez des billets, gagnez un gratis. Ou pour un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier zut. Nous avons un package spécial pour zut avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui zut piatan? Réserve zut place à la même l'eau 50 94 13.
3: RM2
2: Radio Musti.

0: बाथरूम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: तो चलिए दोस्तों, टाइम टू प्ले वन मोर गेम, जहां पर आप जीत सकते हैं 2 tickets टू सर्कस ज़वाटा। और इसे जीतने के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम आपको पूछ रहे हैं, सिंपल सा जवाब देना है और उसके बाद ये इनाम आपके नाम। सो वेल, थोड़ी देर पहले हमने आपको कुछ डिटेल्स दी थी, तो आपको हमें बताना है कि सैटरडे और संडे कितने परफॉर्मेंसेज होते हैं ये जो सर्कस है, सर्कस ज़वाटा। हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज आर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे? एक या दो, एक परफॉर्मेंस होता है सैटरडे संडे को, या फिर दो परफॉर्मेंसेज आप देख पाते हैं ऑन वीकेंड्स। आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर आपके सही जवाब, आपके पूरे नाम पूरे पते के साथ। अगर पहले जीत हो चुकी है प्लीज दूसरों को मौका दे, एंड इन केस अगर अभी तक आप नहीं जीत पाए हैं सो ऑल द वेरी बेस्ट, किस्मत को ट्राई कीजिए, अपने लक को ट्राई कीजिए। एंड सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स पर हाउ मेनी performances are scheduled, one या फिर two? Waiting for your right answers on 5499-1294, आपके पूरे नाम पूरे पते के साथ। All the best.
1: RM2 Radio Masti।

RM2 Radio Musti. Check your time, guys. 12:39 minutes होने को हैं. Yes, you're listening to your number one radio station. यानी कि RM2 Radio Musti के निशान the mic and we are broadcasting live from UTM. यानी कि University Technology Mauritius from Pointe aux Sables. वैसे जितने भी parents साथ दे रहे हैं हम इतना तो जानते हैं कि जितने भी मम्मी पापाज होते हैं हमेशा बच्चों के फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं. वी वांट द बेस्ट फॉर देम, राइट? तो आज और कल एक काम जरूर कीजिए. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस

0: विजिट कीजिए क्योंकि अक्टूबर इनटेक 2026 के एनरोलमेंट ओपन है और आप पर्सनली प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने बच्चे के जो करियर है ऑप्शंस को बेटर समझ सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी अगर उसमें इंटरेस्ट है आपके बच्चों का, या इंजीनियरिंग, टूरिज्म, हेल्थ साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं उनके लिए। सो गाइडेंस हैं, फैसिलिटीज ऑफ पेमेंट्स यहाँ आपको मिल रहे हैं। ऑप्शंस के बारे में भी टीम से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। सो डेरी की इस बात की, बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आप अपने सारे पेपर्स को, सर्टिफिकेट्स को लेकर यहाँ पे आएगा ज़रूर एंड गाइडेंस आपको मिलेगा फ्रॉम बहुत ही वेल टैलेंटेड पीपल। सुबह खुल जाती है 10 बजे, शाम के 5 बजे तक दरवाजे खुले हैं। सो ब्रिंग योर सन, ब्रिंग योर डॉटर। अगर आप खुद हो सकते हैं कि यू आर अ पेरेंट बट स्टिल यू वॉन्ट टू स्टडी मोर, आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे लाइफ में, सो ब्रिंग योर क्वेश्चंस एंड लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर गाइस। सो अभी तक डिसाइड नहीं किया तो अक्टूबर में क्या करना है तो यहाँ पे आना है, ज़्यादा सोचना नहीं है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये जो एनरोलमेंट है वो खुल चुके हैं फॉर अक्टूबर 2026 यानी कि एकेडमिक ईयर 2026 और 2027 के लिए खुल चुके हैं। और अगर आप यहाँ फुल टाइम स्टूडेंट्स के तौर पे आना चाहोगे सो ट्यूशन फीस इज सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, ओनली यू हैव टू पे सम एडमिनिस्ट्रेटिव फीस और स्टूडेंट यूनियन का जो फी है यहाँ पे यू जस्ट हैव टू पे दैट। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट आपको मिल सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, यू आर अ वर्किंग पर्सन, यू फील लाइक यू वॉन्ट टू स्टडी मोर, हो सकते हैं कि प्रमोशन गेन करने के लिए यू नीड सम मोर सर्टिफिकेट्स, सो व्हाई नॉट अगर आपको और भी कोर्सेज करना है सो यू कैन डू पार्ट टाइम एंड इवन ऑनलाइन कोर्सेज दे आर प्रोवाइडिंग यू एट द यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ऑफ मॉरिशस एट पॉइंट ऑफ सब। सो वी आर वेटिंग फॉर यू एंड विल बी हियर टिल 5 PM।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: So, लेकर चलेंगे आपको बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस टेक्नोलॉजी मॉरिशस। तो अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल सा सवाल पूछा था आपसे दैट हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज आर शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे, एक या फिर दो, वन या फिर टू। द राइट आंसर इज टू परफॉर्मेंसेज, आप एंजॉय कर सकते हैं टू परफॉर्मेंसेज ऑन वीकेंड्स। सो देंगे आपको डिटेल्स थोड़ी ही देर में। वैसे यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब। लकी ड्रॉ के बाद आरती रामचंद मोंटाए ओरी से बनती है हमारी लकी विनर। Congratulations! So well, Aarti ji, diya hai aapne sahi jawab. Congratulations! You just won 2 tickets to Circus Zavata. Get ready for an unforgettable experience filled with magic thrills, laughter and spectacular circus performances. Ye hoga aapke poore parivar ke liye. Catch Circus Zavata at Bagatelle with the shows every Thursday and Friday at 6 PM and Saturdays and Sundays 2:30 PM and 5:30 PM. Booking or information ke liye aap call kar sakte hain 5250-9413. 5250-9413 Circus Zavata, don't miss the magical big show. So चलिए अभी के लिए तो आप जीत गए हैं इनाम और इसे कलेक्ट करने के लिए आना होगा MBC. मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पर आ सकती हैं सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक। डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग। सो आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय द सर्कस एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ। जीतने के मौके और भी मिलेंगे।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
2: सच ब्यूटीफुल एंड लवली लवली गानों का सिलसिला बस हम लेकर आते हैं आपके और हमारे बीच में ऑन टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम, 12:49 हो चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू गणेशा राइट नाउ. और फिलहाल के लिए वी आर नॉट इन द स्टूडियो, हम स्टूडियो के बाहर हैं. वी आर एट UTM यानी कि पॉइंट ऑफ सबसे यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मॉरिशस में. सो दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा स्टेप फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेता है. बिल्कुल जी, आप पीछे क्यों बैठेंगे, आप पीछे क्यों रहेंगे. आज वो स्टेप लेने का टाइम आ गया है. सो गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, यस, एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस. यहाँ पे अक्टूबर इनटेक 2026 के लिए एनरोलमेंट ओपन है. और अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी के आंटी हैं, किसी के अंकल हैं, किसी के पड़ोसी हैं, किसी का दोस्त हैं, सो प्लीज पास ऑन द मैसेज कि ये लोग यहाँ पे आ सकते हैं. यस, आप अपने कैरियर में नेक्स्ट लेवल बढ़ा सकते हैं. एंड कम एंड एक्सप्लोर वॉट UTM हैज टू ऑफर यू. सो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, हेल्थ साइंसेज, पोस्ट graduate programs, बहुत कुछ है. सो योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कुड बी वेटिंग फॉर यू राइट हियर राइट नाउ. आज हम यहाँ पे हैं, सुबह 10 बजे खुल चुके हैं, शाम के 5 बजे तक. और कल भी सैटरडे, अगर आप चाहे तो यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स अलोंग. अगर आपको खुद करना है, अडल्ट, यू कैन कम. एंड द डोर्स आर ओपन टिल 5 PM, 10 to 5 PM. सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, मेक दिस मोमेंट काउंट एंड कम टू UTM एंड मेक दैट फर्स्ट स्टेप आपके फ्यूचर की तरफ. और फिलहाल के लिए आई हैव डॉक्टर मनीष पुतिराज हमारे साथ, जो है सीनियर लेक्चरर ऑफ, और यहाँ पे ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ साइंसेस, राइट. सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
3: गुड आफ्टरनून. सो थैंक यू फॉर दिस वार्म इंट्रोडक्शन. And as you've rightly mentioned, I'm from the School of Health Sciences. Mm-hmm. And the School of Health Sciences, and we know health sciences is a very buzzing field at the moment. Mm-hmm. So we do have a number of programs which are quite interesting at different levels. We have at the postgraduate level as well as at the undergraduate level. So I'll start with those who are already working and those who are, already into the healthcare sector. We have one interesting program, which is the postgraduate, a master's in health services management. And this program is very appealing to a number of individuals who are in the managerial or administration field. So whether you're a doctor, whether you're a nurse, whether you're a pharmacist, okay, this program is appealing to you, especially if you want to move up the ladder within the administrative arm. Mm-hmm. And following from that, we do have another master's, which is the MSc in Environmental Health Engineering and Food Safety. And that one has been quite of interest for those who are in the field of, health inspectorship, for instance. They did find the program quite interesting because we cover both dimensions, environmental dimension. Program, just to highlight, this is in collaboration with the C-Cyber Institute of India. So we do have quite a lot of resources that are being shared between UTM and C-Cyber as well. And moving along, so this is for our postgraduate programs. At the undergraduate level, we have 3 interesting pillars. Mm-hmm. So I'll start with the first one, which is the more energetic one. We have a pillar in sports coaching.
2: Okay.
3: So we do offer the diploma in sports training, coaching and exercise, and this is complemented with our BSc honours in sports coaching top-up. Now, the interesting thing with this program is that program is recognized for anyone who would want to join the education sector. So
2: like
3: students
2: physical education,
3: who, exactly. Yes. So mm-hmm.
2: PE teacher.
3: So
2: yeah.
3: We could have a lot of candidates who are interested in that field. Mm. And we do have gym owners, for instance, who are also quite interested in the program because it also covers a lot of the entrepreneurship dimension which is embedded into the program.
2: Mm-hmm.
3: So that's about sports. The next one, which is again in line with our healthcare sector, this is the BSc Nursing Top-Up Program. So this program has been developed for our nurses. So for a very long time, nurses had a diploma in nursing. Mm-hmm. And now we are opening that pathway in order to upskill them with a full-fledged BSc degree. So students, registered nurses who are already practicing, they can join into our program. It's a 1-year full-time. So they can join, and we also offer the program in a part-time mode, so they can join into the program so that they can convert their diploma

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। इस साल पहली सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा। पेंशन में बदलाव के लिए श्रमिक संघ संगठन 17 अक्टूबर को पोर्टलुई में शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। मार्च मारीगन दुलापे से शुरू होगा। संगठनों की मांग है कि सभी लोगों को बिना शर्त के 60 साल की उम्र से रिटायरमेंट पेंशन दी जाए। मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा। सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी। एहतियात है एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। मॉरिशस में नियोक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन्स पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी। पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगे। सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है। मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं। मॉरिशस की आबादी घट रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगभग बराबर हो गई है। पहली जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316

0: थी, ये एक साल में 3425 कम हुई है। साल के पहले 6 महीनों में 6386 जन्म और 6333 मौतें दर्ज हुई। जन्म में करीब 10% की कमी आई है, जबकि मौतें 2% बढ़ी हैं। इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड प्लेंडी पपाई में 82 साल के 82 years old के जगदीश रामगति सिबंधन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रामेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे विशाल सिबंधन के मकान प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: रेट्रो रिदम।
1: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे। इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे आफ्टरनून। मैं हूँ परी आपके साथ। 1:10 हो गए हैं एंड सेलिब्रेटिंग कृष्ण जन्माष्टमी। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और बस वेलकम कर रहे हैं आज हमारे प्यारी से कृष्णा को। वैसे तो कहते हैं कि उनके बिना किसी का उद्धार नहीं, और जब वो अपनी कृपा बरसाते हैं तो फिर टेंशन लेने की या फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी के लिए हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हूं परी आपके साथ इन योर रेट्रो रिदम। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके गुड विशेस आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294। चलिए सभी के लिए हम भी फुल जोश के साथ वेलकम करते हैं आप सभी का विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और कृष्ण जन्माष्टमी की लेकर आए हैं बहुत सारी गुड विशेस सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं। दैट्स योर रेट्रो रिदम, आरएम2 रेडियो मस्ती।

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्यारे प्यारे गाने आप एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर मिस्टर अविनाश हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं गाना फॉर वाइफ नताशा, एंड आई गेस लुट गए हम तो राहों में, दैट वाज हर फेवरेट सॉन्ग, इसे

डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर लवली लवली वाइफ नताशा जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं. हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून. दैट्स योर रेट्रो रिदम ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड वेल यहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी प्यारी सी झाना जी गानों को हमेशा एंजॉय करती है, हमेशा हमारा साथ देती हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक और कहते हैं स्वीट बातों के साथ कनेक्टेड रेडियो मस्ती और हम भी आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं. डेडिकेट कर रहे हैं गाना पूरे परिवार के नाम, रीमा जनिता सेष्टा अंशनी सिल्विया यूवी कृषि शिवसरन परिवार जो हमेशा साथ निभाते हैं. सो गाना होगा आपके नाम एंड हमारी प्यारी सी विजया जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं. तो चलिए वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स कमिंग अप आपके लिए जैसे हम लेकर आते हैं 90s 60s 70s 80s 90s के गाने आपके लिए हमारे इस रेट्रो रिदम प्रोग्राम में. सभी के लिए हो जाए एक ब्यूटीफुल 90s सॉन्ग आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो दैट्स इन द वॉइसेज ऑफ कुमार सानू अलका याग्निक एंड हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. All you have to do is aapke messages, aapke dedications, 5499-1294 per. Friday afternoon hai aur best mix of music aapke liye on RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Sirk Zavata a Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Sirk Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier zut. Nous avons un package spécial pour zut avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui zut piatan? Réserve zut place à ce la même, l'eau 50 94 13.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए शामिल हो रहे हैं. दिस वन इज एक्स्ट्रा स्पेशल. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारा साथ दे रहे हैं. स्पेशली रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप बेटा अंश पोंबोंजे से और आपके सभी फ्रेंड्स इंदिरा शालिनी करियानी और इस वक्त आप काम कर रहे हैं और गानों को एंजॉय कर रहे हैं. चलिए एक ब्यूटीफुल गाना आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज के नाम साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉमिता शर्ला और करुणा मोतवा से हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलिए गुड विशेज आप लेडीज के नाम विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक और कहते हैं दैट कृष्ण जन्माष्टमी टू फेटा एंड जोली. साथ में है सिवासन परिवार ऑफ टैगोर, उनके लिए भी आपने भेजी है स्पेशल स्पेशल विशेज. तो चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस वेलकम कर रहे हैं हम 5499-1294 पर. फॉर नाउ वी हैव पंकज उदास की आवाज में ये गाना आप सभी के नाम स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारा साथ दे रही हैं. एंजॉय दिस वन करी का साथ रेट्रो रिदम ऑन

0: साजन।
1: बिल्कुल जी, आपके बिना तो हमारा वक्त भी कहां कटता है। मीता जी मोहतबा से कहती है इस गाने को मेरे नाम कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल डेडिकेटेड दिस वन आपके नाम एंड रोशनी, हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं आप भी। सो वी हैव सम ब्यूटीफुल ट्रैक साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

वेल फ्रेंड्स, इसी ट्रैक के साथ हम बनने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. आफ्टर ओल्ड सॉन्ग्स, टाइम फॉर सम लेटेस्ट ट्रैक्स. रेट्रो रिदम के बाद लेकर आ रहे हैं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक, और ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती. विशिंग यू ऑल अ हैप्पी फ्राइडे एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी. और साथ देने के लिए

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check exactly 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. इस साल 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी. इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकती हैं. याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा. मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा. सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी. परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी. एतिहाद एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत होगी. कुदरती आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा की जा सकती है. इस दिशा में मॉरिशस में नियोक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन्स पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी. पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगे. सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है. मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं. मॉरिशस की आबादी घट रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगभग बराबर हो गई है. 1 जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316 थी. ये एक साल में 3,425 कम हुई है. साल के पहले 6 महीनों में 6,386 जन्म और 6,333 मौतें दर्ज हुई. जन्म में करीब 10% की कमी आई, जबकि मौतें 2% बढ़ी हैं. इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है. नेपाल में बाढ़ के 1 सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है. दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया है. इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज्यादा लोग लापता है. नेपाल तिब्बत

0: सीमा पर आई इस बाढ़ में 1300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। पास सुजिए वाली पीटू में 49 ईयर्स ओल्ड के 49 साल के अहमद रेजा रामादियाल इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी अली बक्स मेनवाहा सुल्ताना के घर वाली पीटू से निकाल कर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तेरा मेरा रिश्ता पुराना बिल्कुल आपका और रेडियो मस्ती का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है जहां पर हमेशा आपने अपना प्यार हम तक पहुंचाया. सो वार्म वेलकम आप सभी का 2:10. जैसे हमने कहा आफ्टर ऑल सॉन्ग्स इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट ट्रैक्स लेकिन ऐसे ट्रैक्स जिन्हें सुनकर आप भी हैप्पी फील करें. वैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, सो बहुत सारी गुड विशेज आप सभी के नाम. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. फॉर नाउ स्पेशल विशेज शुभकामनाएं आप सभी के नाम.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हो तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: Week-end Megafolies, Côte Cadet, Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit, Sauti 14 900 roupies, Vin 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises, Sauti 49 000 roupies, Vin seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recliner avec massage s'il vous plaît. Sauti 24 900 roupies, Vin 14 500 roupies. Ouena Dizou, oui, Zis Dizou, pour profite sa bande Megafolies Deal dans des magasins Cadet Electromeubles. Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
4: RM2
5: Radio Musty.
6: So we're celebrating Krishna Janmashtami और ये गाना आप सभी के नाम जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. To all the listeners, good wishes पहुंचा रहे हैं इस pious दिन की. For now, Perry का साथ, and that's your Bombay Talkies on Radio Musty.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: And some beautiful songs आपके लिए on RM2 Radio Masti. This one goes out specially to all those जो इस वक्त drive कर रहे हैं, आराम से drive करें and destination पर safely पहुंचे. वैसे इस time traffic तो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन बरसाती मौसम, so enjoy your drive and enjoy the songs on Radio Masti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: Week-end Megafolies Côte Cadet, Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sorti 44 500 roupies, puis 24 500 roupies. Et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sorti 3 790 roupies, puis 10 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, des ou, oui, zis, des ou, pour profit, ça m'a méga folie ce deal dans des magasins KDR et Électromeubles à Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
0: RM2 Radio Musty.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, मिर्जापुर की गद्दी की जंग आप अब तक वेब सीरीज के जरिए 3 सीजन में देख चुके हैं और अब अली फैजल, पंकज त्रिपाठी, दिवेंदु सारर मिर्जापुर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। चलिए जानते हैं कैसी लगी लोगों को ये फिल्म। सो वेल, यहाँ पर रिव्यूज की बात करें, एक्टिंग की बात करें, सो रवि किशन फिल्म के सरप्राइज पैकेज है। उनको पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। अपने किरदार को उन्होंने बाखूबी से निभाया है। चाहे एक्शन सीन हो या इमोशनल, वो हर फिल्म के साथ निखर रहे हैं। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी अपने उसी दबदबे को बरकरार रखते नजर आए। दिव्येंदु को फिर मुन्ना के किरदार में बकैती करते हुए देखकर अच्छा लगा और बबलू बने जितेंद्र विक्रांत मसी की कमी को खलने नहीं देते। और इसके अलावा मोहित मलिक, अभिषेक बैनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पिलगांवकर, सुशांत सिंह और शिबा चड्डा समेत सभी कलाकारों ने अपने किरदार को भरपूर न्याय दिया है। सदात मिर्जापुर द फिल्म जो अब रिलीज हो चुकी है, यानी कि आज ऑन 4th of September फ्राइडे को रिलीज हुई है मिर्जापुर बड़े पर्दे पर। अगर आप भी मिर्जापुर सीरीज के फैन थे तो इस फिल्म को देखिए और हमें बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti. Feel

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 2:52 और इस वक्त आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ on RM2 Radio Masti. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक. चलिए, so it's time to read out आपके messages, आपके dedications. So well, कहते हैं गाना हो जाए for sister Ozo Lapadu. अब उनके लिए loads of good wishes, bon voyage and जा रही हैं आप London. सभी sisters, सभी brothers आपको wish कर रहे हैं happy and safe journey. अगला गाना आपके नाम. And साथ ही यहाँ पर गाना goes out for Yuvi Chingadu, 15 years. Wishes हैं from Neha, Vicky, Aryan, Chand, Anand, सभी की ओर से प्यार. Special wishes on this special, special day. Privilege Plende Papaya से dedicating गाना हबीर रंजीत के नाम. उनके लिए भेज रही हैं आप बहुत सारी sweet, sweet wishes. साथ ही यहाँ पर connected हैं रानी, श्याम, निश्चय, राहुल, आनंद, एशले और साथ में सेबास्टोपोल से सभी परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. वी आल्सो हैव लालमाटी से डाविसन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए तो गुड विशेस हम पहुंचा रहे हैं. बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रैक्स, बॉलीवुड की अपडेट्स आप तक एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग कृष्ण जन्माष्टमी. तो शुभकामनाएं हमारे सभी लिसनर्स के नाम.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. इस साल 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को दिसंबर 2026 तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी. इसके लिए वे अपने इलाके के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं. याद रहे कि जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन का नाम बदलकर स्टेट एज पेंशन कर दिया जाएगा. मॉरिशस में जल्द ही नेशनल एविएशन काउंसिल बनाया जाएगा. सरकार हवाई सेवा की नीति में बदलाव कर देश को दुनिया के और अधिक बाजारों से जोड़ना चाहती है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी. परिषद नई उड़ानों पर सरकार को सलाह देगी, साथ ही देश के आर्थिक हितों और एयर मॉरिशस के भविष्य का भी ध्यान रखेगी. एतिहाद एयरवेज की मॉरिशस के लिए उड़ान शुरू करने पर भी जल्द बातचीत होगी. कुदरती आपदाओं को रोका जा सकता है, लेकिन खतरे को कम कर लोगों की सुरक्षा नहीं की जा सकती. मॉरिशस में नियुक्त ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिससे आपात स्थिति में लोगों के मोबाइल फोन पर सीधे चेतावनी भेजी जाएगी. पर्यटक भी ये संदेश पा सकेंगे. सुनामी की चेतावनी भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय केंद्रों से मिलती है. मॉरिशस में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भी योजनाएं तैयार हैं, जिनमें हालात के अनुसार कार्रवाई के 3 स्तर हैं. मॉरिशस की आबादी घटती जा रही है और जन्म तथा मौत की संख्या लगातार बराबर होती जा रही है. 1 जुलाई 2026 को देश की आबादी 12,40,316 थी. ये एक साल में 3,425 कम हुई है. साल के पहले 6 महीनों में 6,386 जन्म और 6,333 मौतें दर्ज हुई. जन्म में करीब 10% की कमी आई, जबकि मौतें 2% बढ़ी. इस साल नवजात बच्चों की मृत्यु दर भी बढ़ने का अनुमान है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशुली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है. दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया. इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हुए हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं. नेपाल तिब्बत सीमा पर आई इस बाढ़ में 1,300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. राहुल रिवेट लेन ला लुइस कैट्रोबोन में 79 years old के देवदत्त गोकुल की मृत्यु हो गई है. उनके आर्थिक कल शनिवार को 5 सितंबर को दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 p.m. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.

0: music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.

तो चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं 3:07 कनेक्टेड हैं आप रेडियो मस्ती के साथ। इस आवर में आप सभी का वार्म वेलकम। बी टाउन की खबरें और लेटेस्ट ट्रैक्स कर रहे हैं आपका इंतजार अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। मैं हूं परी आपके साथ। फॉर नाउ इट्स धुरंधर टाइम। एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: And well, with this track, यहाँ पर good wishes, pious Janmashtami to all the listeners of Radio Masti. Asha Janu सा दे रही है cottage से and कृष्ण Janmashtami की शुभकामनाएं to Mama Kumari, nephews Shubham, Rishabh, Didi Aarti, Jiju Raj and सभी Janu परिवार के नाम. और यहाँ पर कृष्ण Janmashtami की शुभकामनाएं आज Big Brother Manoj Hirodar अपना जन्मदिन मना रहे हैं और परिवार wish कर रहे हैं उनको very happy birthday. Wishes coming from Suya Bihari of Kongoma और आज कृष्णा का भी तो बर्थडे है. तो चलिए इसी गाने को डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम. कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को. आशा भोसले, बॉय जॉर्ज की आवाजें एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. और इसी के साथ हैप्पी जन्माष्टमी.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग आध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं, और इसका असर बॉक्स ऑफिस पर, मूवीज़ पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बिग बजट फिल्म टॉक्सिक जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन लो बजट फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। सो हनुमान अंश धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म बन गई है। ये फिल्म अपने रिलीज के चौथे हफ्ते में काफ़ी कमाई कर रही है और इसने कमाई के मामले में यश की टॉक्सिक को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की कामयाबी के बाद हनुमान अंश के डायरेक्टर ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि

की रिलीज से पहले बॉलीवुड ने इस फिल्म का समर्थन नहीं किया था। एक बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड ने रिलीज से पहले फिल्म हनुमान अंश को सपोर्ट किया था। विशाल चतुर्वेदी ने इस बात पर हंसते हुए कहा कि फिल्म के अच्छे चलने के बाद कई लोगों ने मुझे बधाइयां देने के लिए फ़ोन किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुझे बधाइयां देने वालों में से एक मधुर भंडारकर भी है जिनसे मैंने कोई सपोर्ट नहीं मांगा था। हालांकि मैं दूसरों का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उन लोगों से मदद मांगी थी और उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर ने आगे कहा कि हनुमान अंश की स्क्रीन और शो की संख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि एग्जिबिटर्स ने बड़ी फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी थी। शो की संख्या 250 से घटकर 25 हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मल्टीप्लेक्स चेन शुरू से ही फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर शक कर रहे थे और उन्हें नहीं लग रहा था कि ये फिल्म कुछ खास कमाल कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लोग आपको ये कहकर निराश करते हैं कि ये कंटेंट काम नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। फिर भी वे अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं और इंडस्ट्री कंफ्यूज्ड लोगों से भरी हुई है। दो तरह के लोग हैं, एक जो सोच में फिल्में बनाना चाहते हैं यानी कि जो अपनी सोच से फिल्म बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो समझते हैं कि लोगों को क्या पसंद आ सकता है। तो चलिए, यहाँ पर डायरेक्टर ने अपनी सोच से इस फिल्म को आगे बढ़ाया और हम देख रहे हैं कि पहले 2 वीक्स इस फिल्म की कमाई महज लाखों में थी एंड अब करोड़ों का आंकड़ा पार कर गई है हनुमान अंश। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ये फिल्म बनी थी महज 2 करोड़ रुपए में, ओनली 2 करोड़ रुपीज में, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं करोड़ में करोड़ छापती जा रही है ये फिल्म। 4th हफ्ते में भी सुपर डुपर हिट और कर रही है कमाल ऑन द बिग स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बी टाउन की खबरों के साथ साथ आपके लिए कुछ प्यारे गाने भी हम लेकर आए हैं। 3:30 मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। फ्राइडे आफ्टरनून है एंड गुड विशेस तो आप तक हम पहुँचाते रहते हैं, आप भी साथ दे रहे हैं। सो योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

And well, friends, it's 3:51, and with this track, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है गिनीशा लेकर your Friday mashup. So उनका साथ निभाइए और आपसे मुलाकात होगी जल्द. जाते जाते आप सभी के लिए बहुत सारी good wishes. कृष्ण जन्माष्टमी और इसी दिन की शुभकामनाएं आप सभी के नाम.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: नमस्कार किनिश्रा, सभी को हमारा नमस्कार। इस साल सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय के अनुसार उन्हें अपने घर के नज़दीकी सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना है। इन लोगों को इस साल दिसंबर तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। जनवरी 2027 से इन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी पेंशन की रकम वही रहेगी। इस प्रक्रिया में उन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे लमसम की रकम वापस मिलना। कानून में लिखी बातों और लोगों की असल जिंदगी के बीच की दूरी, इसी विषय पर मॉरिशस बॉ एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन आज बालाकलावा में लगा। राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इसमें मौजूद थे। मुख्य अतिथि और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना जरूरी है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को समाज की असली जरूरतों के अनुसार ढालने पर भी जोर दिया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने में प्रो बोनो सेवाओं की अहम भूमिका पर भी चर्चा की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने संविधान में सुधार को लेकर आम लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग मौलिक अधिकारों, नई पीढ़ी के अधिकारों, सुशासन, सरकारी पदों पर नियुक्तियों और चुनाव प्रक्रिया पर अपने सुझाव दे सकते हैं। कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की संवैधानिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और अदालतों के कामकाज पर भी लोगों की राय मांगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। सभी सुझाव लिखित रूप से 28 अक्टूबर तक भेजने होंगे। इन्हें डाक से भेजा जा सकता है या पोर्टविस के सिकम बिल्डिंग 2 में कमीशन के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सुझाव clcmupublic@gmail.com पर ईमेल भी किए जा सकते हैं। कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। और विदेशी खबरों में, चक्रवाती तूफान चीन के फ्यूजान प्रांत के तट से टकराया है। खतरे को देखते हुए 83,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि रेल और दूसरी यातायात सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup, Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musti in the mix.
2: तो चलिए जी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है. आपको तो पता है कि जब भी हम आते हैं शाम को तो कैरोज लेकर आते हैं, यानी कि आई हैव गॉट यू अ गिफ्ट राइट नाउ. यस माय डियर, आप सोच रहे ना कि आज गिनी कौन सा सवाल पूछेगी, सो दैट यू कैन बी माय लकी विनर. और आपको याद दिला रहे कि आज मेरे पास एक नहीं दो टिकट्स हैं आपको देने के लिए. ईच टिकट कॉस्ट 700 रुपीज, यानी कि 1400 रुपए की टिकट्स आपको मिल रही है टू वॉच सियाक अशिल ऑफ जवाटा, यस हैपनिंग इन मॉरिशस. सो अभी के लिए क्या करते हैं, पूछूंगी एक सवाल, सही जवाब आपको देना है. मोबाइल रेडी, गोल सेट टू टाइप द राइट आंसर. यस, यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑन 54991294 पर 5 99 12 94. दैट्स द नंबर जहां पे आपको फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ हमें भेजना है अपना सही जवाब. और आज आप बन सकते हैं लकी विनर. यू गोना विन 2 entry tickets, यस, टू वॉच द अशिल, यानी कि सियाक अशिल जवाटा. तो लीजिए, सवाल कुछ ऐसा है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंसेस आर स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज. Is it 1 or 2? How many performances are scheduled on Saturdays and Sundays? यानी कि कितने shows होते हैं Saturdays and Sundays को of the circus? एक या दो? The right answer on 54991294 पर send it to me, full name और full address के साथ. Best of luck to you. तो चलिए जी, यो हनी सिंह और नेहा कक्कर की आवाजों में लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. आज दिन है सनी सनी, नहीं है बारिश हो रही है, अरे की फर्क पैंदा है जी, हम लेकर आए ना सनशाइन म्यूजिक फॉर यू ऑन आवर एमटी रेडियो मस्त.

0: चलिए जी चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:23 हो चुके हैं. आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शंस टुडे. यू नो व्हाई? क्योंकि आज है फ्राइडे. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. सुनिधि चौहान की आवाज में.
1: आई एम टू रेडियो

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मसीहा दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए एंड फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर 6:29 हो चुके हैं यस इट्स टाइम टू अनाउंस द लकी विनर हु इज विनिंग टू टिकट्स टू वॉच दिस लवली सर्कस यानी सियाकाशिल जवाटा और जी हाँ हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज आर स्केड्यूल्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज इज इट वन या टू द राइट आंसर इज टू यस दो शोज होते हैं सैटरडेज एंड संडेज सो कंग्रेचुलेशंस टू आज का लकी विनर जो लकी ड्रॉ में उनका नाम निकल आया है वो है ममता रामचरण ऑफ थैंगबा पोर्टप्लेस
1: Orange.
0: So congratulations to you, my dear. You are winning these two tickets. यानी कि आप बन गए हैं आज का lucky winner. So thank you so much for participating. और आपको याद दिला दे कि yes, you have won these two tickets. And फिलहाल के लिए just get ready for this unforgettable experience. जो लेकर आए हैं आपके लिए on Radio Masti. जी हाँ और फिलहाल इट्स गोना बी फिल्ड विद मैजिक विद ट्रिल्स एंड इवन लॉफ्टर स्पेक्टेक्युलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली सो कैच सियाक ज़वाटा एट बगाटेल विद शोज एवरी थर्सडेज एंड फ्राइडेज एट 6 पीएम एंड सैटरडेज एंड संडेज एट 2:30 पीएम एंड 5:30 पीएम बुकिंग्स के लिए इंफॉर्मेशंस के लिए Call on 5250-9413-5254-13. Siak Zavata, don't miss the magical big show. Congratulations to you, Mamta Ji.
2: RM2, Radio Masti.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: घड़ी में एग्जैक्टली 4:34 हो चुके हैं। You're listening to Ganesha right now, जो फिलहाल के लिए एक और कदोज लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आई एम सो एक्साइटेड। सोचो आप कितने एक्साइटेड होंगे टू पार्टिसिपेट एंड टू बी मान लकी विनर। यस, आज तो कदो की बरसात हो रही है, सो फिलहाल के लिए आई हैव गॉट वन मोर गेम फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, आप रेडी हो जाइए टू प्ले एंड विन विद RM2 रेडियो मस्ती। सो यू स्टैंड अ चांस एट दिस टाइम टू विन टू एंट्री टिकट्स, एक नहीं दो एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ 40th ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। मार्क योर कैलेंडर फॉर सैटरडे 12th of September 2026 एट 7:30 PM एट ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर। सो स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती एंड प्ले अलोंग एंड ग्रैब योर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेक्युलर नाइट। So, फिलहाल के लिए पूछेंगे एक बहुत ही आसान सवाल, as usual, जवाब देना है on 54991294 पर 5499129294, full name, full address के साथ, and only of course, you're gonna be eligible for the game। आपको तो पता है ना, great, ये जो हमारे rules होते हैं game का, ऐसे ही होता है। तो चलिए जी, हम आपको सुनाएंगे एक गाना, आपको बस मुझे बताना है ये गाना जो है इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी। इट्स अ रीमेक जो 2024 में इसका रीमेक बना था ये गाना। यू जस्ट हैव टू टेल मी कौन से साल में ये, नहीं आई मीन इट्स टेकन फ्रॉम अ विच मूवी, 2024 में इस गाने का रीमेक बन गया था। सो यू जस्ट हैव टू टेल मी विच मूवी इट्स टेकन फ्रॉम। 5499194 पर सेंड मी द राइट आंसर, फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ, एंड यू कैन बी माई लकी विनर एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ 40th ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026। This beautiful song, ladies, it's taken from which movie?
2: आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oubliez eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à ce la même, l'eau 50 94 13.
3: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
4: A September to remember chez Your Dream Motors. Nous réunis avec nos 4e édition. Oui, vous pouvez bien attendre nos plus grandes promotions pour l'année 2026, commencé jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour un gros discount, le tout nous bat le tout. Que tu aies du motos, nous croyons qu'il sac d'immune mérite rouler sur le tout de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou péro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous avons tout. Des 9h jusqu'à 5h tantôt, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 à ban prix imbattable. Côté Audrey Motos nous fait ouvrir une réalité. Royal Road Moka, 55 32 86 12, 55 05 86 12 et 433 80 26. Pas oublier, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
0: RM2
1: Radio Musti.
5: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
6: शकियोज हम इट्स ऑलरेडी 4:40 शॉप इन स्टूडियो की घड़ी में और फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स गुरु इज ऑल सेट विद हिज लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज है ना अरविंद जी
7: यस ऑल सेट और ऑल सेट टू से अले मोरिस यहां से चिल्लाएंगे तो को दो में सुनाई देगा
6: तो चलिए साथ में चिल्लाते हैं
7: अले मोरिस अभी 7 PM ये मैच होगा और जो लोग इफ यू डोंट हैव एनी अदर प्लान तो गो एंड सपोर्ट द टीम ISPL डेमिल आज खेल रहा है मॉरिशस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है फॉर द प्रिलिमिनरी राउंड कॉन्फेडरेशन अफ्रीकी कॉन्फेडरेशन कप उसके सामने होगा ज्वानेंग गैलेक्सी की टीम सो 8 साल बाद ISPL डेमिल अफ्रीकी स्तर में कदम रख रही है सो दे डिजर्व ऑल आवर सपोर्ट क्यों नहीं ये लोग जीत सकेंगे और जीतने में मॉरिशस में है तो व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम देयर और किस बात सुबह बता रहे थे आपको हमारे जो जियोजुत्सु ब्राजीलियन हमारे जो चैंपियन हैं अजमल बोजल ही हैज बीन ही इज वर्ल्ड चैंपियन है टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियन बना सो अब बाकी कैटेगरी उसके सामने थे जापान ब्राजील सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया कोरिया मलेशिया के एथलीट लेकिन वो आगे आया ही वॉज फर्स्ट तो अभी और कॉम्पिटिशन्स हैं ये लोग भाग लेंगे तो इन पर फोकस करेंगे इन पर जानकारी आपको देते रहेंगे ये भी है कि आपको बताया गया था स्विमिंग में भी अफ्रीकी जोन 4 में ब्लाइजा ज्वेल 50 मीटर बटरफ्लाई में उसने गोल्ड मेडल जीता और 200 फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल तो गुड गोइंग फॉर आवर एथलीट्स जो लोग विदेश में मॉरिशस का नाम रोशन कर रहे हैं सो आज लिवरपूल जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ करेगा आप क्या कह रहे हैं
6: जीतेगा देखा मैंने आपको बोला ना ये जो मैनचेस्टर वाले लोग हैं सपोर्टर्स हैं हमारा दिल बहुत भरा है सबके लिए हम पता है एक्चुअली हम जो लोग हैं ना किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं बस करते हैं
7: हाँ, जिस टीम के खिलाफ लिवरपूल खेल रहा है आज उस टीम को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले सप्ताह 5-2 से हराया था
6: एग्जैक्टली तो कोई बात नहीं ना आज वो भी जीत सकते
7: लेकिन लेकिन अभी इस टीम के खिलाफ लिवरपूल इज नॉट फुली स्टेबल अभी भले ही नए नए खिलाड़ियों को साइन किया है लेकिन इस टीम में अभी स्टेबिलिटी की कमी है खासतौर पर डिफेंस में ऐसे में इप्सविच कैन डू वेरी वेल क्योंकि इप्सविच हारा था 5-2 यूनाइटेड से, बट दे प्लेड गुड फुटबॉल, कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें, और उसका जो मैदान है पोर्टलैंड टाउन समथिंग लाइक दिस, वहां पर खेलना मुश्किल होता है. इन द लास्ट 20 मैचेस दे वन 16 एंड ड्रू 4, यानी 20 मैचों में उनकी हार नहीं हुई है. तो लिवरपूल को बच के
6: मैचों में बार हार नहीं हुई,
7: तो आज लेट्स होप फॉर समथिंग. लिवरपूल अगर कुछ दिखाना चाहे, डेफिनेटली ऑल आईज विल बी इन बाकोला. बाकोला जो आज अपना डेब्यू कर सकेगा लिवरपूल के लिए, तो लेट्स सी. आज तो ये मैच है और बाकी जो मैच खेले जाएंगे उन पर आपको बता दें, आज वुमेन सुपर लीग के लिए भी मैच हैं. देन वी हैव गॉट एफए कप मैच, स्पेन के ला लीगा में बेटिस रियल मैड्रिड, जर्मनी के बुंडेसलीगा में स्टुटगार्ट एफसी कोल्न, इटली के सेरी आ में जेनोआ कोमो, फ्रांस के लीग अन में लियों ओसेर, पेरिस सेंट जर्मेन मोनाको. पेरिस सेंट जर्मेन मोनाको, ये खतरा हो सकता है पेरिस सेंट जर्मेन के लिए, भले ही पार्क दे प्रिंस में है. दो मैचों में दो ड्रॉ कर पाए थे और वो भी लास्ट मिनट एस्केप. मोनाको ने हाल ही में मार्से को हराया था, सो पेरिस सेंट जर्मेन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है आज. कल प्रीमियर लीग जारी रखा जाएगा, अर्ली किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, इसके बाद 6 बजे से ब्रेडफोर्ड संडरलैंड, ब्राइटन लीड्स फुलहम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट कोवेंट्री, नॉटिंघम फॉरेस्ट स्पर्स का स्वागत करेगा, और कल का लेट मैच है हल सिटी एस्टन विला. संडे को दो मैच, एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगा और आर्सेनल चेल्सी, दैट्स अ बिग वन, खासतौर पर जब आर्सेनल अपना टाइटल डिफेंड करने आया है और चेल्सी ने, दे इन्वेस्टेड मच. अलोंजो एक तरफ, आर्टेटा एक तरफ, दोनों प्रीमियर लीग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. चेल्सी की शुरुआत बहुत अच्छी रही, ये बात अलग है कि दो मैचों में 5 गोल कंसीड कर पाए, बट दे स्कोर्ड ए लॉट. आर्सेनल मोर स्टेबल दैन चेल्सी, होम मैदान में होगा, इट्स ए बिग मैच. तीसरे सप्ताह में ही बहुत कुछ हो सकता है आज, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह रिगार्डिंग द रिकॉर्ड जो बना क्रिकेट में. स्मृति मंदाना भारतीय बल्लेबाज जो हैं वुमेन टी ट्वेंटी एशिया कप ग्रुप ए में, उसके सेंचुरी पर 124 in 64 balls, उसने हांगकांग की टीम को हराया बाय 137 विकेट्स, और ऐसे में स्मृति मंदाना बिकेम द ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, एक सेंचुरी बनाकर. सो गुड गोइंग, रिकॉर्ड भी उसके पास आ गया है. और आज चैंपियंस लीग, बैक टू फुटबॉल, चैंपियंस लीग, वुमेन्स चैंपियंस लीग के ड्रॉ निकाले गए. आर्सेनल का मुकाबला बार्सिलोना से होगा और लियों से. सो बार्सिलोना जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसका सामना आर्सेनल की लड़कियों से, और साथ में 8-time विनर्स लियों भी इस लीग फेज में आर्सेनल के साथ हैं, जबकि चेल्सी दे विल ट्रैवल टू लियों एंड मैनचेस्टर सिटी, और पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट बायर्न म्यूनिख से भी इनका मुकाबला होने वाला है. टेनिस में भी गुड थिंग्स हैपनिंग नाउ, बिग थिंग्स हैपनिंग नाउ फॉर द US ओपन. अब तगड़ा मुकाबला हो रहा है इन खिलाड़ियों के बीच. वी हैव पेगुला वर्सेस फर्नांडिस, आज अल्काराज भी उतरेगा मैदान में, उसका मुकाबला वू से होगा. आज सुबह कोको गोफ ने बादोजा को हराया, इट वॉज क्वाइट टफ फॉर वेरेव, जिसने हेल्स को हराया आज एक मैराथन मैच के बाद. सबालेंका खेलेगी आज राकी मोवा के खिलाफ. देन बुब्लिच पोल चेन ने मोफिस को हराया आज सुबह. फिर रिबाकिना की भी जीत हुई बुजास मनेरो के खिलाफ. कोस्टोइक विल बी अगेंस्ट अलेक्जांड्रोवा, मेदवेदेव अगेंस्ट रिंडरक्नर्च, नावारो मुचोवा, लेहेका सित्सिपास, ये अब फेमस जो नामी नाम आने लगे हैं, तो दे विल बी गुड मैचेस. क्रिकेट में भी वी आर हैविंग सम सेमीफाइनल्स, यहाँ मॉरिशस में भी दो सेमीफाइनल होंगे फॉर द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा, और इसमें वी आर गेटिंग गुड टीम्स, फाइनल भी होने वाला है. सो लेट मी गिव यू द फिक्स्चर्स. फर्स्ट सेमीफाइनल, कॉन्टिनेंटल चीतास का मुकाबला वन हेल्थ जागुआर से होगा, ये संडे 6 ओके परसों, और 1 बजे कैंपस अब्रॉड लायंस अगेंस्ट टोमास कुक, संडे 6 सितंबर. 13 सितंबर को द ग्रैंड फाइनल. डेफिनेटली द रेडियो मस्ती टीम विल बी फॉर फुल मस्ती, और हमेशा ये क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल होता है इसमें हमारा जो क्या कहें, वी सेलिब्रेट क्रिकेट दैट डे. तो उस दिन भी लेट्स होप वी आर देयर एंड विल बी सेलिब्रेटिंग क्रिकेट आप सभी लोगों के साथ. सो वी हैव अ बिग वीकेंड. अभी मॉरिशस की टीम आईएसपीएल ने मिल खेलेगी, फिर वी हैव गॉट फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट, टेनिस, घुड़दौड़, द मेडन कप ऑन संडे. जी हाँ,
6: तो मतलब कि संडे को बहुत कुछ होने वाला है,
7: बहुत कुछ होने वाला है. सो एंजॉय द वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद ऑल दीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. डेफिनेटली रेडियो मस्ती विल बी एट द सेंटर.
6: थैंक यू सो मच अरविंद जी, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड.
7: सेम टू यू, बाय बाय.
5: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट.
0: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture là, méga promo au plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
8: It's not just about the music, it's about the feeling.
9: Friday Mashup. Friday Mashup.
8: RM2, Radio Musty, in the mix.

सच ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का सिलसिला जब चलता है ना तो दिल वाकई में खुश हो जाता है ना, स्पेशली जब भी फ्राइडेज आते हैं ना तो खुशियां भी लेकर आते हैं और हमारी खुशियां बांटने की जरा तरीका अलग है। हम गानों के जरिए आप लोगों के दिल में खुशियां पैदा कर ही लेते हैं। पूछा गया था एक बहुत ही आसान सा सवाल जहां पे सही जवाब देने पर आंखों मिल रहा

0: हैं ये यस टू एंट्री टिकट्स टू यू माय डियर To the grand finale of 40's Beauty with a Noble Purpose, Miss India Worldwide Mauritius, so which is happening on Saturday 12th of September 2026 at 7:30 PM at Trianon Convention Center. पूछा गया था एक सवाल. ये जो गाना अभी थोड़ी देर पहले हमने चलाया था ना चोरी के पीछे क्या है द रीमेक वर्शन हमने पूछा था कि कौन सी मूवी से लिया गया है एंड वेल बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया सही जवाब दिया लेकिन लकी ड्रॉ में नाम निकल आया है हमारे लकी विनर का जिसका नाम है सुनील दत्त ओबिलक फ्रॉम लाकावेन वाकुआ Congratulations to you, my dear, Mr. Sunil Dutt, Hobilaka from La Caverna Vacua. You are winning these two tickets. Yes, my dear. So keep on listening to RM2 Radio Mass and keep on participating. Lakab Akasa Akasa Dedeshe, actually pata hi nahi chalta hai. So thank you so much to all those who have participated kiya hai. But only one lucky winner. There will be someone calling you from the NBC to let you know how you're going to grab your tickets. Thank you so much.
1: RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Promotion Rakshabandhan contre magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, lehenga, kulta, shelvani et crop moyen blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
3: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ल कि आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासीहॉस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लुतो ऑप्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा आर दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतो के चाबी भी गवा देला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
4: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
5: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड फोन नंबर 4128468 और केजी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी
6: सा मोंट एनकोर et cette fois les jackpots passent un nouveau cap le loto plus atteint environ 15 millions de roupies et le loto grimpe approximativement 55 millions. 55 millions au loto plus 15 millions au loto plus égale à 70 millions de roupies. 70 millions au total à remporter. Et cette fois, les tirages du loto et du loto plus quittent les studios pour venir à votre rencontre. Rendez-vous ce samedi à la Cité Trianon pour les vivre en live.
7: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Must.

स्टूडियो की घड़ी में 5:28 हो चुके हैं. इट्स मेगनेश ऑन द माइक एंड ऑफ कोर्स माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. आई रियली होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम बाय एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का ये जो सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. वैसे मंडे से थर्सडे तक का स्ट्रेस डिलीट हो गया है. फ्राइडे का वाइब जो है कंप्लीट हो गया है. रेडियो मस्ती के साथ वीकेंड मूड जो है ऑन हो चुका है बिकॉज अब बजेगा म्यूजिक जो मूड को रॉकेट बना दे. रेडियो मस्ती फैमिली एनर्जी चेक हो चुका है. अगर आप रेडी हो फ्राइडे को क्रेजी बनाने के लिए Make some noise, my dear, because this is not just a show. This is your Friday mashup with me here, RJ Ganesh on the mic. 54991294 per. Send me your dedications and do let me know. आप लोग कहाँ से हमारा साथ दे रहे हो? And to all those who are driving, हाँ जी, drive carefully, आराम से, धीरे धीरे, हॉले हॉले.

बिल्कुल जी, हमें सुनते रहना और हमेशा अच्छा अच्छा म्यूजिक हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए. सो फ्राइडे मैशअप माय डियर, थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. एंड जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे का सीन सिंपल होता है, नो स्ट्रेस ओनली गुड वाइब्स, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा पार्टी और थोड़ा पागलपन और फुल ऑन मस्ती, ओनली ऑन रेडियो मस्ती. सो रेडियो मस्ती के फ्राइडे मैशअप में लेट द म्यूजिक टेक कंट्रोल और साथ में लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस. आपने जो भेजे हैं बड़े प्यार से ऑन 5499124 पर, नेक्स्ट वन फॉर यू रेबिका एंड फॉर अर्शद. And may God bless both of you. Anita Afraq. Hi Anita, jo rehti hai flat mein, she's cooking and enjoying the good, good gyane. Of course, lekar aate hain aap logon ke liye good, good music. So thank you so, so much, my dear, for choosing us as your radio partner. Chachu Keshav, happy birthday from Krivkaya. Chacha ji, aapka janamdin hai, so happy birthday.

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती.
1: बिल्कुल जी, पूरे रेडियो मस्ती की तरफ से केशव जी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम जी अंश एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ईच एंड एवरीवन जो साथ दे रहे हैं. अभी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जो हमारे कृष्ण भगवान है आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां बरसाते रहे. सो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू एवरीवन प्लीज. यस बो डाउन मिस्टर. अच्छा ये क्या है, क्या लिखा है? थैंक यू सो सो मच. लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा, मैं कैसे पता, मुझे कैसे पता चलेगा किसने लिखा है? कोई बात नहीं, ये अगला गाना स्पेशली फॉर यू माडिया जिसने भी ये भेजा है. तो 5499124 पर ऐसे ही बस हमें भेजते रहना खूबसूरत प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हम डेडिकेट करेंगे आप लोगों के लिए. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. थोड़ी देर में लेके आएंगे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा फैशन टिप्स.
2: RM2 Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: बिल्कुल जी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए एक फैशन टिप, सो फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू द बेस्ट फैशन टिप। आपको तो पता है कि आज हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, सो आई गेस कि बहुत सारे लोग जो हैं लेडीज स्पेशली शाम को जाएंगे बिल्कुल एकदम सज धज के तैयार होके, आज रात को पूरी रात पूजा करने जाएंगे, इस्कॉन में जाएंगे, हर जगह जाएंगे पूजा के लिए। सो जन्माष्टमी के लिए फैशन टिप्स लेकर आई हूँ। ब्लू इज द वाइब। आपको तो पता है ना कि जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के फेवरेट कलर ब्लू को आप अपने आउटफिट में ऐड कर सकते हो। ब्लू कुर्ता, साड़ी, दुपट्टा या इवन अ सिंपल एक्सेसरी लुक इंस्टेंटली जो है फेस्टिव बन जाएंगे। एंड यू कैन कीप इट अ वेरी ट्रेडिशनल गर्ल्स ट्राई अ कलर फुल लहंगा अनारकली या साड़ी, और लड़के के लिए क्लासिक कुर्ता पजामा वीव नेहरू जैकेट, सिंपल स्टाइलिश और फेस्टिव। कम्फर्ट भी बहुत जरूरी है, इसको ना भूले। फैशन के चक्कर में कम्फर्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। लाइट फैब्रिक्स चूज करो, स्पेशली अगर सेलिब्रेशन लॉन्ग है। एक्सेसरीज से लुक अपग्रेड कर लीजिए। झुमकास, बैंगल्स, कलरफुल दुपट्टा या सिंपल मांग टीका कैन इंस्टेंटली मेक योर आउटफिट मोर फेस्टिव। और अगर थोड़ा सा कृष्णा टच लेकर आना चाहते हो, एक क्यूट पीकॉक फेदर इंस्पायर्ड एक्सेसरीज, मोर पंख कलर्स और जो सबटल कृष्णा इंस्पायर्ड डिटेल होते हैं ना, एंड योर जन्माष्टमी लुक इज कंप्लीट विद दैट। सो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्यूट अगर दिखना है, सो लिटिल बॉयज के लिए धोती कुर्ता विद मोर पंख, और लड़कियों के लिए कलरफुल लहंगा और traditional frock, cute and festive equals to perfect. So remember, heavy outfit zaruri nahi, ek simple traditional outfit, right colors, beautiful accessories, effortlessly festive lagta hai. Aur is janmashtami fashion mein lao thori si bhakti, thora sa traditional aur full on krishna wali masti. Thank you so much, and chaliye ji, wishing all of you a pious krishna janmashtami.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: such a lovely track, especially आप लोगों के लिए, my dear and lovely listeners on All Into Radio Masti ji, हाँ बधाई दो बधाई.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
0: 5499-1294 5499-1294 पर आपने भेजा अपने प्यारे प्यारे डेडिकेशंस. जय श्री कृष्ण जी. वीना जगीसाव जी फ्रॉम बेलवी मोगल, और वो बोलती हैं गाना हो जाए. हाँ जी जरूर हो जाए आपके लिए एंड सभी कृष्ण भक्तों के लिए और रेडियो मस्ती के लिए भी. थैंक यू सो मच. एंड वी डू हैव अमीला बजन जो है वाकुआ से. आज वो बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है और बहुत ही इमोशंस के साथ आप भेज रहे हैं मैसेज. आपने हमें बताया कि आप मथुरा भी गए थे एंड सब जगह देखा आपने एंड इट्स अ वेरी लवली थिंग्स जो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं. हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी टू यू एज वेल मीला जी एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली मैसेज फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस हमारे साथ. एंड हैप्पी बर्थडे गोज आउट टू मी स्वीटी. बेस्ट विशेज फ्रॉम ऑल कलीग्स टीचर जो हैं. वी डू हैव वीमी एंड वी डू हैव सरिका दिशा शिनी नादाशीना पिंकी प्रिया सरिका ललिता जी टंजी. लव यू सो मच स्वीटी एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू. कृष्ण जन्माष्टमी अभिनंदन. अगिनिशा जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सारे परिवार को. एंड दैट्स अनीता जी. हाँ जी एंड थैंक यू सो सो मच. एंड वी डू हैव कृष्णी अबिस्मोहन जी फ्रॉम कंफुकुआ. आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन टू यू माय डियर. एंड हमेशा आप खुश रहें. तो चलिए जी एक गाना हो जाए सभी भक्तों के लिए और साथ में जस्ट रिमाइंड यू थोड़ी देर में बजेंगे 6 और 6 बजे एग्जैक्टली बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर. और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज इन योर फ्राइडे मैशअप.
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: सड़क यातायात कानून में संशोधन के बाद रोड रेज अब एक अलग अपराध होगा। दोषी पाए जाने वाले पर 1,00,000 रुपए तक जुर्माना और 12 महीने तक कैद की सजा हो सकती है। शुक्रवार सुबह मेट्रो एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी से 35,000 से 37,000 यात्री प्रभावित हुए। क्यूपिप और पोर्टलुई के बीच सेवा सुबह 9:21 से धीरे धीरे बहाल हुई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ये पर्व श्री कृष्ण के जन्म के साथ प्रेम भक्ति धर्म और कर्तव्य के उनके शाश्वत संदेश का उत्सव है। सितंबर से दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जनवरी 2027 से उन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा। इस साल 12,681 छात्र स्कूल सर्टिफिकेट और 5,904 छात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं देंगे। परीक्षा कक्ष में अब साधारण घड़ियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज्यादा समय बाद त्रिशूली परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित निकाला गया। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अब भी फंसे हैं, जबकि बाढ़ में 1,300 से ज्यादा लोगों की जानी जा चुकी है। स्वागत है एक बार फिर आपका 6 बजे के समाचारों में। अब समाचार विस्तार से। गाड़ी गलौच, धमकी, मारपीट या जानबूझकर रास्ता रोकना, सड़क पर गुस्से और आक्रामक व्यवहार यानी रोड रेज को अब एक अलग अपराध माना जाएगा। जी हां, इस सप्ताह मंजूर सड़क यातायात कानून के संशोधनों में इसके लिए 1,00,000 रुपए तक जुर्माना और 12 महीने की जेल का प्रावधान है। लेकिन रोड रेज की पहचान कैसे होगी, ये अगले बुलेटिनों में हम आपको जानकारियां प्रदान करती रहेंगी। शुक्रवार सुबह मेट्रो एक्सप्रेस में आई खराबी से हजारों यात्रियों को परेशानी होगी। क्यूपिप और पोटरी के बीच लाइन 1 पर सेवा बंद रहने से 35,000 से 37,000 यात्री प्रभावित हुए। मेट्रो को बिजली देने वाले सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी। सेवा सुबह 9:21 से धीरे धीरे शुरू हुई। कई स्टेशनों पर यात्रियों ने कहा कि उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिली, जिससे असमंजस की स्थिति बन गई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। वो पावन तिथि जब भक्त बाल गोपाल के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। उनकी भक्ति केवल आराधना नहीं, बल्कि अहंकार त्याग कर प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीने की साधना है। जन्माष्टमी के अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण भक्ति का आध्यात्मिक अर्थ और जीवन में उसका महत्व। याचना मिश्रा।
1: राधा कृष्ण की सजी ये मूर्ति मन मोह लेने वाली है। बोनाकर के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में रोज भक्त दर्शन करने और आरती में भाग लेने आते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए दिन में 6 बार द्वार खोले जाते हैं।

0: कृष्ण की भक्ति का रंग इतना गहरा है जो कभी छूटता ही नहीं। यही भक्ति इन लोगों को यहाँ खींच लाती है। कुछ भक्तों के लिए यहाँ आना उनके मन की शांति का रास्ता है। किसी के लिए कृष्ण आराध्य हैं, तो किसी के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक।
1: Tous les jours, moi, je viens ici, n'importe quel problème, il y a dans la vie, ou il y a avec Krishna, apporte

0: Krishna, les mêmes qui peuvent faire tout dans la vie. Et même je travaille toujours, je viens ici, je viens faire mon darshan. Si je ne pas venir un jour, deux jours, mais ça fatigue moi, ça les fatigue moi. Je suis bien venir ici avec Krishna, ce charan ici.
1: Krishna, que Kripa, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, सबको भगवान के शरण लेना चाहिए, कृष्णा के शरण लेना चाहिए. जगह जगह में मंदिर है, चाहिए जहाँ जहाँ जबकि पास में है, चाहिए वहाँ पर भगवान के शरण लीजिए. ऐसे बहुत बढ़िया है.
2: जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भक्ति ही क्या जो आसान रास्ते पर चल कर मिल जाए. कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी वो दिन है जिसका वे साल भर प्रतीक्षा करते हैं.
3: भगवान कृष्ण के धाम में वो एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता है, वर्ष में एक दिन का नहीं, रोज का सेलिब्रेशन है, रोज का उत्सव है. कार्यक्रम शुरू होता है सुबह को मंगल आरती से 4:30 बजे. केवल आरती नहीं, भगवान का भोग लगता है. सभी कितने भक्त लोग रोज के रोज लगभग सभी सेवा में लगे रहते हैं, अपने अपने सेवा जो जो करना है सभी लोग लगे रहते हैं. भगवान का जब जन्मदिन आते हैं तो सभी और उत्साह मंगल के साथ सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं कब वो दिन आएगा, भगवान हमारे ठाकुर जी आएंगे, उनका अपना प्रेम अपना श्रद्धा अपना प्रकट करेंगे उनको.
2: कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना पूरे साल दिखाई देती है और जन्माष्टमी के करीब आते ही इसका उत्साह और बढ़ जाता है. बाल गोपाल के जन्म का उत्साह.
4: भारत सहित पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव असीम श्रद्धा, हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. मथुरा, वृंदावन से लेकर हर घर और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है. श्रद्धालु दिन भर उपवास रखकर भजन कीर्तन कर रहे हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म के महामुहूर्त पर महाआरती और 56 भोग की तैयारियों में जुटे हैं.

0: श्री कृष्ण प्रेम दया सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनका जन्म मथुरा में माँ देवकी और पिता वसुदेव के घर हुआ था। उनकी मुस्कान में प्रेम था, उनकी बांसुरी में मधुरता थी और उनके शब्दों में जीवन का ज्ञान। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और कहा कि मानव को अपना कर्तव्य बिना फल की चिंता किए करते रहना चाहिए। कृष्ण जी प्रेम करना, दूसरों की मदद करना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखना सिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, इसीलिए इसे कृष्ण पक्ष अष्टमी भी कही जाती है। उनका जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात को विशेष पूजा की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है। उनका जन्म धरती पर बढ़ते हुए अधर्म को समाप्त करने तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कृष्ण जी के जन्म के वक्त मथुरा पर राजा कंस का अत्याचार था। कंस ने भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था। कृष्ण जी के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। कृष्ण भगवान का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनकी बाल लीलाओं की कहानियां आज भी बहुत प्रेम से सुनाई जाती हैं। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ खेलते थे, माखन चुराते थे और गोपियों के साथ मधुर लीला करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन और राधा जी के साथ उनका प्रेम भक्ति का सुंदर प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी अलग तरीकों से मनाई जाती है। इस दिन लोग सुबह से व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। घर और मंदिरों को फूलों, रोशनी और सुंदर सजावटी सामानों से सजाया जाता है।
1: इस्कॉन लाइटों के बारे में बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम जन्माष्टमी में लाइटों से कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए हम जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा सारे हमारे काफी सारे डिवोटीज हैं, मेंबर हैं, करने वाले, काम करने वाले, हम जी जान से मेहनत करते हैं और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल लेके जाते हैं।
0: रात के वक्त कृष्ण जी के जन्म का इंतजार किया जाता है।

0: इस्कन भारत में अलग रौनक है, खासतौर पर मथुरा, वृंदावन और गोकुल में। कृष्ण जी की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, झोले में बिठाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है।
1: भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूरे उत्साह उमंग के साथ इस्कॉन इस जन्माष्टमी मनाने जा रहा है और वृंदावन से बहुत ही सुंदर श्रृंगार का आभूषण लाया जा रहा है और वस्त्र भी वहीं से बन के आ रहा है और जिसका थीम है मयूर। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन द्वारा बड़े धूमधाम के साथ ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा।
0: कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत का संदेश है। ये दिन ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
2: कानून में लिखी बातों और लोगों की असल जिंदगी के बीच की दूरी, इसी विषय पर मॉरिशस बार एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन बलाक्लावा में लगा। राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इसमें मौजूद रहे मुख्य अतिथि और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को समाज की असली जरूरतों के अनुसार ढालने पर भी जोर दिया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने में प्रोबोनो सेवाओं की अहम भूमिका पर भी चर्चाएं की गई। विदेशी श्रमिकों के रहने के स्थानों को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। 30 जून 2026 के कानून में डोमिट्री की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। अब ये आवास केवल एक नियोक्ता के श्रमिकों तक सीमित नहीं रहेंगे, इनमें अलग अलग नियोक्ताओं के श्रमिक रह सकेंगे। इस बदलाव के लिए श्रम मंत्रालय से अनुमति लेने से पहले इमारत और भूमि उपयोग की मंजूरी लेना जरूरी है। पिसाक में सफल नहीं हो पाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का एक दूसरा रास्ता खुला है। फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें किताबी ज्ञान के साथ काम से जुड़े और तकनीकी हुनर सिखाए जाते हैं। पहले बैच में 70% से ज्यादा बच्चे सफल हुए और इस समय करीब 6000 बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गांधियन बेसिक स्कूल में 23 बच्चे खेती, लकड़ी का काम और खाना बनाना सीख रहे हैं। इस साल सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 61 साल के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय के अनुसार उन्हें अपने घर के नज़दीकी सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन लोगों को इस साल दिसंबर तक बेसिक रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। जनवरी 2027 से उन्हें स्टेट एज पेंशन में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी पेंशन की रकम वही रहेगी। इस प्रक्रिया में उन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि लमसम की रकम वापस मिलना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने संविधान में सुधार को लेकर आम लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग मौलिक अधिकारों, नई पीढ़ी के अधिकारों, सुशासन, सरकारी पदों पर नियुक्तियों और चुनाव प्रक्रिया पर अपने सुझाव दे सकते हैं। कमीशन ने डीपीपी की संवैधानिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और अदालतों के कामकाज पर भी लोगों की राय मांगी है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। सभी सुझाव लिखित रूप में 28 अक्टूबर को तक भेजने होंगे। उन्हें डाक से भेजा जा सकता है या पोर्टवी के सिकम बिल्डिंग 2 में कमीशन के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है। हम आपको बता रही थी सुर्खियों में कि इस साल 12,681 छात्र स्कूल सर्टिफिकेट और 5,904 छात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाएं सितंबर के बीच शुरू होंगी। इससे पहले मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने नकल और नियम तोड़ने पर मिलने वाली सजा की याद दिलाई है। वर्ष 2025 में नकल के 58 मामले सामने आए थे। इस साल से परीक्षा कक्ष में साधारण घड़ी पहनने पर भी रोक रहेगी। सुनिए,
3: 2025 में एससी के स्तर पर नकल के 39 मामले जबकि एचएससी में 19 मामले दर्ज किए गए थे। जब ऐसा कोई मामला सामने आता है तो एमईएस इसकी रिपोर्ट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन को भेजता है, जो इसके बाद तय करता है कि क्या कार्रवाई या सजा दी जानी चाहिए। एमईएस के प्रिंसिपल एग्जामिनेशन ऑफिसर अशोक कुमार गुंजाव कहते हैं,
4: qu'est-ce que c'est ça malpractice? Malpractice, c'est ou à contre-régulation.

0: मल प्रैक्टिस यानी कैम्ब्रिज के नियमों का उल्लंघन करना, जैसे मोबाइल फोन का प्रयोग या परीक्षा कक्ष में नोट्स लाना, कुछ लोग हाथों में लिखते हैं। इन्विजिलेटर को पता चल जाता है, मल प्रैक्टिस के लिए सख्त सजा होती है, जैसे विषय में रिजल्ट न मिलना यानी जीरो रिजल्ट या फिर जीरो मार्क्स। इस साल मध्य सितंबर में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एक नया नियम भी लागू किया गया है। अब उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह की घड़ी पहनने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें सामान्य घड़ी भी शामिल है।
1: कैम्ब्रिज
0: ने सुरक्षा के कदम लागू किए हैं। पहले स्मार्ट वॉच का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस साल से स्टैंडर्ड वॉच पर भी पाबंदी लगाई गई है। कैम्ब्रिज की सलाह पर एक रोलिंग क्लॉक लगाया जाएगा। इस अतिरिक्त कदम का उद्देश्य एग्जामिनेशन रूम में सुरक्षा मजबूत करना और सभी उम्मीदवारों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
2: पिसक में सफल नहीं हो पाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का एक दूसरा रास्ता खुला है। फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें किताबी ज्ञान के साथ काम से जुड़े और तकनीक हुनर सिखाई जाती है। पहले बैच में 70% से ज़्यादा बच्चे सफल हुए और इस समय करीब 6,000 बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गांधीन बेसिक स्कूल में 23 बच्चे खेती, लकड़ी का काम और खाना बनाना सीख रहे हैं।
3: यहाँ पर सीखना केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक ही सीमित नहीं, बच्चे खुद से कुछ करते हैं और अलग अलग गतिविधियों के बारे में जान पाते हैं, जिसकी बदौलत वे अपनी योग्यता तजुर्बे को निखार सके और अपने ऊपर विश्वास भी मजबूत कर सके।
4: À cause ici, nous faisons beaucoup d'activités, pas comme avant les autres collèges.
5: Tu connais qui t'a envie de faire plus tard?
4: Oui, moi j'ai envie de participer.
3: ऐसी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है जिससे कि परंपरागत स्कूल का विजन ही बदल गया। इन नौजवानों के लिए उद्देश्य यही, एक ऐसा माहौल पाना जहां पर वे कुछ सीख सके या फिर अलग तरीके से सीख सके अपने कौशल और अपनी रुचि के अनुसार। गांधीन बेसिक स्कूल के ऑफिसर जॉर्ज देव बिहारी ने कहा, यहाँ पर जो भी स्किल्स विकसित कर रहे हैं, इससे भावी पीढ़ी को मदद मिलेगी ताकि नौकरी मंडी में कुशल कामगार मिले। वे प्रारंभिक जानकारियों से अवगत तो हैं, कुछ और सीखते हैं, फिर बाद में पढ़ाई के बाद MITT में इसे ज्यादा विकसित कर सकते हैं। गांधीन बेसिक स्कूल में इस साल फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 23 छात्र हैं। वे उन औसतन कोई 2,000 छात्रों में शामिल जो हर साल पेशा के बाद किसी विषय पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक सामान्य शैक्षिक सफर के विपरीत प्रोग्राम में खासकर टेक्निक्स एवं प्रैक्टिकल्स पर आधारित है। फाउंडेशन प्रोग्राम के नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विजय सुखारी ने कहा, ये 3 वर्षों का कार्यक्रम है। 3 वर्षों के बाद वे MITT ट्रेनिंग सेंटर जा सकेंगे। फाउंडेशन प्रोग्राम वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम का मिश्रण है। इन बच्चों को नेशनल फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन NFCE प्राप्त होगा।
6: फाउंडेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन NFCE
7: l'enfant l'y valoriser
3: et प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकीरा सुमतली ने कहा, बच्चे का खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि वोकेशनल सिस्टम की ओर बढ़ते हैं और साथ में ये परियोजना मॉरिशस में इस वोकेशनल सिस्टम को स्वीकृति दिलाने में सुविधा प्रदान करती है। आज देश भर में 123 कॉलेज फाउंडेशन प्रोग्राम से संबंधित है, एक ऐसा कार्यक्रम जो इन नौजवानों को एक अन्य विकल्प प्रस्तावित कर रहा है। उनकी विगत की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित नहीं, बल्कि भविष्य में क्या करने की क्षमता है उनमें, उस पर ध्यान केंद्रित।
2: और विदेश की खबरों में, नेपाल में बाढ़ के एक सप्ताह से ज़्यादा समय बाद त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। दोनों घायल हैं और उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया है। इसी सुरंग में कम से कम 39 लोग अभी फंसे हैं, जबकि दूसरी सुरंगों में से 100 से ज़्यादा लोग लापता है। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई इस बाढ़ में 1,300 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है।

हिमालय की छाओ में प्रकृति की गोद में नेपाल का ये दर्दनाक हादसा कुदरत का ही किया कराया है जो पहले किसी दूसरे

0: दूसरे देश ने देखा ना जाना है। सब कुछ बह गया। समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊंची बर्फीला चट्टान नष्ट हुआ। अचानक सैलाब उतर आया और बम जैसा लगा। दूर से नदी छोटी लग रही थी, लेकिन देखते देखते अचानक वो उमर आई और सब कुछ अपनी चपेट में ले गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव और खोज कार्रवाइयां की जा रही हैं। जमीनी और हवाई मिशन को सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावितों को खाद्य चीजें और दवाएं दी जा रही हैं। काठमांडू से अतिरिक्त 40 हेलीकॉप्टरों को सहायता के लिए भेजा गया। नेपाल की सेना पूरी कार्रवाई का संचालन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर एक जलजले से बर्फीला चट्टान गिर गया होगा, लेकिन अमेरिका की जियोलॉजिकल सेवाओं ने कहा कि वादियों में चट्टानों के गिरने से ये घटना पेश आई। माहिरों के मुताबिक त्रिशूरी नदी में सिर्फ आधे घंटे में पानी का सतह 9 मीटर से बढ़ा। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमन कॉक्स बताते हैं, आपदा की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में क्या हुआ होगा और कैसे, एक बात स्पष्ट है कि 5200 मीटर वाला बर्फीला चट्टान वादी में 1200 मीटर की गहराई में गिरा। एक बड़ा मलबा बनकर वो पानी में गिर गया और बांध तक पहुंचा, जो उसके टूटने की वजह बन गया। नेपाल में सैकड़ों पर्यटक मृतकों और गुमशुदा लोगों में शामिल। भारत ने चेतावनी जारी कर ली है क्योंकि बिहार यूपी सरहद के पास वाले इलाकों में खतरे हैं। सन 2011 से नेपाल की ये बाढ़ सबसे जानलेवा रही है, बावजूद ये कि लगातार गंभीर कुदरती आफात पेश आती रही हैं। नेपाल की इस आफत के चलते कई देश मदद का हाथ आगे कर रहे हैं। यूरोपीय संघ भी सहायता पहुंचा रहा है। रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट संगठनों ने एक बयान में कहा कि वो $1.24 मिलियन का दान दे रहे हैं। फूड पैकेट्स वाज हैंडेड ओवर टू
1: महावीर। चक्रवाती तूफान चीन के फ्यूजन प्रांत के तट से टकराया है। खतरे को देखते हुए 83,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि रेल और दूसरी यातायात सेवाएं भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर जारी रहेगा। आज रात को और कल सुबह के दौरान देश के पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी। दिन के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। केवल दोपहर बाद को पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों के एक हिस्से में बरसात हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिमी 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:02 पर, सूर्योदय 6:15।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: रॉयल रोड पालमा का ट्रोबोन में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की माला बाई लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम हरी, उनकी अर्थी कल सुबह के साढ़े दस बजे उनके पति के मकान मारुत लक्सिमो के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डियर हॉफ पोस्ट 10 AM। रॉयल रोड बोआ रूज पॉपलेमुसेस में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की सरंधा सीतोहल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रसधारी, उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति राजदेव सितोहल के मकान पॉम्पलमुसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। जयलाल लेन लिम्बियतो कट्रोबोन में

0: तिरानबे साल की 93 ईयर्स ओल्ड की बुद्धियाला चंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जंधु, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। महिलपुर नई दिल्ली में 44 साल के शैलेश शर्मा चतु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें वीरू के नाम से ज्यादा जानते थे और वे मॉरिशस में वरमिया रोसबेल के रहने वाले थे। उनकी अर्थी कल भारतीय समय अनुसार दिन के 11:30 बजे लोधी नई दिल्ली भारत में उठाई जाएगी। टैगोर रोड मोंगू में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के जितेंद्र किसुन दयाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज बल्कि कल सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान टैगोर रोड मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंगू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। बनवेन रोड कौथी मिलिते में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के करमानन सेवाथियान की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उन्हीं के मकान कौथी मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। कालीमाई रोड प्लेन दे गोश में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के किशोर कुमार रामचंद की मृत्यु हो गई है। लोगों ने अजय शोफेर कामियों के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10:00 बजे उन्हीं के मकान प्लेन दे गोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। राहुल रिवेट लेन लालुइस कटोबोन में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त गोकुल की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कटोबोन बल्कि फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM2,
3: Radio Musti.
2: Week-end méga folie, Scott KDR, Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit, sorti 14 900 roupies, VIN 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises, sorti 49 000 roupies, VIN seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recliner avec massage, s'il vous plaît. Sorti 24 900 roupies, VIN 14 500 roupies. Ouena, Dizou, oui, Zis, Dizou, pour profite, ça va méga folie deal dans des magasins KDR Electromeubles. Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
1: RM2.
3: Radio Musty.
4: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup.
4: RM2. Radio Musty. In the mix.

तो चलिए जी, टू ऑल दोस्ट हु आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, बस खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाना. एंड टू ऑल दोस्ट जो अभी किचन में है, खाना पका रहे हैं, कुहाश टू यू माय डियर, दिस वन गोज आउट टू यू.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: फिल्मी जाम रेडियो मस्ती।
1: कृष्णा है वो, कन्हैया है वो, कृष्ण कन्हैया की कृपा से आपका जीवन प्रेम आनंद और समृद्धि से भर जाए। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। पायस कृष्ण जन्माष्टमी हमारे सभी भक्तों को जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे सभी दोस्तों को जो इस पावन दिन को मना रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी मंगल कामनाएं हैं हमारे सभी रेडियो टीम की तरफ से। सभी हेलो टू यू ऑल, इट्स अ वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती। स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली गिनी जो यहाँ पर थी फॉर आज का फ्राइडे मैशअप। हेलो गिनी, विश यू अ ग्रेट फ्राइडे। और आपको भी हम विश करना चाहेंगे पायस बहुत ही शुभ कृष्णा जन्माष्टमी।
2: सेम टू यू बहन, और आपके पूरे परिवार को और हमारे मस्ती परिवार को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमारी प्यारी सी गिनी, वो उन्होंने तैयार की है माखन।
2: चोरी yes. करना पड़ेगा, माखन चोर बनूंगी मैं आज।
1: क्या बात है। सो ये माहौल बन गया है गिनी, और कई जो हमारे दोस्त है वो इस समय जा रहे हैं मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए। सो बिग बिग क्राउड जुलूसों में जा रही है भक्तगण, राइट?
2: बिल्कुल जी, और हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि वो हमको भी याद करे अपने प्रार्थना में।
1: बिल्कुल। सो सब सेफ रहे, ऐसे ही सुरक्षित सब रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। सो वी आर हियर और रेडियो मस्ती आप लोगों का साथ निभाने के लिए अप टिल 9 पीएम दिस इज आवर फिल्म जाम। विल बी टुगेदर, साथ साथ ही हम चलने वाले हैं
0: फिल्मी जाम
3: RM2 रेडियो मस्ती।
0: फिल्मी जाम
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Wish you all a great Friday time. Welcome on Radio Musti. And yes, Friday is finally here. और आपको पता है फ्राइडे का मतलब वीकेंड का जो मूड है एकदम ऑन और स्ट्रेस वाला जो मूड है एकदम ऑफ हम कर लेते हैं. बिल्कुल आज की जो म्यूजिकल सफर होने वाली है फुल ऑन फिल्मी हिट गाने कुछ खास मस्ती तो बिल्कुल हम करने वाले हैं टिल 9 PM विद आवर म्यूजिकल जर्नी जो है आज का फिल्म जम. तो यहाँ पर टर्न ऑफ द वॉल्यूम एंड सिट बैक लेट द म्यूजिक टेक यू समवेयर क्योंकि यहाँ पर इट्स लाइक अनगोइंग द ग्रेट म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती फॉर आज का फिल्म जम. हर एक गाने जो हम लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी कहानी और हर कहानी डिजर्व्स अ साउंडट्रैक राइट. चलिए शुरू करते हैं आज का ये म्यूजिकल धमाका एक ऐसे गाने के साथ जो इंस्टेंटली आपको जो है वीकेंड मोड में इन कर देंगे. वी हैव इट फॉर एवरीवन. चलते चलते आप लोगों से मुलाकात जो हो रही है राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. सभी का वेलकम टू एंजॉय दिस फ्राइडे वाला शो.

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती
2: What can be more special यहाँ पर डिनर का एंजॉय करना और साथ में अपने फेवरेट गाना का ये मजा लेना और वो भी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर और क्या चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट फ्राइडे राइट रिवराज स्पेशल हेलो टू यू आई विश यू अ वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती साथ में है आवर क्यूट युवांश और दोनों साथ है हैविंग डिनर सो विश बन अपेटी हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और पापा महन भी एकदम सेट है टू हैव हिज डिनर सो विश देम ऑल बन अपेटी इन एडवांस चलिए ये जो डिनर है उनको बस और भी टेस्टी बनाएंगे विद सम ग्रेट टेस्ट ऑफ म्यूजिक जो हम लेकर आएंगे टू एंजॉय दिस फ्राइडे मूड दिस फ्राइडे वाला शो अप टिल 9 PM आज की रात कोई टेंशन नहीं राइट कोई काम की बात नहीं बस होगी मस्ती होगी बातें और होंगे प्यार भरे एहसास कुछ ऐसे फीलिंग्स और बजेंगे आपके स्पेशल गाने तो अगर आप घर पे है इस समय दोस्तों के साथ है या फिर गाड़ी आप चला रहे हो तो बस अपनी खिड़की के पास बैठकर इस वंडरफुल रात को आप महसूस कर लीजिए बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए एंड एंजॉय द बेस्ट आज का फिल्मी जैम

0: we are here to entertain you for this Friday time. This is our musical journey, right? It's a Philly Jam. और जहाँ पर भी साथ जा रही है, it's a pleasure to welcome everyone. मैं रेडी हूँ कि सब ठीक है. यहाँ पर हंसनी है आपके साथ और मिलकर कुछ धमाल करेंगे. After all, it's a Friday और weekend एकदम नज़दीक तो है ही और कई लोग तो बस weekend पर काम नहीं करते हैं. So you'll be having holidays, you'll be having some free time और ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने 24 hours shift कर लेते हैं. सबों को हार्श टू एवरी वन. हेलो टू ऋषभ, कैसे हो जी? रेडी हो कि सब ठीक है? विशिंग यू अ ग्रेट टाइम एंड एज ऑलवेज हार्ड वर्क कंटिन्यूस. जी हाँ बिल्कुल. और काम करते समय वी हैव गॉट म्यूजिक ना टू एंटरटेन यू फॉर यू टू टेक अ ब्रेक. सो अगला जो गाना है वो स्पेशली आपके लिए चल जाएगा एंड फॉर यू एंड आपके सभी टीम के लिए. और यहाँ पर वी हैव नीलिमा. हेलो जी, वेलकम इन द शो. रेडी हो कि सब ठीक है? एंड रेडी एंजॉयिंग द जोश ऑफ फिल्मी जाम. थैंक यू वेरी मच. खाना आप बना रही हो स्टिल इन द किचन. डिनर की प्रिपरेशन सभी जारी है. सो विश यू अ सेफ एंड लाइक हैप्पी टाइम इन योर किचन. यहाँ पे डिनर एकदम टेस्टी बन जाए, यही हमारे गुड विशेस है. यहाँ पे जो टेस्टी खाना है आप बनाते रहिए. यूँ ही हम यहाँ पर जो स्पेशल गाने हैं हम लेकर आएंगे टू मेक इट मोर इजी. मुझे पता है कि सुबह से काम हो रहा है और आप तो बहुत थके हुए हो ना, इसीलिए हम लेकर आते हैं स्पेशल डोज म्यूजिक ताकि आसान रहे आज ये म्यूजिकल जर्नी जो आप बिता रहे हो हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती.
1: फिल्मी जान.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: मुरली मनोहर श्री कृष्णा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, आपके जीवन में प्रेम खुशियां और सफलता का प्रकाश छाया रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हैं हमारे सभी टीम की तरफ से।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: वेलकम ऑन रेडियो मस्ती नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख शांति प्रेम और समृद्धि लेकर आए यही हमारी मंगल कामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं शुभकामनाएं माखन चुराने वाले वो मन मोहने वाले वो राधा के प्यारे नंदलाल आपके जीवन को खुशियों से भर दे हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हमारे सभी फ्रेंड्स को जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बस मंगल कामनाओं के साथ यहाँ पर दिल को खुश कर रही हैं और ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव वाइब्स सबके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर अनवेजा मस्ती यहाँ हंसनी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है एंड हैप्पीली होके हम बढ़ेंगे सफर को आगे अटल 9 PM जो जाइए हमारे साथ टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल दिस इज फिल्मी जैम और कुछ ऐसे गाने हम लेकर आएंगे डेफिनेटली टू मेक इट हैप्पी वाला नाइट स्पेशली उन लोगों के लिए कुराज जो रात भर काम करने वाले हैं और बस काम ही जारी है एज ऑलवेज सो स्टे कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती आपका हम सफर हम बन जाएंगे बिग हेलो टू ऑल माई लवली लिसनर्स जो यहाँ पर फ्राइडे को बस मदमस्त बनाते हुए स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और आखिरकार फ्राइडे आ ही गया यस पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद अब टाइम है टू रिलैक्स करने का कुछ स्माइल करने का एंड वीकेंड को एकदम धूमधाम से वेलकम करने का तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाइए और अपनी स्माइल थोड़ी सी बड़ी कीजिए यहाँ पर कम ऑन गिव मी अ क्यूट स्माइल एंड मेक इट स्पेशल फ्राइडे टाइम नो स्ट्रेस ओनली हैप्पीनेस आज के लिए
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
0: Once again, warm welcome on Radio Musti. We are here to celebrate your Friday time, of course, up till 9 p.m. with RJ Hansani and Chelia. अभी के लिए, we have got some dedications. Hello to Rebecca. कैसी हो, my dear? Really hope कि सब ठीक ठाक. Enjoying the show with Rebecca और साथ में है beloved Arshad. उनके लिए भी एक गाना. You are still very khas to me. With me or without me, यहाँ पर बिल्कुल ये जो दिल है धड़कता है सिर्फ उनके लिए. That's so sweet of you. ऐसा प्यार हक्स ऑफ टू द लव. यहाँ पर कन्हैया लाल के लिए मैसेजेस आए हैं. शुभ कृष्ण जन्माष्टमी आपको भी. थैंक यू सो मच निखिलेश फॉर सेंडिंग द विश. और आप तो जा रही हो मंदिर प्रेयर्स करने के लिए एंड मिडनाइट तक

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: रेडियो मस्ती,
2: फील द मस्ती।
3: जहाँ पर गोविंदा का नाम होता है, जहाँ पर कृष्णा का नाम होता है, वहाँ खुशियों का धाम होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। राधे राधे आप सभी को जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और रेडियो मस्ती जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिकल शो अफ्टर 9 पीएम हमारे साथ। यस, हंसनी है आज टू सेलिब्रेट योर फ्राइडे। दिस इज आवर फिल्म जैम। विल यू एंजॉयिंग द म्यूजिकल राइड? तो चलिए, बिल्कुल अच्छी सी बात है कि आप जुड़े हुए हो यहाँ पर टू एंटरटेन दिस फ्राइडे वाला नाइट। स्टे वेल कनेक्टेड। अभी तो बहुत कुछ बाकी है हमारे साथ अप टिल 9 पीएम। बहुत कुछ सारे गाने अभी बाकी हैं, तो जहाँ पर भी साथ जारी है, चलिए यहाँ पर साथ निभाते आप रहिए। वी हैव दिस ट्रैक फॉर निशिता के लिए। एक्चुअली शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज। निशिता द बर्थडे गर्ल, आज वो 3 साल की हुई है, छोटी सी एंजल और ड्रेस्ड लाइक गोपाल। अच्छा, दैट्स वेरी क्यूट ऑफ यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फोटोज। एंड शी इज लुकिंग जस्ट वाओ, जस्ट लाइक एन एंजल। तो यहाँ पर अभी परिवार के साथ बैठी हुई है एंड विल बी हैविंग डिनर इन अ शॉर्ट टाइम। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू योर क्यूट एंजल माय डियर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फोटोज एंड योर मैसेजेस गुड फीलिंग्स के साथ। वी हैव ऑल द टीम विशिंग योर एंजल अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: Filmy Jam.
1: OMG Radio Musti.
2: Alright, let's bring this joyful mood ahead yahan par Filmy Jam aur Radio Musti. Thank you so much for connecting with the best of music hamare saath. एंड वैसे आज फ्राइडे तो है ही. फ्राइडे मंत्र आपको पता है क्या है? ज्यादा मुस्कुराओ, कम सोचो और वीकेंड को दिल खोलकर एंजॉय करो. आज मूड ऐसा रखिए कि मंडे भी आपसे पूछे इतने खुश कैसे हो. जिंदगी तो छोटी है, इसीलिए हर फ्राइडे को थोड़ा एक्स्ट्रा खुश रहिए. तो दोस्तों, फ्राइडे टाइम को बस हम मुस्कुरा कर enjoy kar rahe hain definitely with a magical dose of music with Arjun Hansani on Radio Musti. Really hope you're enjoying the selection that jo aaj hum lekar aa rahe hain ji to entertain you. Really hope ki sab theek hai. Dinner ho gaya hai and bachchon ke saath, parivar ke saath baithe hue hain just to have some fun, just to have a break like and jo stress wala mahol hai wo to bilkul dur ho gaya hai kab se, right? So abhi it's time to chill out. Kai hamare dost bas drive karte samay music ko लाउड लगा के जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिक टू द मैक्सिमम. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, गाना तो बनता है अब सबके लिए फॉर यू टू हैव अ सेफ ड्राइव, राइट? सो हंसने के साथ लेट्स कंटिन्यू द जोश द एनर्जी राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.
0: फिल्मी जाम
1: ओएमजी रेडियो मस्ती.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: कृष्ण राधे राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में, वर्ल्ड वाइड। जहां पर भी कृष्ण भक्तगण है तो धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी को, और मिडनाइट आरती जो होने वाली है धूमधाम से। तो शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल हमारा टीम भेज रही है लत्स और शुभकामनाएं। कान्हा की बंसी जब सुर सजाए, हर दुख आपके जीवन से दूर हो जाए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हंसनी और पूरी टीम की तरफ से। चले इसी के साथ टाइम टू गो, यहाँ पर जाने का टाइम आ गया है। बस आप जुड़े रहिए वो द रेडियो मस्ती। अभी तो विदिता आ रही है लेकर द नेक्स्ट शो, सो ट्यून इन फॉर द बेस्ट ऑफ म्यूजिक एज ऑलवेज। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ। आई विश यू अ हैप्पी फ्राइडे अहेड।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
1: नॉर्थ, साउथ,
2: 103.5,
1: ईस्ट, वेस्ट,
2: 96.4,
1: सेंटर,
2: 99.4.
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती,
1: द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। फील द मस्ती।
0: टाइम चेक, इट्स 9 PM।
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Promotion Rakshabandhan côté magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, lehenga, kurta, shelvani et crope moyen blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: चले।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूँ वेदिता। वेलकम टू लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। जी हाँ श्रोताओं, कन्हैया के नाम के साथ प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं। प्रोग्राम है लेट नाइट ग्रूव, जहाँ पर होते हैं कूल रोमांटिक गाने। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को आगे ले चले।

वेलकम टू लेट नाइट ग्रूव विद मी वेदिता भाई. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और म्यूजिक जो है एकदम कूल है, तो चलिए ऐसे मौसम में आपके लिए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आ गए हैं आपका साथ देने के लिए. चाहे तो वॉल्यूम को अप कर लीजिए, वर्ड्स को थोड़ा साइड में कर लीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस डजंट नीड अ रीजन, समटाइम्स इट जस्ट नीड अ गुड सॉन्ग. और वो गाने आपको मिलेंगे राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.

लाइफ में हैप्पीनेस के लिए हमेशा बिग रीजंस नहीं चाहिए होते हैं। अरे बाबा कितना समझाऊं मैं, कभी एक फेवरेट गाना, एक कप कॉफी या किसी के

एक स्माइल के साथ हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है और हमें खुशी मिलती है। तो चलिए, खुशी बड़ी चीजों में नहीं छोटी मोमेंट्स में छुपी होती है। सो टुनाइट लेट्स सेलिब्रेट दोज लिटिल मोमेंट्स विद अनदर।

कि कल जो हुआ हो गया, अब इस मोमेंट में सिर्फ आप हैं और हम हैं और है म्यूजिक। तो इस पीसफुल नाइट को कैसे हम बरकरार रखें, वो इस तरह से कि तो जो स्ट्रेस है ना उसे थोड़ी देर के लिए पार्किंग में लगा दीजिए कहीं बाहर दूर, बिकॉज अ हैप्पी माइंड नोज व्हेन टू लेट गो। जाना है तो चला जाए भाई। ये है लेट नाइट ग्रूव्स, यहाँ पर हम किसी को टेंशन में नहीं छोड़ते।

0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, व्हाटएवर यू वांना जस्ट स्माइल, हाँ बिना रीजन के, बिकॉज समटाइम्स हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद समथिंग एज सिंपल एज अ स्माइल. पता है अ स्माइल इज अ टाइनी सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, तो स्माइल के साथ एंजॉय कीजिए ना, क्योंकि हमारे पास तो गाने हैं, रीजन है आपके पास स्माइल करने के लिए. और स्माइल के लिए ना ज्यादा पैसे भी नहीं लगते. ज्यादा? व्हाट डू यू मीन? अरे पैसे ही नहीं लगते.

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था

You're listening to Late Night Grooves. मैं हूँ वेदिता आपके साथ. भाई रात का ये टाइम कुछ अलग ही होता है. दिन के शोर शराबे से दूर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल में दस्तक देती हैं, कुछ यादें, कुछ बातें. अभी क्या सोच रहे हो? अरे छोड़ो, जो भी सोच रहे हो, म्यूजिक है, हैप्पी रहो.

है ना, उनको हम मौका ही नहीं देते कुछ गलत सोचने के लिए, क्योंकि वो हमेशा मस्त मूड में रहते हैं। तो जो निगेटिविटी होती है ना, ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये बहुत गलत होता है। और अच्छे वाइब्स दे रहे हैं हम आपको, तो इसी में आप खोए रहो। कभी कभी लाइफ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसे फेल करना होता है। हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन यू स्टॉप काउंटिंग व्हाट्स मिसिंग एंड स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट्स हियर। तो अभी क्या है, अभी है म्यूजिक, कूल म्यूजिक।

आपको याद दिलाते चलते हैं कि आप सुन रहे हैं लेट नाइट क्रूज विनीता के साथ एंड यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक. लाइफ परफेक्ट नहीं है बट देयर इज स्टिल सो मच टू स्माइल अबाउट. तो परफेक्ट डे का इंतजार मत करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको लगे कि भाई ये तो परफेक्ट हो गया. चलो लेट्स फाइंड दैट लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस हमारे

ओहो क्या हुआ, मूड खराब है? कैसे खराब हो गया? अब शुरू से हमारा प्रोग्राम सुनते तो अभी तक तो मूड ठीक हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हम हमारे श्रोताओं के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मे बी आज का दिन टफ था, लेकिन इससे क्या होता है, चीज़ें हम प्लान करते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं जाता है, लेकिन यू मेड इट ना, यू मेड इट। आपका ये दिन था, अच्छा था, जैसा भी था।

पता है दोस्तों, बीइंग अलोन कभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अकेले हो. समटाइम्स योर ओन कंपनी कैन बी द मोस्ट पीसफुल प्लेस टू बी. मैं भी अपने आप के साथ हमेशा खुश रहती हूँ, इसीलिए जब भी आपके साथ मिलती हूँ खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता. क्योंकि अकेलापन का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास कोई नहीं. अकेलापन तब होता है जब आप भीड़ में भी अकेले फील करते हो. इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंसान का दिल खुश रहता है ना, तो भीड़ हो या तो फिर वो अकेला हो, वो उस खुशी को फील कर पाता है. जैसे कि आप अभी हमारे गीतों को सुनने के बाद, भले अकेले हो, फील तो कर रहे हो, है ना?

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

हेलो हेलो हेलो, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं कैसे हो, गाड़ी चला रहे हो संभाल के चलाना। अच्छा, म्यूजिक तो एकदम टिप टॉप है ना, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग तो घर पे चिल कर रहे हैं, क्या भाई कुछ नहीं, हेलो ना हाय हाय हाय, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग आराम करो, हम किसी को फोर्स नहीं करते, आप बस गाने एंजॉय करो या तो फिर आप सीलिंग को स्टेयर करो मिडनाइट में, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो फिर एक चीज़ कर सकते हो, म्यूजिक को थोड़ा लाउड कर दो, रोमांटिक गाने चल रहे हैं, एक पिलो को पकड़ो अपने बाहों में जकड़ो, डांस करना शुरू।

हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूज विनीता के साथ ऑन रेडियो मस्ती। और एक बात पूछूं, पता है हम सब लाइफ में थिंग्स कलेक्ट करते हैं, फोटोज, कपड़े, मेमोरीज, खिलौने, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें। बट मे बी द बेस्ट थिंग टू कलेक्ट इज मोमेंट्स दैट मेक अस जेन्युइनली हैप्पी। क्या आपके पास ऐसे मोमेंट्स हैं? मेरे पास होते हैं जब मैं आपके साथ होती हूँ, मेरे पास होते हैं जब मैं ऐसे गाने सुनती हूँ, मेरे पास होता है जब मैं खुद से कहती हूँ कि भाई हमारे जो लिसनर्स हैं, यू आर द बेस्ट, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सके। अगर हमारे गीतों से आपकी फोटो पे हंसी आती है, स्माइल आता है ना, तो भाई हमारा काम हो गया।

फ्रेंड्स, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और दुनिया में हर जगह यहाँ पर इस आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो कन्हैया थे बहुत ही नटखट थे और उनका बचपन भी हाय हाय, क्या क्या इन्होंने खेल नहीं खेला, क्या क्या इन्होंने लीलाएं नहीं रचाई। तो चलिए, हम भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर के कन्हैया को जगाएं और अपने अंदर के राधा को जगाएं और हमारे साथ इन गीतों के साथ झूम जाएं, क्योंकि जीवन में बस जो भी है प्रेम ही और कुछ नहीं।

सूचनाएं देती हूँ। चलिए इसी के साथ हमारे जाने का भी समय हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लेट नाइट ग्रूव्स में हमारे साथ जुड़े रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चलिए आपसे कहूंगी, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा आप सबके जीवन में खुशियां ले आए, प्रेम ले आए, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको उजाले तक ले जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी बाय बाय, टेक केयर, एक और प्रोग्राम तक फिर मिलूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राधे राधे।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: और एम टू रेडियो मस्ती।
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सर्दी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस।